0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் குமாரகண்டம் 10வது அத்தியாயம் ஆரம்பம். ஓம் பிரம்மோவாச நிவார்ய வீரபத்ரம் தம் குமாரஹ பரவீரஹ சமைச்ச தாரகவதம் ஸ்மிருத்வா சிவபுதாம் பதாம்புஜௌ ஜகர்ஜாத மகாதேஜஹ கார்த்திகேயோ மகாபலஹ சன்னத்தஹ சுபவத் க்ருத சைன்யேன மகதாவ்ருதஹ சதா ஜய ஜயேத்யுக்தம் சர்வை தேவகணைஸ்ததாம் சம்ஸ்துதோ வாக்பிரிஷ்டாபிஸ்ததைவச சுரர்ஷிபிஹ தாரகஸ்ய குமாரஸ்ய சங்கிராமோ அதீவ துஸ்ஸஹ ஜாதஸ்ததா மகாகோரஸ் சர்வபூத பயங்கரஹ சக்திஹஸ்தௌ ச தௌ வீரௌ யுதாதே பரஸ்பரம் சர்வேஷாம் பஷ்யதாம் தத்ர மகாஶ்சரியவதாமுனே சக்தி நிர்பின்ன தேஹௌ தௌ மகாசாதன சம்யதௌ பரஸ்பரம் வஞ்சயந்தௌ சிம்ஹாவிவ மகாபலௌ வைதாலிகம் சமாஸ்ருத்ய ததா கேசரகம் மதம் பாபம் தம் ச சமாஸ்ருத்ய சக்த்யா சக்திம் விஜக்னதுஹு ஏபிர் மந்திரைர் மகாவீரௌ சக்ரதுர்யுத்தம் அத்புதம் அன்யோன்யம் சாதகௌ பூத்வா மகாபல பராக்கிரமௌ மகாபலம் பிரகுர்வந்தௌ பரஸ்பரவதைஷினோ ஜக்ரதுஷக்திர்தாராபிம் ரணேரண விசாரதௌ மூர்த்னீ கண்டே ததா சோர்வோ ஜான்வோஸ்சைவ கடீததே வக்ஷஸ்யுரசி பிருஷ்டே ச சிச்சிதுஷ்ச பரஸ்பரம் ததாதௌ யுத்யமானௌ ச ஹந்துகாமௌ மகாபலௌ வல்கந்தௌ வீரசப்தைச்ச நானா யுத்த விசாரதௌ அபவன் பிரேக்ஷகா சர்வே தேவா கந்தர்வ கின்னராஹ ஊஜுஃ பரஸ்பரம் தத்ர கோஸ்மின் யுத்தே விஜேஷ்யதே ததா நபோ கதா வாணி ஜகௌ தேவாம் ச சாந்த்வயன் அசுரம் தாரகம் சாத்ர குமாரோயம் ஹனிஷ்யதி மா சோச்சிதாம் சுரை சர்வே சுகேன ஸ்தீயதாமிதி யுஷ்மதர்த்தம் சங்கரோஹி புத்ரரூபேன சம்ஸ்திதம் ஹ்ருத்வா ததா தாம் ககனே சமீரிதாம் வாசம் சுபாம் ச பிரமதை சமாவ்ருதஹ நிஹந்து காம சுகித குமாரகோ தைத்யாதிபம் தாரகமாஸ்வபூத் ததாம் சக்தியாதயா மகாபாஹுர் ஆஜகானஸ்தனாந்தரே குமாரஸ்மருஷாவிஷ்டாரகாசுரமோஜசாம் தம் பிரஹாரமநாதிருத்ய தாரகோ தைத்யபுங்கவஹ குமாரம் சாபி சம்க்ருத்த ஸ்வசக்த்யா சஞ்சகானதஹ தேன சக்தி பிரஹாரேன சாங்கரிர் மூர்ச்சிதோ பவத் முஹூர்த்தா சேதனாம் பிராப ஸ்தூயமானோ மஹர்ஷிபிஹ யதா சிம்ஹோ மதோன்மத்தோ ஹந்து காமஸ்ததா சுரம் குமாரஸ்தாரகம் சக்த்யா சஜகான பிரதாபவான் ஏவம் பரஸ்பரம் தௌ ஹி குமாரஸ்சாபி தாரக யுதாதே அதிசம்ரத்தௌ சக்தி யுத்த விசாரதௌ அப்யாச பரமாபாஸ்தாமன்யோன்யம் விஜிகீஷயா பதாதினௌ யுத்யமான்னௌ சித்ரரூபௌ தரஸ்வினௌ விதைர்காத புஞ்சைஸ்தாவன்யோன்யம் வினிஜக்னதுஹு நானா மார்கான் பிரகுர்வந்தௌ கர்ஜந்தௌ சுபராக்கிரமௌ அவலோக பரா சர்வே தேவகந்தர்வ கிண்ணராஹ விஸ்மயம் பரமம் ஜக்முர் நோஜுஹு கிஞ்சன தத்ரதே நவவௌ பவமானஸ்ச நிஷ்ப்ரபோ பூதிவாகரஹ சசால வசுதா சர்வா தசைலவன காரணா ஏதஸ்மின் அந்தரே தத்ர ஹிமாலய முகாதராஹ ஸ்னேஹாதிதாஸ்ததா ஜக்முஹு குமாரம் ச பரீப்ஸவஹ ததஸ்ய த்ருஷ்ட்வா தான் சர்வான் பயபீதாம் ச சாங்கரிஹ பர்வதான் கிரிஜா புத்ரோ பபாஷே பரிபோதயன் குமார உவாச மாஹித்யதாம் மகாபாகாம் மா சிந்தாம் குருவதாம் நகாஹ காதயாம்யத்ய பாபிஷ்டம் சர்வேஷாம் வஃ பிரபஷ்யதாம் ஏவம் சமாஸ்வாசி ததா பர்வதான் நிர்ஜரான் கணான் பிரணம்ய கிரிஜாம் சம்பும் ஆததே சக்தி முத்பிரபாம் தம் தாரகம் ஹந்து மனாஹ கரசக்திர் மகாபிரபு விரராஜ மகாவீர குமார சம்பு பாலக சக்தியா தயா ஜகானாத குமாரஸ்தாரகாசுரம் தேஜசாட்ய சங்கரஸ்ய லோகக்லேசகரம் ஜதம் பபாத சத்ய சஹசா விஷீர்ணாங்கோ சுரக்ஷிதௌ தாரகாக்கியோ மகாவீர சர்வாசுரகணாதிப குமாரேன ஹதசோதி வீரஸ் கலு தாரக லயம் யயௌ ச ரத்ரைவ சர்வேஷாம் பஷ்யதா முனே ததா தம் பதிதம் திருஷ்ட்வா தாரகம் பலவத்தரம் நஜகான புனர்வீர சகத்வா யசுமாஹவே ஹதே தஸ்மின் மகாதைத்யே தாரகாக்கியே மகாபலே க்ஷயம் பிரணீதா பஹவோ சுரா தேவகணைஸ்ததா கேசித் பீதா பிராஞ்சலயோ பபூவுஸ்தத்ர தாஹவே சின்னபின்னாங்ககா கேசின் மிருதா தைத்யா சஹஸ்ரஜஹ கேசிஜ்ஜாதா குமாரஸ்ய சரணம் சரணார்த்தினஹ வதந்தஃ பாஹி பாஹீதி தைத்யாஹ சாஞ்சலயஸ்ததா கியந்தஸ்ச ஹதாஸ்தத்ர கியந்தஸ்ச பலாயிதாஹ பலாயமானா யதிதா ஸ்தாபிதா நிர்ஜரைர்கணைஹி சஹஸ்ரஜஹ பிரவிஷ்டாஸ்தே பாதாலே ச ஜிஜீஷவஹ பலாயமானாஸ்தே சர்வே பக்னாச்சா தைன்யமாகதாஹ एवं सर्वदैत्यसैन्यं भ्रष्टं जातं मुनीश्वर न केचित् तत्र संसस्तु गणदेव भयातदाम् आसीन्निष्कण्टकं सर्वं हरे तस्मिन् दुरात्मनि ते देवाः सुखमापन्ना सर्वे शक्रादयस्तदा एवं विजयमापन्नं कुमारं निखिलासुराः बभूवुर्युगपद्धृष्टा स्त्रिलोकास्य महासुखाः सदाशिवोपितं ज्ञात्वा विजयं कार्तिकस्य च तत्र जगाम समुदा सगणः प्रियया सह स्वात्मजं स्वाङ्कमारोप्य कुमारं सूर्यवर्चसं लालयामस सुप्रीत्या शिवाज स्नेहसङ्कुला हिमालय सदागत्य स्वपुत्रैः परिवारितः सबन्धुः सानुगशम्भुं तुष्टावच शिवां गुहं ततो देवगणाः सर्वे मुनयः सिद्धचारणाः तुष्टुः शाङ्करीं शम्भुं गिरिजां तुषितां भृजं पुष्पवृष्टिं सुमहतीं चक्रुश्चोपसुरास्तदा जगुर्गन्धर्वपदयो नृतश्चाप्सरो गणाः वादित्राणि तथा नेदुस्तदादीं च विशेषतः जयशब्दो नमःशब्दो भूवोच्चैर्मुहुर्मुहुः ततो मयाच्युतश्चापि सन्तुष्टो भूद्विशेषतः शिवं शिवां कुमारं च सन्तुष्टावसमादरात् कुमारम् अग्रदः कृत्वा हरिकेन्द्रमुखासुराः चक्रुर्नीराजनं प्रीत्या मुनयश्चापरे तथा गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसाम् तदोत्सवो महानासीत् कीर्तनं च विशेषतः गीतवाद्यैः सुप्रसन्नैस्तया साञ्जलिभिर्मुने स्तूयमानो जगन्नाथः सर्वैर्देवैर्गणैरभूत् ततः स भगवान् रुद्रो भवान्या जगदम्बया सर्वैः स्तुतो जगामाथ स्वगिरिं स्वगणैर्वृदः इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे तारकासुरवध देवोत्सववर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॐ कुमारखण्डं पत्तावदध्यायं पूर्ति ॐ
2: ॐ नमः शिवाय
3: यू आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् डाट् आर्ट् रेडियो दि 24/7 स्पिरिचुवल् चानल् फ्रम् शैवम् डाट् आर्ट्.
1: ॐ कुमारखण्डं पदिनोरावदध्यायम् आरम्भम्. ॐ ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्तरे तत्र क्रौञ्चनामाचलो मुने आजगामकुमारस्य शरणं बाणपीडितः पलायमानो यो युद्धात् असोढादेज ऐश्वरं तुतोदातीव सक्रौञ्चं कोट्या युतबलान्वितः पणिपत्य कुमारस्य स भक्त्या चरणाम्बुजं प्रेमनिर्भरया वाचा तुष्टाव गुहमादरात् क्रौञ्च उवाच कुमारस्कन्ददेवेश तारकासुरनाशक पाहि मां शरणापन्नं बाणासुरनिपीडितं सङ्गरात्ते महासेन समुच्छिन्नः पलायितः न पीडयच्चमागत्य हानाथ करुणाकर तत्पीडितस्ते शरणम् आगतोऽहं सुदुःखितः पलायमानो देवेश शरजन्मन्दयां कुरु दैत्यं तं नाशय विभो बाणाह्वं मां सुखीकुरु दैत्यघ्नस्त्वं विशेषेण देवावनकरस्वराट् ब्रह्मोवाच इति क्रौञ्चस्तु क्रौञ्चस्तु तस्कन्दः प्रसन्नो भक्तपालकः गृहीत्वा शक्तिमतुलां स्वां सस्मार शिवो धिया चिक्षेपदां समुद्दिश्य सभानं शङ्करात्मजः महाशब्दो बभूवात जज्वलुश्च दिशो नभः सबलं भस्मसात् कृत्वा सुरं तं क्षणमात्रदः गुहोपकण्ठं शक्तिः सा जगामपरमा मुने ततः कुमार प्रोवाच क्रौञ्चं गिरिवरं प्रभुः निर्भयः स्वगृहं गच्छ नष्टः सबलोऽसुरः तच्छ्रुत्वा स्वामि वचनं मुदितो गिरिरा तदा स्तुत्वा गुहं तदा रातिं स्वधाम प्रत्यपद्यत ततस्कन्दो महेशस्य मुदा स्थापितवान् मुने त्रीनिलिङ्गानि तत्रैव पापघ्नानि विधानतः प्रतिज्ञेश्वरनामादौ कपालेश्वरमादराट् कुमारेश्वरमेवाथ सर्वसिद्धिप्रदं त्रयं पुनः सर्वेश्वरस्तत्र जयस्तम्भसमीपतः स्तम्भेश्वराभिधं लिङ्गं गुहस्थापितवान् मुदा ततः सर्वे सुरास्तत्र विष्णुप्रभृतयो मुदा लिङ्गं स्थापितवन्तस्ते देवदेवस्य शूलिनः सर्वेषां शिवलिङ्गानां महिमाभूतदाद्भुतः सर्वकामप्रदश्चापि मुक्तितो भक्तिकारिणां ततः सर्वे सुरा विष्णुप्रमुखाः प्रीतमानसाः ऐच्छन् गिरिवरं गन्तुं पुरस्कृत्य गुहं मुदा तस्मिन्नवसरे शेषपुत्र कुमुदनामकः आजगामकुमारस्य शरणं दैत्यपीडितः प्रलम्बाचोऽसुरो यो हि रणादस्मात् परायदः तत्रोपद्रवं चक्रे प्रबलस्तारकानुगः सोऽथशेषस्य तनयः कुमुदो अहिपतेर्महान् कुमारशरणं प्राप्तस्तुष्टाव गिरिजात्मजं कुमुद उवाच देवदेव महादेव वरदात महाप्रभो पीडितोऽहं प्रलम्बेन त्वाहं शरणमागतः पाहि मां शरणापन्नं प्रलम्बासुरपीडितं कुमारस्कन्ददेवेश तारकारे महाप्रभो त्वं दीनबन्धुकरुणासिन्धुर् आनतवत्सलहं खलनिग्रहकर्ता हि शरण्यश्च सतां गतिः कुमुदेन सुतश्चेत्तं विज्ञप्तस्तद्वधायहि स्वां च शक्तिं सजग्राहं स्मृत्वा शिवपदाम्बुजौ चिक्षेपदां समुद्दिश्य प्रलम्यं गिरिजासुदः महाशब्दो बभूवात जज्वलुश्च दिशो नभः तं सायुधबलं शक्तिर्धृतं कृत्वा च भस्मसात् गुहोपकण्ठं सहज अजागमात् क्लिष्टवारिणीः ततः कुमारः प्रोवाच कुमुदं नागबालकं निर्भयः स्वगृहं गच्छ नष्टः सबलोऽसुरः तच्छ्रुत्वा गुहवाक्यं स कुमुदो अहिपदेऽसुरः स्तुत्वा कुमारं नत्वा च पातालमुदितो ययौ एवं कुमारविजयं वर्णितं ते मुनीश्वर चरितं तारकपथं परमाश्चर्यकारकं सर्वपापहरं दिव्यं सर्वकामप्रदं नृणां धन्यं यशस्यम् आयुष्यं भुक्तिमुक्तप्रदं भुक्तिमुक्तिप्रदं सदां ये कीर्तयन्ति सुयशो अमितभाग्ययुता नराः कुमारचरितं दिव्यं शिवलोकं प्रयान्ति ते श्रोष्यन्ति ये च तत्कीर्तिं भक्त्या श्रद्धान्विता जनाः मुक्तिं प्राप्स्यन्ति ते दिव्यां यः भुक्त्वा परं सुखम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे बाणप्रलम्ब वध कुमारविजयवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः ॐ कुमारखण्डं पदिनोराध्यायं पूर्ति ॐ
0: ॐ नमः शिवाय You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
4: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajur Vedam, Madhyandina Shaka, Adhyayam 8.
5: Shri Veda Purushaya Namaha Harihi Om Mao. उपायामगृहीतोऽस्याद्वितीयेभ्यस्त्वा

मशकान् केशैरिन्द्रज्ञस्वपासावहे न बृहस्पतिज्ञे शकुनिसादेना कूर्मान् शफैराक्रमाणज्ञस्थूराभ्या मृक्षला।

चंद्र से खर रक्षमा चंद्र से कर रक्षमा चंद्र से खर रक्षमा ओम ओम ओम प्रेमपुरी आश्रम आयोजित तथा कृष्ण कुमार दहिया गीता चिंतन माला अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम अंतर्गत आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी की रचना शिवानंद लहरी स्तोत्र के आधार पर कुछ शिव भक्ति भाव का प्रसंग विचार चल रहा है। इसके लिए श्लोक नंबर है 76। भक्तिर्महेश पद पुष्कर्मा वसंती भक्तिर्महेश पद पुष्कर्मा वसंती कादम्बनीव कुरुते परितोषवर्षम् संपूरितो भवति यस्य मनस्ततः तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत् बुद्धिस्थिरा भवतु मीश्वरपादपद्म शक्तबधुर्विरहिणीव सदा स्मरन्ति सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि सम्मोहिते शिव मंत्र जपे न विन्ते सदुपचार विधि स्वनुबोधिताम् सविनयाम् सुरिदम् समुपाश्रिताम् मम समुद्धर बुद्धिमिमाम् प्रभो वरगुणेन नवोडवदूमिव नित्यं योगिमना सरोजदलसं चारसमक्षत्क्रमः सम्भूतेन कथम् कठोरयमसुरं वक्ष कटाक्षति वक्ष कवाटच्छति अत्यन्तं मृदुलं त्वदङ्घ्रियुगलम् आमि मनश्चिन्तय एतत् लोचन गोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये नित्यं योगि मनः सरोजदलसं चारक्षमत्वक्रमः सम्भूतेन कथं कठोरयमरं सम्भूतेन कथं कठोरयमराड्
वक्ष कवाटच्छति अत्यन्तं मृदुलं त्वदङ्घ्रियुगलम् आमे मनचिन्तयत् एतत् लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये यस्य ते स जनिं मनोऽस्य कठिनम् तस्मिन्नटा नीतिमत् द्रक्ष्यायै गिरिशीम्नि कोमलपदौ न्यासः पुराभ्यासितः नो चेद्दिव्यगृहान्तरेषु सुमनस् तल्पेषु विद्यादिषु प्रायसत्सु शिलातलेषु नटनम् शम्भो किमर्थं तव भक्ति महेश पद पुष्करमावसन्ति। भक्ति शिव भक्ति परमात्मा की भक्ति जो जीवात्मा के हृदय का भाव विशेष है उसको भक्ति कहते हैं। परमात्मा प्रति आस्था, परमात्मा प्रति को विश्वास, परमात्मा प्रति श्रद्धा, इन सब से युक्त जो हृदय का भाव है उसी को भक्ति कहते हैं। कैसी भक्ति? महेश पद पुष्करम आवसंती भक्ति। महेश माने परमात्मा, भगवान शिव, महान ईशः महेशः, सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान, कर्तुम अन्यतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा, जो ईश भी है और महान भी है, इसीलिए उसका नाम महेश हुआ। महेश पद यानी परमात्मा के चरण। मान लो परमात्मा का जो चरण है वही पुष्करम पुष्कर है। पुष्करम आवसंतम, पुष्कर शब्द का अर्थ दो होता है। कोश में पुष्कर शब्द का अर्थ एक सरोवर भी होता है और पुष्कर शब्द का अर्थ आकाश भी होता है। आकाश को भी पुष्कर कहते हैं और सरोवर को भी पुष्कर कहते हैं। यहां भगवान शिव के चरण को ही आकाश की उपमा दी है। भगवान शिव का जो चरण है वो आकाश रूप है, आकाश। इसलिए भक्ति शिव चरण रूपी आकाश में रहने वाली महेश भक्ति। आवसंती आसमंतात वसंती निवसंती इति पुष्कर पुष्करम आवसंती, आकाश में रहने वाली। कौन सी आकाश? भूत आकाश नहीं, परमात्मा के चरण रूपी आकाश में। कादम्बनी वा
कादम्बनी अर्थात बादल। बादल हमेशा आकाश में ही विचरण करते हैं, है ना? बादल आकाश में ही विचरण करेंगे तो भक्ति रूपी बादल कहां विचरण करेंगे? परमात्मा के चरण रूपी आकाश में विचरण करते हैं। परितोष वर्षाम कुरुते, बादल का काम क्या है? आकाश में विचरण करके बादल का काम क्या है? आजकल जो कर रहे हैं, वर्षम कुरुते, बादल वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं, इसको उपमा अलंकार बोलते हैं। यहां अलंकार प्रयोग है, उपमा अलंकार, सादृश्य उपमा अलंकार। जैसे बादल आकाश में विचरण करते हुए बारिश वृष्टि करते हैं, पानी को बरसाते हैं, इसी तरह भगवान शिव के चरण रूपी आकाश में विचरण करने वाली शिव भक्ति इव कादम्बनी इव, वही है बादल मानो। तो वह किसकी वर्षा करते हैं? परितोषः सर्वत्र संतोष की वृष्टि करते हैं, करती है। पहले भी इस प्रकार की व्याख्या हो चुकी है। शिव भक्त किसी भी अवस्था में असंतुष्ट नहीं हो सकता। परमात्मा का भक्त किसी भी अवस्था में असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। हर अवस्था में वो संतुष्टि का ही अनुभव करता है और संतुष्टि को ही व्यक्त करता है, क्योंकि संतोष परितोष, परि माने चारों तरफ से, परिता तोष परितोष, चारों तरफ से हर अवस्था में, हर परिस्थिति में वो संतुष्ट ही रहेगा। संसार और सांसारिक विषयों से संतुष्ट रहना ही शिव भक्त का लक्षण है। दूसरी बात, साधना में असंतोष रहना, सांसारिक पदार्थों से संतुष्ट रहना, ये भक्त का लक्षण है। भक्त साधना के माध्यम से जिस भूमिका में पहुंचता है, क्रमशः आरुरुक्षु की भूमिका में रहता है। और क्योंकि भक्त आरुरुक्षु की भूमिका का है, इसलिए साधना काल में वो जिस भूमिका में पहुंचता है वहां वो संतुष्ट नहीं रहता। भक्तों की भूमिका में वो संतुष्ट रह जाए तो आगे उसकी साधना बढ़ेगी नहीं। भोग भूमिका में वह संतुष्ट है, योग भूमिका में वह असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, इस चौथे प्रकार के जो ज्ञानी भक्त हैं उस भूमिका में जब तक नहीं पहुंचेगा, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरिक्त विधीयते, उस भूमिका में जब तक नहीं पहुंचेगा भक्त संतुष्ट नहीं होता।
संतुष्टि का लक्षण होता है इति अलम। संतुष्टि का लक्षण क्या है? इति अलम, जो है जहां है वो ठीक है। असंतुष्टि का लक्षण क्या है? इतनी से पर्याप्त नहीं, मुझे और चाहिए। अनलम, अलम बुद्धि तो हो ही नहीं सकता है असंतुष्टि। तो अलम बुद्धि जहां हो तो उसको संतोष कहते हैं। तो साधना में अनलम और भोग भूमिका में अलम बुद्धि, यही भक्तों का लक्षण है। आप लोगों ने सुना है, पत्नी मरी सुना तो भलो थयो भागी चंचल है ना नरसिंह मेहता, यही तो आलम बुद्धि है, यही तो आलम बुद्धि है, यही तो संतोष बुद्धि है। ठीक हुआ, महात्मा लोग जो बहुत सुनाते हैं, ईश्वर जो करता है ठीक करता है। तो भक्त की दृष्टि तो यही नहीं है, ईश्वर जो करता है वो ठीक करता है, गलत कर ही नहीं सकता है। हमारी अपेक्षा से वह गलत हो जाता है, लेकिन ईश्वर की तरफ से वो गलत नहीं होता। गलती और सही का मूल्यांकन तो हम करते हैं, हमारे अपने दृष्टिकोण से, अपने मापदंड से हम जब समीक्षा करते हैं तब तो जो हमारे अनुकूल हो गया वो सही हो गया, जो हमारे प्रतिकूल हो गया तो गलत हो गया। अब हम ये विचार नहीं कर सकते हैं आज का जो प्रतिकूल है संभव है कि कल वह अनुकूल हो जावे, उसके लिए आज यह प्रतिकूल किया है परमात्मा ने। तब ये सोचेंगे तो आज का प्रतिकूल भी हमारे लिए अनुकूल ही है, लेकिन हम इतने हतार कर लेते हैं, इतनी जल्दीबाजी कर लेते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी प्रसंग हो, प्रतिकूल तो होनी ही नहीं चाहिए। अब ये संभव है ही नहीं, तो आप लोगों ने बहुत सुना है परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, कहानी बहुत बार सुना है आप लोगों ने। एक राजा था और एक मंत्री था। राजा की मान्यता थी कि हम जो करें वो सही हो, और जब तक हम बुद्धि लगाकर ना करें तब वो गलत हो जाता है। तो इसलिए अपने को ही करना चाहिए तभी सही होगा, दूसरा का किया हुआ सही नहीं हो सकता है। तो मंत्री का कहना था कि ईश्वर जो करता है वो सही करता है, इसलिए ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर जो करता है सही करता है, गलत नहीं करता ईश्वर। तो एक बार राजा अपने तलवार को साफ कर रहा था तो अपने उंगली कट गई, तो जोर से चिल्लाया राजा, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज? बोले देखो अपनी ही तलवार से अपनी उंगली कट गई। ईश्वर जो करता है सही करता है महाराज। तो राजा को तो गुस्सा आ गया, ते मूर्ख कहीं का, हमारी उंगली कट गई और तू कहता है ईश्वर जो करता है सही करता है, ऐसा भी ईश्वर कैसा, किस काम का भाई जो हमारी उंगली कट जाए। अक्सर हम लोग यही कहते हैं ना, अक्सर हम यही कहते हैं ना, हमारे दुश्मनों को घाटा हो जाए तब तो समझ में आता है कि ईश्वर जो करता है सही करता है, और जब हमको घाटा होता है
तब फिर हमारे दुश्मन को समझ में आता है कि ईश्वर जो करता है सही करता है ना, यही है ना। और हम क्या कहेंगे, ये ईश्वर का ये क्या किया है ईश्वर, ये भी कोई करने का ढंग है क्यों जी? और हमारा दुश्मन क्या कहता है, ईश्वर जो करता है सही करता है। तो मंत्री ने कहा कि ईश्वर जो करता है सही करता है। राजा को गुस्सा आया और उस मंत्री को जेल में बंद कर दिया। इसका दिमाग खराब हो गया है, बंद कर दिया जेल में, मंत्री पद से सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया। बोल, तेरे को मंत्री पद से भी हटा दिया और जेल में बंद कर दिया, अब वर्षों जेल में सड़ना पड़ेगा, अब बोल ईश्वर क्या कर रहा है। तो मंत्री का कहना था ईश्वर जो करता है सही करता है। उस अवस्था में भी मंत्री ने क्या कहा, ईश्वर जो करता है सही करता है। राजा ने सोचा कि इसका दिमाग ठीक से खराब हो गया है, पहले मेरी उंगली कटी तो कहता था ईश्वर जो करता है, अब खुद जेल में बंद हो गया, मंत्री पद से सस्पेंड हो गया, फिर भी बोलता है ईश्वर जो करता है सही करता है, इसका दिमाग ठीक से खराब हुआ है। तो बंद ही रखो जेल में। मंत्री तो वही माला लिया और ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दिया, ईश्वर जो करता है सही करता है ना। जब मंत्री पद में था, बहाल वाला ड्यूटी में था, तो माला लेकर बैठकर जप नहीं कर पाता था, किसी भी समय राजा बुला सकता था, तो अब तो राजा बुलाएगा नहीं ना उसको, पुरुषोत्तम मास में खूब जप करेगा वो, ईश्वर जो करता है सही करता है। अब राजा ने दूसरे मंत्री को नियुक्त किया, वर्षों उसको जेल में बंद कर दिया। एक वर्ष के बाद जब वो राजा उस नया मंत्री को, नवनियुक्त मंत्री को लेकर जंगल गया शिकार खेलने, तो वहीं शिविर लगाकर बैठकर शिकार खेल रहा था, एक दिन भटक गया जंगल में, राजा भटक गया। कई बार सुनी है आप लोगों ने कहानी, उसी जंगल में एक तांत्रिक भैरव साधना कर रहा था कापालिक, तो उस तंत्र साधना के अंतिम में नरबलि देना है, अपने चेलों को कहा कि जाओ बढ़िया नर खोज के लाओ, भगवान को हमारे देवता को बलि चढ़ाना है, उसके बाद हम जो चाहें वो ठीक हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जाओ। सेवक लोग गए तो राजा जंगल में भटका हुआ था, उसी को पकड़ लिया, ले आए महाराज, चलो तैयार करके भैरव के आगे सिर गर्दन झुकाकर रखो, हम तलवार लेकर आते हैं। तांत्रिक अंदर गया, मंत्र पढ़ता हुआ तलवार, नंगे तलवार लेकर आया और राजा भैरव के आगे गर्दन तान कर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको बलि चढ़ाना है, प्रतिकार कर नहीं सकता है वो किसी से, राजा एकला है, अकेला है, और उसके तांत्रिक के चेले हट्टे कट्टे

उसने कहा कि ये हमारे देवता को भैरव को बलि नहीं चढ़ेगा क्योंकि पहले से कटी हुई है। कहां से लिया है? ले जाओ इसको, ले जाके छोड़ दो, दूसरा खोज के लाओ। अच्छा महाराज, हमको क्या पता, छोड़ दिया तो उसकी जान बची। एक वर्ष पहले परमात्मा ने, ईश्वर ने उसकी उंगली कटवा कर एक वर्ष के बाद गर्दन बचाई। ये कौन समझेगा बोलो? उस राजा को समझ में आया था पहले उंगली कटी थी तब? ईश्वर ने ये जो उंगली काटी है मेरे गर्दन को बचाने के लिए उंगली काटी है, ये किसी को समझ में आता है? हैं? जब उंगली कटती है तो तब समझ में आएगा किसी को? एक वर्ष बाद अब राजा को समझ में आया कि मंत्री जो कह रहा था ठीक है, वाह ईश्वर क्या बढ़िया, उंगली कटाकर गर्दन बचाया। ईश्वर तू जो करता है ठीक करता है, अपने बारे में तो समझ में आ गया राजा को। अब आकर मंत्री को पूछा, हे मेरे बारे में तो ईश्वर ने जो किया है वो ठीक किया, आज की घटना ये है भाई, एक वर्ष पहले उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा गर्दन कट जाता, भगवान ने उंगली कटवाकर गर्दन बचाया, इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं मैं, मेरे बारे में तो ये समझ में आया भाई। अब तुझे जो जेल में बंद किया था, नौकरी से हटा दिया था, उस समय तूने कहा था कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है, अब एक वर्ष से तू जेल में बंद पड़ा है, बोल तेरे बारे में ईश्वर ने क्या अच्छा किया, तेरे बारे में ईश्वर ने क्या अच्छा किया मुझे बताओ। बोले महाराज, ईश्वर बहुत ही दयालु है, एक वर्ष पहले तुमने मुझे सस्पेंड करके जेल में बंद न किया होता मैं तुम्हारे पीछे पीछे जंगल में जाता तुम्हें खोजते हुए, और तुम तो उंगली कटे हुए होने के कारण बच जाते हैं, गर्दन किसकी कटती? मेरा तो उंगली कटा नहीं था, हैं? वो तांत्रिक के चेले किसको पकड़ते फिर? विकल्प में मुझे पकड़ते, और क्योंकि मेरा कोई अंग भंग हुआ नहीं था तो गर्दन किसकी कटती? मेरी कटती। ईश्वर ने एक वर्ष पहले से ही मेरी गर्दन बचाने की तैयारी की है। उसने जेल में बंद ना किया होता तो आज तुम्हारी जगह मेरे गर्दन कट जाते। उंगली काटकर तुम्हारे गर्दन बचाया, जेल में बंद करके नौकरी से हटाकर मेरे गर्दन बचाया, ईश्वर कभी गलत नहीं करता। ये भाव क्या है? परितोष। ये संतोष का भाव है, परितोष का भाव है। परमात्मा का भक्त, भगवान का भक्त कभी भी उसके लवों में परमात्मा के प्रति, किसी की प्रति भी शिकायत नहीं रहती। समझे कि नहीं? भगवान के भक्तों में, परमात्मा के भक्तों में किसी के भी प्रति, परमात्मा की तो बात छोड़ दो, किसी के भी प्रति शिकायत नहीं रहती। इसलिए शायद किसी कवि ने कहा ना, मुझे वो कविता याद आ गई, आ गई थी शिकायत लबों पे, आ गई थी शिकायत लबों पे, लब माने वोट, शिकायत करने के लिए शिकायत अंदर से वोट तक तो आ गई थी, लेकिन करते किससे? वो शिकायत करेंगे तो करेंगे किससे बोलो? हैं? तुम जो शिकायत करो, तुम्हारी शिकायत को सुनकर समाधान कर

0: करने वाला कौन है? हैं? कौन समाधान कर देगा? क्योंकि जिसको तुम शिकायत सुना रहे हो उसी के ओठों में हजार शिकायत भरे पड़े हैं, वही हजार शिकायतों के गठड़ी ढो के चल रहा है। बोलो, कोई छाती में हाथ रख के कहता है, कह सकता है, संसार में किसी के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है, कह सकता है? हैं? जब ड्राइवर समय में नहीं आता है तो क्या करते हो? हैं? कहते क्या हो? तो क्यों नहीं आए समय में? तनख्वाह पूरी ले लेता है और काम करने में क्या कहोगे बोलो? और तुम ड्राइवर की शिकायत करोगे? ड्राइवर तुम्हारी शिकायत करता है? नहीं करता है? हैं? वो भी शिकायत करता है, गधे की तरह काम लगाता है रात दिन, वो भी अपनी शिकायत करता है। सबके सब ऐसे ही है भाई, बहू सास की शिकायत, सास बहू की शिकायत, बेटा बाप की शिकायत, बाप बेटे की शिकायत, अड़ोसी पड़ोसी की शिकायत, पड़ोसी अड़ोसी का शिकायत है, जनता नेताओं की शिकायत, नेताएं जनता पब्लिक की शिकायत। ले जी, आ गई थी शिकायत करते किसे? विचार किया उसने, जो स्वयं हजारों शिकायत कर लेकर घूम रहा है उसके सामने शिकायत करना बेकार है कि नहीं बोलो? हैं? इसलिए करना ही बेकार था। फिर क्या किया तुमने महाराज? तो वो कभी बोलता है, तो शिकायत करना छोड़कर हमने क्या की? दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, हार कर बैठ जाते तो बैठना बेकार था। है?
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन पुष्पदंस शिव महिमा स्तोत्र प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री मुक्तानंदजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। पुण्यश्लोक परमाराध्य प्रातस्मरणीय नित्य वंदनीय मातो महियान परम श्रद्धे अनंत श्री समलंकृत धर्म सम्राट सनातन धर्मावतंस महिमा महामंडित महामहिम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य परम योगिराज परम वीतराग त्यागमूर्ति तपोनिष्ठ प्रत्यक्ष वेदावतार युगावतार वरिष्ठतम महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशह वंदन करता हूं, नमन करता हूं। परमाराध्य प्रातस्मरणीय नित्य वंदनीय मातो महियान परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत धर्म सम्राट सनातन धर्म के प्रखर सूर्य साक्षात ब्रह्म के अवतार परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर विराजमान परम श्रद्धे परम श्रद्धास्पद अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित विद्वत वरेण्य आचार्य प्रवर श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज को नमन करता हूं। परम श्रद्धे परम सम्माननीय समादरणी अत्यंत वयोवृद्ध साक्षात वेद के स्वरूप श्री स्वामी उमेशानंद जी महाराज को नमन करता हूं। परम श्रद्धे परम सम्माननीय समादरणीय विद्वत वरेण्य आचार्य प्रवर श्री संत शिरोमणि स्वामी मुक्तानंद जी महाराज एवं परम श्रद्धे परम सम्माननीय समादरणीय श्री हरीश भाई एवं आचार्य श्री अनंतराम शास्त्री जी मंचस्थ समस्त विद्वत वृंद परम सम्माननीय समादरणीय श्री गिरीश भाई चिमन भाई सोलंकी जी एवं मधुसूदन भाई जो यहां पर विराजमान है सभी ट्रस्टियों एवं सभी भक्तों को हृदय से साधुवाद आशीर्वाद करता हूं। परम श्रद्धे परम सम्माननीय समादरणीय आचार्य श्री विश्वनाथ जी महाराज शास्त्री जी को नमन करता हूं। समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं श्रोहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं तथा दिव्य मंगलमयी परम सम्मान्य अर्चनीय वंदनीय कौशल्या अनसुईया सावित्री स्वरूप माताओं बहनों बेटियों तथा देश के भावी कर्णधार होनहार प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज मैं धन्य हो गया। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। परमाराध्य प्रातस्मरणी अनंत बंद महिमा महामंडित महामहिम सनातन धर्म के प्रखर सूर्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज का आविर्भाव महोत्सव आनंद जयंती के रूप में हम सभी लोग मना रहे हैं। मुझे बड़ा हर्ष हुआ जिस समय फोन पर यह सूचना मिली कि प्रेमपुरी आश्रम में ये बड़ा दिव्य आयोजन होने जा रहा है और उस कार्यक्रम में मैं सादर आमंत्रित हूं। मैं अपने हर्षातिरेक को रोक नहीं पाया, बड़ा मन में हर्ष हुआ और आप सभी महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करके उस हर्ष में और भी चार चांद लग गए। बड़ी देर से चर्चा चल रही है अवतार के संदर्भ में। महापुरुषों का अवतार होता है, उनका कभी जन्म नहीं होता, वे अवतार लेते हैं, किसी न किसी रूप में परमात्मा स्वयं अवतार धारण करते हैं। और महात्मा के रूप में जब आते हैं तो उसकी महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। परमात्मा सुलभ है। श्रीमद् भगवत गीता की 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ एक कंडीशन पूरी कर दो, सिर्फ एक शर्त पूरी कर दो, मैं सुलभ हो जाऊंगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान का ये डिमडिम घोष है कि मैं सुलभ हूं, यानी परमात्मा दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ कौन है? श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण का डिमडिम घोष है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। श्रीमद् भगवत गीता का ये उद्घोष है, महात्मा का दर्शन, महात्मा की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के गृह होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। मैं निवेदन कर रहा था अवतार के बारे में। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया था अवतार के संदर्भ में, इस धरती पर भगवान का अवतार क्यों होता है। श्री सूत जी महाराज जी ने भगवान के 24 अवतारों की चर्चा की। बहुत से अवतार होते हैं, लेकिन अवतार होते क्यों है, बड़ा सुंदर रहस्य है। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में जो सीढ़ियां होती है ना, या तो लिफ्ट का जमाना है, लिफ्ट लगा है, लेकिन सीढ़ियां भी है ना यहां पे, जोर से बोलो, सीढ़ियां है ना, सीढ़ियों से कभी कभी सीढ़ियों का भी सहारा लेना पड़ता है। अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो क्या करेंगे, सीढ़ियों का सहारा लेंगे ना। तो जिन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आते हैं उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर के भी जाते हैं। बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। जिन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आते हैं उन्हीं सीढ़ियों से नीचे भी उतरना पड़ता है। तो सीढ़ियां क्या है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 15 सीढ़ियों का वर्णन किया गया। श्री रामचरितमानस में 15 सीढ़ियां बताई गई हैं। और वो 15 सीढ़ियां कौन है? काकर्षी वसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी 4, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी 8, योगी सूर सुतापस ज्ञानी 9-12, धर्मनिरत पंडित विज्ञानी 15। ये 15 सीढ़ियां परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र अबलात्मा परमहंस इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके परमात्मा के पास तक पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे 2 बालक हैं, एक प्रौढ़ है, अच्छी तरीके से सुयोग्य हो गया है, ज्ञानी है, और एक बालक अबोध है। जैसे एक मां के 2 बच्चे हैं, तो जो बच्चा पढ़ लिख करके सुयोग्य हो गया है, ज्ञानी हो गया है, अच्छी तरीके से समझदार हो गया है, वो तो सीढ़ियों से चढ़ जाता है और चढ़ करके मां के पास पहुंच जाता है। लेकिन जो बच्चा अबोध है, एक भी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, वो नीचे बैठा रहता है, रोता रहता है, माँ ऊपर से मिठाइयां दिखाती है, खिलौने दिखाती है, तरह तरह से प्रलोभन देती, बेटा ऊपर आजा बेटा ऊपर आजा, लेकिन वो बच्चा एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, असहाय है, असमर्थ है सीढ़ियों को चढ़ने में। तो मां स्वयं उन्हीं सीढ़ियों से, जिन सीढ़ियों से वो ज्ञानी भक्त ज्ञानी बालक ऊपर चढ़ करके जाके मां से मिला है, उन्हीं सीढ़ियों से मां उतर के नीचे आती है और बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे जीवन की प्रत्यक्ष घटना है, उस घटना को आपको बताना चाहता हूं, मेरा हृदय भर आता है। मेरी अवस्था सिर्फ 8 साल की थी, बहुत मैं छोटा था। 3 साल की अवस्था में मेरी आंखें चली गई थी और 5 साल तक मैं जीवन और मृत्यु से संघर्ष करता रहा। उसके बाद एक महापुरुष मेरे जीवन में मिल गए, जैसे अभी मैंने कहा ना कि स महात्मा सुदुर्लभ, बड़े दुर्लभ संत थे, बड़े ही विलक्षण महापुरुष थे, उनका साक्षात्कार मेरे जीवन में हुआ। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणी सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज अयोध्या में रहते थे, वो संत मेरे जीवन में मिले और मुझे जीवन दान दिया। उसके पश्चात सदगुरुदेव भगवान के साथ में वृंदावन धाम में गया था। श्री रंग जी का मंदिर है वृंदावन में, आप सबको पता है, हमारे सभी महापुरुषों को पता है। श्री रंग जी के मंदिर में मैं ठहरा था पूज्य सदगुरुदेव भगवान के साथ, और उस समय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय सनातन धर्म के प्रखर सूर्य साक्षात ब्रह्म के अवतार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की भागवत चल रही थी। भागवत सुनने के लिए मैं जाता था तो मैं ये कोशिश करता था कि भीड़ होने से पहले पहुंच जाऊं, लेकिन 2 दिन तो थोड़ा आगे बैठने का मौका मिल गया, 1 दिन थोड़ा पीछे हो गए हम। और सबसे पीछे बैठने का मौका मिला, सबसे पीछे मैं बैठा था। बड़े बड़े भक्त लोग, बड़े बड़े लोग महाराज श्री से मिल रहे थे। जब कथा समाप्त हुई उसके बाद महाराज श्री की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई और महाराज श्री ने एक सेवक को भेजा, कहा वो जो बालक बैठा है उसको मेरे पास ले आओ। आकर के मुझे कहा कि स्वामी जी आपको बुला रहे हैं, महाराज श्री के श्री चरणों के सानिध्य में मैं पहुंच सकता था क्या? इतनी दूर मैं बैठा था, इतनी भीड़ थी और मेरे आंखें भी नहीं थी, कैसे मैं पहुंच सकता था? लेकिन उन्होंने स्वयं कृपा की, बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग मिल रहे थे। उनके बीच में मेरी क्या विषाद थी कि मैं कैसे पहुंच पाता वहां तक, लेकिन उन्होंने स्वयं कृपा की मेरे ऊपर। सच बोलो, इतने लोग बैठे हो, वे महापुरुष का अवतार था कि और कुछ था? वे साक्षात अवतार लेकर के स्वयं इस धरती पर आए थे, साक्षात भगवान का अवतार ही उनके रूप में था। और उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके पूछा, बेटा कहां रहते हो? बताया, महाराज श्री मैं प्रयाग में रहता हूं। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे गुरु कौन है? मैंने बताया, कहा कि ठीक है कल मिलूंगा। जाकर के मैंने सदगुरुदेव भगवान से बताया, मेरे सदगुरुदेव भगवान तुरंत मेरा हाथ पकड़े और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास लेकर के आए और मेरा हाथ उनके हाथों में दे दिया। कहा, महाराज ये बालक है, इसके लिए आप कुछ बताइए, इसके लिए कुछ आप दिशा निर्देश करिए। महाराज श्री ने आदेश दिया मेरे सदगुरुदेव भगवान से, कहा इस बालक को आप भागवत पढ़ाइए। और उसी दिन से उन्होंने भागवत पढ़ाना मुझे शुरू कर दिया। अतिशयोक्ति नहीं, आपसे यथार्थ बता रहा हूं, जितने लोग बैठे हैं बड़े ध्यान से समझ लें कि 11 वर्ष की अवस्था में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अखंडानंद जी महाराज की कृपा से संपूर्ण श्रीमद् भागवत मुझे कंठ हो गया था। इतनी बड़ी कृपा की उन्होंने, और पहली बार तो मैं वो मिला था, दूसरी बार सद्गुरुदेव भगवान के साथ मिला, और तीसरी बार उनके श्री चरणों के सानिध्य में जब मैं पहुंचा तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज श्री ने कहा, बेटा आज मुझे कुछ सुनाओ। पांच मिनट का समय मुझे मिला था, पांच मिनट बोल करके जब मैं समाप्त करने लगा, महाराज श्री ने कहा नहीं दस मिनट और सुनाओ। दस मिनट और जब बोल चुका मैं, महाराज श्री ने कहा दस मिनट और सुनाओ मुझे। और महाराज श्री की इतनी बड़ी कृपा हुई कि आज अनंत श्री विभूषित महाराज श्री के आशीर्वाद से, उनकी अखंड कृपा से 775 भागवत में कर चुका हूं संगीत के साथ में। तो ये निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष अवतार लेते हैं धरती पर, वे अवतार लेकर के और ऐसा विलक्षण कार्य करते हैं, जिस विलक्षण कार्य को प्राप्त करके संसार के लोगों को एक दिशा निर्देश प्राप्त होता है। इसलिए इतना बड़ा जो आनंद महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, इतने बड़े महोत्सव का मतलब क्या है? हमारे यहां सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य ये होना चाहिए, महाराज श्री का आनंद जन्मोत्सव, आनंद महोत्सव, आविर्भाव महोत्सव तब सार्थक होगा जो कि महाराज श्री के द्वारा दिया गया उपदेश, निर्देश और आदेश हमारे जीवन में हो, हम उसको जीवन में उतारें और जीवन में उतार करके उनके संस्मरणों को, उनके जो उनकी जो याददाश्त है, उनकी जो व्यवस्थाएं, उनको अपने जीवन में ले आए और जीवन में ला करके पूरी तरीके से उस पर चलने का एक संकल्प ले, एक व्रत ले, तभी ये सार्थक होगा। क्योंकि जब जब देश पर संकट के बादल मंडराते हैं, चिंता संत को होती है, सबको नहीं होती, किसी को कुर्सी की चिंता होती है, किसी को धन की चिंता होती, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, किसी को किसी चीज की चिंता, किसी को किसी चीज की चिंता, लेकिन राष्ट्र हमारा कहां जा रहा है, राष्ट्र के विषय में अगर चिंता होती है तो संत को होती है। एक तरफ क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विदेहराज योगिराज सिरताज श्री जनकराज जी महाराज की सत्ता थी, और दूसरी ओर चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज की सत्ता थी, लेकिन दो दो सत्ताओं के रहते हुए भी रावण जैसा आक्रांता हमारे देश में घुस करके और दो चौकियां स्थापित कर दिया, दक्षिण भारत में नासिक में और उत्तर भारत में बक्सर में दो चौकियां स्थापित कर दी, बक्सर में मारीच ताड़ोकार सुबाहु को सुनिश्चित कर दिया, उत्तर भारत दक्षिण भारत में खरदूषण और सुरपणखा को सुनिश्चित कर दिया, और उस समय हमारी संस्कृति पर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ, इतना बड़ा वज्रपात हुआ कि किसी भी प्रकार से शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, नहीं हरि भगत जग तप ज्ञान, सपने सुनी न वेद पुराना, जब जोग विरागा तप मग भागा, श्रवण सुनै दशीसा, आपुन उठ धावे रहै न पावे, धर सब घाले खीसा, अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना, सो बहुविध त्रासे देश निकासे, जो कह वेद पुराना, वर्ण न जाय अनीति घोर निशाचर जो करें। लेकिन उस समय चिंता किसको हुई, एक संत को चिंता हुई, महर्षि विश्वामित्र जी महाराज जैसे संत थे, उनके मन में चिंता हुई राष्ट्र के लिए कि मेरा राष्ट्र कहां जा रहा है, राष्ट्र की संस्कृति कहां जा रही है, मर्यादा कहां जा रही है, गाद तने मन चिंता व्यापी, और उस चिंता को लेकर के भगवान राम और लक्ष्मण को मांग करके ले आए और दुष्टों का संहार कराया, भारतीय संस्कृति की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, अधर्म का विनाश कराया। तो कहने का आशय मेरा यही था कि ऐसे महापुरुष संसार में जब आते हैं लाखों करोड़ों वर्ष के बाद, आकर के वे जाते नहीं है, शरीर मरण धर्म है, शरीर आता जाता रहता है, लेकिन वे सतत सभी भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। आज भी अनंत श्री विभूषित परमाराध्य प्रात स्मरणीय अनंत बंद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज सभी भक्तों के हृदय में विराजमान है। और अभी श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का जो भक्ति योग नामक ग्रंथ का विमोचन किया मैंने, ये ग्रंथ सबके जीवन में पाथेय सिद्ध हो, सारे के सारे लोगों के जीवन में प्रकाश पुंज प्रदान करे, ये मेरी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज अनंत श्री विभूषित परमाराध्य प्रात स्मरणीय अनंत बंद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की इस पावन जन्मोत्सव के अवसर पर, इस पावन आनंद महोत्सव के अवसर पर मैं उनके पावन चरणों में कोटिश वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अपनी भाव पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। और सबसे विशेष बात यह है कि तीर्थराज प्रयाग की ओर से कल कल निनादनी कलिबल नाशिनी त्रेतापतावनी भगवती माँ गंगा रवि तनया माँ यमुना और अदृश्य पावन सरस्वती के पावन त्रिवेणी की ओर से महाराज श्री के चरणों में भावांजलि पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मंचस्थ समस्त विद्वत वृंद जितने भी महापुरुष यहां पर विराजमान है, श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, स्वामी उमेशानंद जी महाराज, हरीश भाई, सबके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए और सादर नमन समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
1: नारायण। अतीव सुंदर परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने अपने उद्बोधन में, और ऐसा लगा ही नहीं कि प्रथम बार आपका दर्शन हुआ है, महाराज जी का जो संस्मरण सुनाया बहुत ही भावपूर्ण और सबके हृदय को गदगद करने वाला था। आपके जीवन में हम लोगों को यही आश्चर्य होता है कहां कहां पूज्य गुरुदेव का प्रवेश, किन किन लोगों पर कृपा, और हम लोग शायद अभी तक भी नहीं जानते हैं कि कहां कहां महाराज जी ने कृपा की है। बहुत ही खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ, और ऐसा ही लगा कि कोई हमारे ही पूज्य हमको मिल गए हैं। बहुत बहुत आपके चरणों में वंदन। अब हमारे गिरीश भाई ड्रेस वाला जो बहुत इस कार्यक्रम के लिए प्रारंभ से ही पूर्ण प्रयासरत रहे हैं और जिसमें वो लग जाते हो कार्यक्रम अवश्य सफल होता है, सफलतम होता है, ऐसा मैंने देखा है। तो मैं गिरीश भाई से आग्रह करूंगा संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति, सभी संतों के प्रति अपने दो शब्द आभार के रूप में श्री परमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से और हमारे गुरुदेव के परिवार की ओर से व्यक्त करें। श्री गिरीश भाई ड्रेसवाला।
2: हरिओम। पूज्य संतों के पुनीत शिव चरणों में वंदन। आप सभी श्रोता जन जो भी यहां उपस्थित है सभी को वंदन करते हुए, सुबह सुबह ही हम लिफ्ट में आ रहे थे तो ऊपर से यहां आपको पता है कि लिफ्ट जो दबाते हैं तो जहां पहले दबी हो वहां पहले चली जाती है, तो लिफ्ट नीचे आई और पूज्य अध्यक्ष जो हमारे हैं रामानुजाचार्य जी वह थे, उनके शास्त्री जी थे, सुमन भाई साथ में थे और वॉचमैन जो चलाते हैं लिफ्ट वो थे। चार आदमी होने के बाद पांचवे की कहा उसमें जगह हो, छोटी लिफ्ट है, फिर भी मुझे कहा गया कि आ जाइए। आ गया अंदर, मेरी धर्मपत्नी बैठी खड़ी थी वहां, तो चुमन भाई ने कहा भाभी आप भी आ जाइए, तो वो भी आ रही। तो वॉचमैन ने कहा लिफ्ट ऊपर कैसे जाएगी, तो मैंने बोला जहां संत साथ में होते हैं ना तो हम हल्के हो जाते हैं, और कायदे से शांति से लिफ्ट ऊपर चली गई। तो यह सालों साल जो हम आनंद कर रहे हैं, ये आनंद का ही मजा है कि यहां इतनी सुंदर बधाई भी होती है, यहां इतनी सुंदर बातें भी सुनने को मिलती है। महाराज जी ने कहा था कि बंबई वाले कम वक्त हैं, मगर यहां कम वक्त नहीं दिखते हैं, 10:30 हो जाए फिर भी यहां से कोई हिलेंगे नहीं। अगर गिरीशानंद जी बोलेंगे कि अभी और एक मैं बधाई गीत गाता हूं तो फिर और लोग बैठे रहेंगे। तो यह संतों की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है और इसी से यह संस्था चल रही है। हमारे पिता श्री हरिभाई ड्रेसवाला जो जिनको आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं हालांकि, और महाराज जी इनका अगर वो यहां होते इस संसार में है, अभी भी है हमारे बीच में, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि नहीं है, तो यह 25 दिसंबर को उनके 100 वर्ष पूरे होंगे, शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। तो महाराज जी जो अखंडानंद जी महाराज का तो थोड़ा बहुत हमने संभाल लिया था, गिरीशानंद जी महाराज यह जो उत्सव रहेगा 25 दिसंबर का तो थोड़ा आप लोग संभाल लें तो हम थोड़े फ्री हो जाए उसमें से, और इसी तरह से हम आनंद करते रहे। तो आप सबकी तरफ से फिर से सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए पूज्य महाराज जी की प्रातःकाल जो अखंडानंद जी महाराज की सीढ़ी 7:15 से 7:30 यहां हम सुन सकते हैं, रविवार को उनके दर्शन और प्रवचन का भी लाभ हमें दूसरी मंजिल पर 4 से 6 के दरमियान प्रति रविवार को मिलता है, तो उसका भी जरूर से आनंद ले। अखंडानंद जी महाराज की जो बातें सुनते हैं, जिस रीत से हम लोग यहां परिचित होते हैं तो लगता है कि और परिचय बढ़ाए। जैसे यहां कई लोग बैठे हैं, जैसे मैंने भी प्रेमपुर जी महाराज के दर्शन किए, अखंडानंद जी महाराज के साथ तो समझो कि उनकी गोद में ही बड़ा हुआ हूं, तो वैसे जो संत यहां पे आते रहते हैं, और हमारे पिताजी के गुरु भी थे, जैसे मुक्तानंद जी महाराज ने बताया कि भाई वो शास्त्र के हिसाब से उनके गुरु हो के तो दादा गुरु हुए हैं अखंडानंद जी महाराज। श्रवणानंद जी महाराज भी बताते थे कि मेरे दादा गुरु है, तो हमारे भी वो दादा गुरु है अखंडानंद जी महाराज। तो ऐसे कई यहां हैं उनके यहां गुरु के रूप में अखंडानंद जी महाराज विराजमान है, और विशेष रूप से जो रामानुजाचार्य और उनके शास्त्री जी वगैरह पधारे, आपको वंदन करते हुए हरीश भाई शास्त्री, नरेंद्र मोदी का जैसे वीजा की तकलीफ हुई थी ऐसी कोई बात न हो जाए, इसके लिए ऐसा रखो कि प्रतिवर्ष गिरीशानंद जी महाराज को नाराज मत करो, क्योंकि आनंद उत्सव है, जितने भी हम साथ में रहेंगे तो वो वीजा जो अखंडानंद जी महाराज देंगे वो कोई नहीं दे सकता। अब शांति पाठ।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: ஹமே குச் மாலூம் நஹி தா, சப் குச் சீஜ் பதாயா கயா. மானே பெஹலே கஹ தியா கி மே தேரி மா ஹூம், யே பி மாலூம் நஹி தா. பச்சா தோடி ஜானதா ஹை மா கோ. பிர மா திரே சே தோ சார் மஹீனே கே பாத் கேதே, வோ ஜோ திக்தா நா கட்பட், வோ தேரா பாப் ஹை. बाप है मालूम पड़ता है. फिर दादा दादी, एक एक चीज का इंट्रोडक्शन होता है, पहचान कराई जाती है. बालक कुछ नहीं जानता है. तो वी आर बॉर्न इग्नोरेंट. हम जन्म से बिल्कुल अज्ञान के साथ पैदा होते हैं. इस जगत को भी नहीं जानते हैं और अपने आत्मा को भी नहीं जानते हैं. धीरे धीरे स्कूल में गए, केजी में गए, किंडरगार्टन में गए, धीरे ए मानी एप्पल, बी मानी क्या बैट, सी मानी कैट, डी मानी डॉग. हिंदी में पढ़ने जाए तो ग मानी गणेश. सिखाएंगे, पहचान करेगी. मालूम नहीं था, इतना जानता गया, अब तो एमए हो गया, पीएचडी हो गया, है ना. आगे आगे बढ़ता जाता है. एक जन ने मुझे कहा कि मैं डबल एमए हूं. तू तो कभी स्कॉल में नहीं गया, डबल एमए कैसे हो गया? मैं मामा हूं इसलिए. मामा है ना, एमए एमए दो बार है. डबल एमए इतना इतना पढ़ता गया, पीएचडी तक, डीलिट तक हो गया. सो मेनी डिग्रीज, यू नो, यू आर इंजीनियर, यू आर डॉक्टर, यू आर लॉयर. इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर भी अज्ञान पूरा का पूरा जाता है कि बना रहता है? अवर कैपिटल इज इग्नोरेंस. हमारा मूल मुड़ी क्या है, जन्म से क्या है? अज्ञान. और रोज आते हैं प्रेमपुरी में. यहां कुछ लोग आते हैं जो अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अज्ञान में और गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे भी आते हैं. तो यहां सब प्रकार के लोग आते हैं. तो अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, पढ़ाते हैं ठीक तरह से. पर जितना भी अज्ञान जाए, फिर भी पूरे पूरा कभी जाएगा है? नहीं जाएगा. इसलिए कहते विद्या ददाति विनयम. जितना ज्यादा जानोगे, इतना जानोगे कि कितना नहीं जानता हूं. इसलिए विद्या ददाति विनयम. एक दूसरा भी अज्ञान है, वो अपने आत्मा के विषय में. मैं कौन हूं? मैं जो अपने को मान रहा हूं, उसमें मुझे ही संशय है कि मैं वो हूं कि नहीं हूं. इसलिए यहां सुनने हर रोज आते हैं कि स्वामी जी बताएंगे कि मैं कौन हूं. आपके विषय में मुझे बताना, मैं आपका नाम तक नहीं जानता है, फिर भी आप मानते हैं कि मैं आपको आपके साथ पहचान कराऊंगा. आत्मज्ञानम. इसलिए दो प्रकार की अविद्या मानी गई है, मूला विद्या, तूला विद्या. अपने आत्मा को न जानना मूला विद्या है, और अन्य अनात्म पदार्थ को न जानना तूला विद्या है. अपरा विद्या के द्वारा हम जगत के विषयों को जानते हैं. ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, प्राणी शास्त्र पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और अपना अज्ञान दूर करते हैं, एक बात याद रखना, लिख के रखना, मोर इन्फॉर्म्ड यू आर, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ यू लिव। जितना व्यक्ति जितना ज्यादा जानकार है उसके जीवन का स्तर इतना ही ऊंचा रहेगा। आप लोग को मालूम नहीं है कि मालूम होगा, द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक इज सो बिग, इस संगीत का जो जगत है बहुत बड़ा है, वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, भारतीय अभारतीय संगीत। भारतीय में भी ये जो शास्त्रीय संगीत है उसमें भी क्या, उत्तर भारत के म्यूजिक को क्या कहते हैं, भारतीय संगीत, और दूसरा क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक में भी बहुत है आगे, भारतीय संगीत में भी आगे क्या है, हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं उसको, उसमें फिर घराना है, ये है बहुत उसमें भी है, ये वैष्णव लोगों का क्या है, हवेली संगीत है। पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, सीखते जाओ, एक जीवन भी क्या है, कम है, पर जितना संगीत का अभ्यास करोगे इतना आपका जीवन का स्तर क्या होगा, सूक्ष्म हो जाएगा। संगीत समझते हैं उनको जो संगीत का आनंद आता है, वो ना समझ को ताल का ही आनंद आता है, और कुछ समझ में आता है नहीं उसको। ताल का आनंद तो कुत्ते को भी आता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी समझता है ताल क्या है। सो विद्या ददाती, बहुत आनंद देती है। इसलिए एक बात है, जीवन में उम्र कितनी भी हो जाए, अध्ययन कभी छूटे नहीं, लर्निंग शुड नॉट हैव फुल स्टॉप, लाइफ कैन हैव फुल स्टॉप नॉट लर्निंग। जितना भी हो सके कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, और हमको नहीं मालूम है, ये तो हमको मालूम ही है पहले से, किसी को भी पूछ सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, सिखाओ, सीख सकते हैं। वो क्या सोचेगा, आपको मालूम नहीं है, एक दिन उसको भी मालूम नहीं था, सीखो, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, आई डोंट नो, इट नॉट अ क्राइम, मैं नहीं जानता हूं, ये कोई गुनाह नहीं है, जानो। इसलिए अविद्या मेरे पास है, पर ये अविद्या एक काम करती है, जो नहीं है, जहां जो चीज नहीं है वहां दिखा देती है, इसको कहते हैं अतस्मिन तद्बुद्धि ही, निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट वस्तु बुद्धि ही, जो चीज जहां नहीं है उसको दिखा देती है। आपको बता दिया गया कि आश्रम में बहुत सांप है, और आपने देखा एक फणा चढ़ा के सांप है, आप डर गए रात को, और बाद में देखा एक रबर का सांप वहां था, तो रबर के सांप को सच्चा सांप किसने माना, किसने माना, आपने माना, किसके कारण, वो रज्जू रबर के सांप के अज्ञान के कारण उसको सच्चा कोबरा मान लिया, कृष्ण सर्प मान लिया। तो ये अविद्या का काम है, जो चीज जहां नहीं है उसको भी वहां प्रतीत करा दे। कई बार ऐसा होता है, रोज होता है आपके जन्म में, हम चल रहे थे, हमारे साथ कोई और चल रहा था, मैंने कहा लड़की आ रही है सामने से, तो उन्होंने कहा है लड़की नहीं है लड़का है, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरा बेटा है, उन्होंने कहा, उनको आप उनके पिताजी है कि नहीं, मैं उनकी मां हूं। अब आप देखो डबल अध्यास हो गया है ना। आजकल तो बाल भी ऐसे रखते हैं, बुट्टी ये सब पहनते हैं, मालूम नहीं पड़ता है, पूछना पड़ता है, जब बोलते तो भी आवाज ऐसी होती मालूम नहीं पड़ता है, तो क्या करो राम। तो वहां अतस्मिन तद्बुद्धि किसके कारण हो गई, लड़के को लड़की मानना, लड़की को लड़के मानना, अध्या। अच्छा ऐसा होता है, कई बार लोग ऊपर से वीक, तिरुपति, तिरुपति मालूम है ना, तिरुपति में सबसे बड़ा धंधा बाल का है, ये सब उतारते थे, उनकी वीक बनाते, मेरे को तिरु कोई भी बाल की वीक पहने तो उस पर तिरुपति का प्रसाद है उसके पास। तो किसी का बाल देखा आप चकित हो गए, अरे इतने काले काले सुंदर बाल, और आप पूछते भी है आप कौन सा तेल लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं? अध्यास। वो है अंदर, बिल्कुल एक बाल नहीं अंदर, उसके ऊपर बाल का क्या हो क्या है? अध्यास। मालूम है अध्यास कौन कराता है? अविद्या। रोज भूल हो जाती है, एक को दूसरा मानना, दूसरे को पहला मानना, इसको कहते हैं अध्यास अविद्याकृत दोष। अब आप फिर से दृष्टांत पे, विश्वम निजांतर्गतम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। ये जो विश्व है हमारी भीतर दिख रहा है, किसके कारण दिख रहा है? जैसे दर्पण में नगरी दिखती है ऐसे ये हमारे भीतर दिख रहा है, भीतर ही है दिख रहा है, चैतन्य आत्मा में दिख रहा है। पर अविद्या मायाया क्या होता है? वो जैसे बाहर है ऐसा देखता है। समझ में आ गया? नगरी हमारे भीतर दिखने पर भी ऐसा लगता है नगरी बाहर है,

ఆత్మని స్వప్రకాశే ప్రతితి విషయ ఆశ్రయే అవిద్యయా మాయయా బహిహి. నిద్రా హరేక్ ప్రాణి కో ప్రాప్త హోతీ హై. జాగ్రత్ మే ఇంద్రియో కే సహాయతా సే అంతఃకరణ బాహ్య విషయ శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధ కా అనుభవ కర్తా హై, వ్యవహార కర్తా హై, ఆదాన ప్రదాన హోతా హై. ఆంఖ సే రూప దిఖ రహా హై, మన రూప కో దిఖా రహా హై, ఔర్ మే సూర్య కో జానతా హూం. ये जागृत अवस्था है जहां बाह्य अर्थों की उपलब्धि होती है इंद्रियों के द्वारा. यही जो मैं हूं, जब निद्रा आरूढ़ हो जाता हूं तब मन भी सो जाता है, इंद्रियां भी सो जाती है, न बाह्य जगत प्रतीत होता है, न मन में कुछ दिखता है, दोनों सुप्त गुप्त है. హరేక్ మనుష్య జాగ్రత్ సే హమేషా స్వప్న సుషుప్తి మే జాతా హై. సుషుప్తి సే ఫిర్ వో జాగ్రత్ హో జాతా హై, ఉస్కో కేతే అర్ధ వికాస హై. ఇత్నా హీ జాగ్తా హై, మన జాగ్ జాతా హై, పాంచ్ జ్ఞానేంద్రియ సో రహీ హై, ఇస్లియే శబ్ద స్పర్శ రూప రస కా బోధ నహీ హోతా హై, ఆంఖ బంద హై और मुंह भी बंद है, स्वाद भी नहीं लेता है, सोया हुआ है, फिर भी मन जाग जाता है. तो मन में पहले देखे हुए विषयों के संस्कार पड़े हैं. हमने आम खाया है, वो भी लंगड़ा खाया है, जिसने आप उसको पछाड़ दिया, ऐसा लंगड़ा खाया है. तो लंगड़ा का स्वाद कहां बना है? मन में बना है और उसका संस्कार है. अभी मैं जाग जाता हूं आधा, स्वप्न में क्या देखता हूं कि हमको रत्नागिरी आपूस कैरी मिल गई. और मैं क्या कर रहा हूं, सबसे कैरी का मैंने एक कैरी आम का मैंने एक नियम रखा है, अकेले खाना. आम कैसे खाना चाहिए? अकेले खाना चाहिए, बांटना पड़ता है ना, इसलिए अकेले खाना बढ़िया है. और सब चीज बांट दो, केला सब ले जाओ, पर आम क्या खाने का है? अकेला खाने का है ना. तो आम खाते हैं, उस समय जो आम है आप जो खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं. और सचमुच आम खाने का मजा क्या है, उसका ऊपर का वो डीटा निकाल के फिर उसको बराबर गला के सीधा पीने का, वो जो आनंद है वो दूसरा है. काटना पड़ना तो गड़बड़ है, ऐसे ही पुराना ढंग. और उस समय अकेले नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी स्प्रे हो सकता है दूसरे पे, इसलिए अकेला अच्छा है. बचपन में हम लोग को याद है, पूरे कपड़े निकाल के ही देते थे लोग हाथ में, आम खाओ, सब जगह स्प्रे करो, कोई वादा नहीं है. अभी ये दृश्य आप लोग की मजा आ गई. हाँ, आम खा रहे बड़े प्रेम से, चूस रहे, उस समय वो आम आपके भीतर दिखता है कि बाहर स्वप्न में? प्रेमपुरी वाले सुबह सुबह इतने कंफ्यूज होते हैं. मैं चिमन भाई को कहूंगा कल से सबको चाय पिला के लाइए, यहां एक स्टॉल खोल दीजिए, मशीन लगाइए, सबको चाय पिलाइए. वो आपके भीतर दिख रहा है कि बाहर दिख रहा है? वो है भीतर, पर उस समय क्या दिखता है? सच्चा आंसर क्या है? आम बाहर का आम खाते कि अंदर का आम खाते हैं? हाँ? अंदर काम खाते हो कि बाहर का खाते हैं? बाहर का खाते हैं आम. उस समय तो स्वप्न में तो बाहर का आम दिखता है. आम बाहर दिखता है कि अंदर दिखता है स्वप्न में? तुम्हारे बुद्धि के अंदर दिखता है आम, उस समय ऐसा लगता है कि आम अंदर है, मैं अंदर का आम खा रहा हूं और बाहर कुछ आम नहीं, ऐसा दिखता है. उस समय क्या दिखता है? मैं अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा हूं और अकेला अकेला आम खा रहा हूं और दरवाजा बंद रखा है, कोई आए नहीं है ना, और ऐसे समय खाता हूं कोई आ भी नहीं सकता है, रात को 11 बजे, इस प्रकार समय भी है रात का,
टीवी भी चलता है और मैं बड़े प्रेम से आम चूस रहा हूं, उस समय वो डाइनिंग टेबल, वो घर, वो टीवी सब कहां है? कहां दिखता है? बाहर दिखता है। पर है कहां? किसके कारण बाहर दिखता है? माया। स्वप्न का जगत तुम्हारे भीतर होने पर भी बाहर दिख, बाहर है ऐसा दिखता है, बाहर है ऐसा दिखने पर भी वो कहां है? अंदर है। अंदर होने पर भी इसको क्या बोलते हैं? अविद्या। जो एक को दूसरे पे, दूसरे को पहले पे कर दे, भीतर को बाहर कर दे, बाहर को भीतर कर दे। इसी प्रकार से देखो, मालूम पड़ा, उद्भितम आविर्भूतम पश्यन अवलोकयन यथा निद्रया। समझ में आ गया? अभी आगे बढ़ते हैं। उस समय कोई आया और उसने आपको कहा बाबू भाई करके जोर के जगा दिया, तो आप क्या गए? जग गए। फिर क्या किया? आम रख के हाथ पांव धोए, मुंह साफ किया, कुल्ला किया, उनको भी आधा दिया। ये सब करते हैं तो उनको थाना भेजना पड़ेगा। एक ही बात का दुख है, आप बाबू भाई को कहेंगे अरे भाई हम तो पूरा करने देना था, बीच में से कहां उठा दिया आपने? आम का मजा आपको आया न, वहां आम है। प्रबोध समये जब उठ जाते हैं स्वप्न से, तो आम भी मैं, खाने वाला भी मैं, वो डाइनिंग टेबल भी, टीवी भी मैं, सब कुछ मैं। स्वात्मानमेवाद्वयम्, मेरे से भिन्न कोई चीज नहीं थी, फिर भी मुझसे भिन्न दिख रहा था। अभिन्न होने पर भी भिन्न दिख रहा था। उस समय क्या था? केवल चैतन्य आत्मा ही था, और अविद्या दोष के कारण ये आम और आम खाने वाला स्वामी और टीवी दिख रहा था। ये सब दिख रहा होने पर भी वो चैतन्य आत्मा से अभिन्न है कि नहीं है? पर चैतन्य आत्मा में कोई फर्क पड़ा? आम दिखने से खट्टा हो गया, मीठा हो गया, गंदा हो गया? जो कहते भरपूर। इसी प्रकार से ये जगत जो आपको दिख रहा है बाहर के भीतर, सबो सबो खोपड़ी चाट जाता हूं मैं, अभी कहां दिख रहा है? बाहर है। यही कहना, बाहर दिख रहा है। अगर बाहर नहीं दिख रहा है आप घर कैसे पहुंचेंगे? अंदर दिखता है तो यहीं बैठे रहना पड़ेगा। कहां दिखता है स्वामी भी? कहां दिखता है? स्वामी बाहर का ही है, गुजरात का है, यहां का नहीं है, तो बाहर दिख रहा है। और है कहां? निजांतर्गतम। ये दृश्य विश्व प्रपंच पंच ज्ञानेन्द्रिय द्वारा मालूम पड़ता है कहां? वृत्ति रूप में अंदर। वृत्ति भी अंदर है, वो कहां किसके द्वारा मालूम पड़ती है? प्रत्येक चैतन्य के द्वारा मालूम पड़ती है। इसलिए जागृत जगत बाहर दिखने पर भी आत्मा से अभिन्न है, और आत्मा की अज्ञान के कारण इस समय वो क्या दिख रहा है? बाहर दिख रहा है। स्वात्मानमेवाद्वयम्। एक बात याद रखना, जागृत और स्वप्न दोनों में ज्यादा सत्य कौन है? जागृत है। पर मांडुक्यकारी का कार कहते हैं ज्यादा और कम सत्य कहना जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही हमारे पास व्याप्ति है, यद दृश्यम तन मिथ्या। जो भी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा या मन के द्वारा दृश्य होता है, आत्म चैतन्य का भी जो विषय बनता है, चित्त वृत्ति, स्मृति इत्यादि, सुख दुख इत्यादि,
और चित्त वृत्ति का भी विषय बनता है कौन, ये जगत। जो दृश्य है, ग्राह्य है, दृश्य है वो मिथ्या है। मिथ्यावाय दृश्यत्वात्, जागृत मिथ्या। क्यों? दृश्यत्वात्। स्वप्न मिथ्या। क्यों? दृश्यत्वात्। दोनों दृश्य है इसलिए क्या है, मिथ्या है। सुबह सुबह कभी कभी बहुत बड़ी बात भी कही जाती है, जरा उसको आत्मसात करने में तकलीफ होती है, पर एक लक्षण दिया उन्होंने, जागृत और स्वप्न में हम लोग भेद मानते हैं, पर सचमुच में दोनों क्या है, दोनों मिथ्या है। एक वाक्य याद रखना, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। जितनी भी मिथ्या या प्रतीत होने वाली विकल्पना है, प्रतीतियां है, वो कभी निरधिष्ठान नहीं होती है। सांप भी दिखता है तो किसके कारण दिखता है, अगर रज्जु न हो तो सांप न दिखे। आकाश की नीलिमा भी दिखती है तो किसके कारण दिखती है, आकाश के कारण दिखती है। ये लड़के को लड़की मान लिया क्यों, लड़का था इसलिए, कोई तो था, ऐसी लड़की किसी को नहीं मान सकते, एक कुर्सी को लड़की नहीं मान सकता, वहां कोई था। तो विकल्पना निर्दिष्टान नहीं होती। अगर मैं चैतन्य आत्मा नहीं होता तो न तो स्वप्न मालूम पड़ता, न तो जागृत मालूम पड़ता। दोनों का अधिष्ठान कौन है, आश्रय कौन?

0: के कारण दर्पण का कुछ विकार नहीं होता है, वो कहता रहता है असंग रहता है। आप देखे तो वहां बिल्कुल उसका एक धरा है, सीधी सपाटी है, वहां तो सरफेस है और कुछ नहीं है, दिखने पर भी वहां कुछ नहीं है। इसी प्रकार के चैतन्य आत्मा में ये जागृत दृश्य दिखे या स्वप्न दृश्य दिखे, चिदात्मा केवल अद्वय है। यह अद्वय आत्मा ही दक्षिणा मूर्ति का स्वरूप है, जो प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् ये जानता है, जागृत होता है। याद रखना, हम लोग अनादि काल से सोए हुए हैं। किसके प्रति? आत्मज्ञान के प्रति, आत्मा के स्वरूप के प्रति। प्रबोध समये साक्षात जब करते हैं, बोध हो जाता है। और एक बात है, बोध एक बार हो गया फिर जाता नहीं है, अज्ञान जाएगा वापिस आएगा नहीं, और अज्ञान आने के बाद जाएगा नहीं। तो आप लोगों को एक दिन कौतूहल था कि बिजली क्या होती है ना, बच्चों को होता है ये बिजली है, वायर में बिजली है, ये बिजली दिखती नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, हम लोग सब लोग बचपन में क्या किया, एक दिन वायर खुला था, चालू था, लाइव वायर, उसको भूल से टच कर दिया, फिर क्या हुआ, विद्युत शक्ति का साक्षात्कार हो गया, डायरेक्ट रियलाइजेशन। इसके बाद आपको कभी याद रखना पड़ेगा ये बिजली है, इसको छूना नहीं, कहना नहीं पड़ता है, कैसा हो गया उसका। फिर जब करते हैं बिजली का करण लगता है, बिजली का करण, कोई जब की भी आवश्यकता नहीं, क्यों, एक बार ज्ञान हो गया फिर जाएगा नहीं। गरम गरम चीज जीप पे रख गई, जल गए, एक बार कितनी बार देखना पड़ता है, अग्नि गरम है, एक कितनी बार, एक ही बार। बच्चा एक बार अंगारे से जल जाता है, फिर कभी छुएगा, ये सब कुछ जाना पड़े, एक बार जलना पड़ता है, एक बार करंट लगाना पड़ता है कि नहीं, नहीं तो सीखते नहीं है। एक बार ज्ञान हो गया, ऐसा हो सकता है जिसको पानी में तैरना आता है वो कहता है तो मैं तो भूल गया, इसके कारण पानी में डूब गया, ऐसा हो सकता है? एक बार आ गया तो इसलिए मत चिंता करना, स्वामी जी अध्यात्म विद्या मंदिर में रोज जाते, ज्ञान हो गया उस दिन तो आपके कारण हो गया, फिर घर गया तो क्या हो गया, चला गया, फिर क्या कर, जो चला गया वो पहले था ही नहीं, ओके, जो चला जाता है वो हुआ ही नहीं था। इसलिए ये भी चिंता मत करना, गत्वा न निवर्तन्ते, वापिस आता नहीं है। प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरु मूर्तये, जिनको ये ज्ञान है वही गुरु मूर्ति है, जिन्होंने ज्ञान कराया वो गुरु मूर्ति है, और मुझे ज्ञान हुआ क्या कि गुरु मूर्ति से मैं अभिन्न हूं। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नम इदम, मेरे नमस्कार है दक्षिणा मूर्तये, वही दक्षिणाभिमुख तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले वही गुरुमूर्त दक्षिणा मूर्ति है। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: परमात्मा जो है, परमात्मा जो उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, उससे विपरीत का भोग नहीं कर सकते। इसीलिए अगर परमात्मा ही उसका भोग नहीं कर सकते तो परमात्मा को रिझाने के लिए हम क्या देते हैं भाई, हाँ, हमारा ही बनाया हुआ कुछ उसको दे देते हैं, भाई ये लो, भाई ये खाओ, ये मैं तुझे दे रहा हूँ।

ये मैं कर रहा हूँ, हम क्या देंगे उसको? वो भोग कर सकेगा क्या? उसको भोग करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ आनंद का ही भोगता है। तो हमें अगर परमात्मा को कुछ देना है तो क्या देना है पता है? परमात्मा को एक स्मृति रूप ही भेंट देनी है। कैसी स्मृति? कि जब मैं अपने मन को जो भा रहा है उसके साथ मैं जब इंद्रिय सन्निकर्ष कर रहा हूं तो उसमें से जो आनंद उठा वो मैं तुझे दे देता हूं। आई गिव इट टू यू, ठीक है, वो मैं तुझे दे देता हूं। बी थैंकफुल, एटलीस्ट इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? बी थैंकफुल एट ईच एंड एवरी मोमेंट। जब भी आनंद हुआ, जब भी सन्निकर्ष हुआ तो उसके पकड़ के उसे दे दीजिए। इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू गिव एनीथिंग टू योर लॉर्ड, बिकॉज वो वही खा सकता है, वो जो है वही उसको दे सकते हैं आप, तो वो ले लेगा। तो वो आपका आनंद क्या होगा? वो आपका आनंद रिजर्व हो जाएगा, वो शाश्वत हो जाएगा, वो बच जाएगा और आप तृप्त हो जाएंगे वो भोग से। अगर वो भोग के साथ आनंद आ गया और वो आनंद आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया तो वो भोग से आपको तृप्ति मिल जाएगी। फिर वो भोग आपको डरा भी नहीं सकता, दौड़ा भी नहीं सकता, परेशान भी नहीं कर सकता। भोग के बाद परेशानी शुरू होती है कि फिर से कब आए या ये फिर से कब न आए। ऐसी ही अवस्थाएं चलती रहती है। कुछ देना है तो जागृत का आनंद दे देना। ऐसे ही स्वप्न अवस्था में जो आनंद है, परमात्मा को प्रार्थना करके सोते हैं कि स्वप्न अवस्था में जो जो भी मैं भोग करूं उसका आनंद मैं आपको समर्पित करते ही सो रहा हूं। तो वहां जितने भी आनंद होंगे वो भी परमात्मा को आपने गिफ्ट दे दी, समर्पित कर दिया। उसको आप देंगे तो ही पता लगेगा, तो ही एक होगा, क्योंकि वो आनंद का भोग करने के लिए उसे आना ही पड़ेगा। वो भोग करने वाला कहाँ है? भोग करने वाला परमात्मा कैसा है? सर्वदेशीय है, सर्वकाल में है, वो वहां है ही। ये मर्ज हो जाता है। ये क्या है कि हम हमारे घर से, हमारे घर की मटकी में से पानी लेके, एक गिलास पानी लेके समुद्र को देने जाते। अगर समुद्र को कुछ देना ही है तो उसमें कुछ घुल मिल जाए ऐसा ही दे सकते हैं ना। एक कटोरी भर के, एक बोतल भर के ऑयल नहीं डाल सकते। वो मिलता नहीं है समुद्र को। समुद्र में क्या देना है? समुद्र में अगर देना ही है तो एक बूंद जल दे दीजिए तो हो जाएगा। तो ये आपका एक क्षण का आनंद वो परमात्मा को दे दिया तो आप क्या हो जाएंगे? एक गिलास पानी में समुद्र को देने जाती हूं तो अब वो एक गिलास पानी क्या हो गया? समुद्र हो गया। तो ऐसे एक क्षण का भी आनंद उसे समर्पित कर दिया तो उसी क्षण जो आपको अनुभव होगा ना वो विराट परमात्मा का अनुभव होगा। पर देना चाहिए, देने के लिए पहले जानना चाहिए कि वो आनंद है। जानने से पहले जब वो सन्निकर्ष होता है तब वो आनंद के लिए, आनंद की जो घटना घटती है उसमें सतर्कता आनी चाहिए। हम आनंद प्राप्त करने में इतने प्रचुर हो जाते हैं कि सतर्क नहीं रहते कि ये आनंद आया और ये उसे किसी को दे देना है। तो भाई देना है या नहीं? आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिखती है और हम जाके दे दे उसको। आनंद को देना या नहीं? परमात्मा को बड़े से बड़ा कुछ देना या नहीं? क्या हमारी स्मृति जो है, हमारी जो सतर्कता है, हमारी जो रिमेम्बरेंस जो है, चेतना जो है, बस उसे याद ही करना है, वही उसे देना है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आपको मिलना नहीं होता पर याद आप आते हैं, हम आपको याद कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं? काफी है भाई आपको, हमारा याद करना काफी है। भले बरसों तक हम नहीं मिल सकेंगे उसकी बात नहीं है, याद किया तो काफी हो गया। बस इसी प्रकार वो परमात्मा तो वहां है, स्टेडीली याद किया तो काफी हो गया। हमारी तरफ से जो कोई आत्म साक्षात्कार संबंधी पुरुषार्थ की बात करते हैं ना भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष और धर्म में पुरुषार्थ तो ये यही पुरुषार्थ है कि आप उसे सिर्फ याद कर लीजिए। और ये याद करने के लिए ही मंदिर है, मूर्ति है, तीर्थाटन है, भजन है, भक्ति है, सत्संग है, उसकी व्यवस्थाएं स्थूल रूपेण की गई है कि भाई ऐसे बंद आंख करके तो आप याद नहीं कर सकते। वो थोड़ा दूरदर्श है, कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, तो भाई बाहर के संपर्क से भी याद कर लीजिए। जब आप परमात्मा के साथ खड़े होते हैं, अपनी अच्छी मूर्ति जो लगती है उसके सामने आप खड़े होते हैं तो क्या हो जाता है? एक क्षण के लिए आनंद आता है कि नहीं? हाँ,
आनंद आ जाता है, जो जो उल्लास हो जाता है, जो आश्चर्य भर आश्चर्य से भर जाते हैं ना, वही वो परमात्मा है आपके भीतर से। वो आनंद मूर्ति में से निकला, हाँ, कोई गुरुजनों को मिलने से जो आपको आनंद आता है वो कहां से निकला? उसके शरीर में से निकला? नहीं। देखो ऐसा ही होता तो घर में आके भी आप याद कर सकते हैं वही मूर्ति को, और वही आनंद आता है। आनंद का स्रोत कहां से झलकता है? तो बोले मेरे भीतर से ही उसका प्रगटीकरण हुआ। सिर्फ मूर्ति जो है, कोई भी प्रतिमा है, कोई भी स्मृति है, वो उसका सिर्फ मात्र अवलंबन है, वो खाली सहारा है। तो ये जो आनंद जो है, जो क्षण क्षण में आपको आश्चर्यचकित कर देता है, वही ये परमात्मा है। तो आनंद भूख याने बराबर आपको अब समझ में आया कि जब सन्निकर्ष होता है आनंद निकलता है। बस वो आनंद को ही याद कर लीजिए कि ये भोग है, वो नाशवंत है, भोगतने वाली है इंद्रिया भी नाशवंत है, उसके बीच में जो हो रहा है वही वो परमात्मा है। और जिस क्षण बिना भोग बिना इंद्रिय सन्निकर्ष आप वो आनंद को याद कर सके, तो समझना कि वो आनंद, बिना वो आनंद को भोग की आवश्यकता नहीं है, बिना भोग भी आप याद कर सकते हैं। भाई कैसे? तो अभी यहाँ बैठ के आपके कोई भी जो प्रिय चीज है उसे आप याद कीजिए, मन से प्रिय जो परमात्मा है उसे याद कीजिए, प्रिय व्यक्ति भी चलेगी, प्रिय वस्तु भी चलेगी जो आपको बहुत बहुत प्रिय है। एक क्षण के लिए भी आप अपनी प्रिय चीज को याद करेंगे तो उसका तो अभी अभाव है, पर आनंद है कि नहीं आपके साथ? आनंद है कि नहीं? हाँ, आपने बोला आनंद है, तो आप मुझे बताइए कि आपके ये आनंद के लिए सहारा किसका लेना पड़ा? वो व्यक्ति का, इंद्रिय सन्निकर्ष का? आया कहाँ से ये आनंद? ये आनंद तो वहां था ही, ये आनंद तो वहां था ही। तो ये जितने जितने सन्निकर्ष होते हैं, जितने जितने विषयों के भोग होते हैं, वो परमात्मा वहीं से झलकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे हम आनंद से ही भरे हैं। ये सन्निकर्ष सिर्फ अवलंबन, सिर्फ एक निमित्त बनते हैं, पर परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की है। देखिए ये कृपा, ये आश्चर्य है कि वो परमात्मा स्थूल स्वरूप से पर है, फिर भी स्थूल स्वरूप से साथ जब सन्निकर्ष होता है तब वो आनंद उत्पन्न होता है। अब ये कैसे हो सकता है? अब थोड़ा आगे सोचिए, स्थूल है, इंद्रिया कैसी है? इंद्रिया जड़ है, और भोग का विषय क्या है? भोग का विषय भी जड़ है। तो ये जड़ जो है इंद्रिय, वो स्थूल भोग के साथ जब मिलती है तो आनंद क्यों उत्पन्न होता है? आनंद तो चेतन है, आनंद की आनंद रहता है, ये कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में सोचिए जरा। और यही इतना सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि परमात्मा सर्वदेशीय, सर्वत्र अदृश्य रूप से विलसित है। अब क्या होता है, सभी पदार्थ में अस्थिभाति प्रिय रूप से वो जो परमात्मा है मेरे भीतर, अब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि सन्निकर्ष होता किसका है, मिलता कौन है, क्योंकि मिलने वाला चेतन ही होना चाहिए। ये जो भोग हो रहा है, सन्निकर्ष हो रहा है, सानिध्य हो रहा है विषयों का इंद्रियों के साथ, उसमें कुछ तो कहीं चेतन होना ही चाहिए, नहीं तो आनंद की उत्पत्ति कैसे होगी? आनंद सिर्फ परमात्मा का ही स्वभाव है, जड़ इंद्रियों का स्वभाव नहीं है, तो कहां से आएगा वो आनंद? हाँ, तो ये जो पदार्थ जो है, पदार्थ है वो भी आच्छादित है। वे किससे आच्छादित है? ये जो टेबल है वो किससे आच्छादित है? टेबल के ऊपर क्या है? ये जब टेबल, ये टेबल है ऐसा मैं बोलती हूँ तो सबसे पहले मैं किसको देखती हूँ? हाँ, हाँ, कवर के पहले, हाँ, क्या है कवर के पहले? इधर मैं अंधेरा कर दूं तो नजर किसके ऊपर पहले जाती है? पहले जो वेस्टर्न है, जो प्रकाश है, जो उसके ऊपर आवरण है, उसके ऊपर नजर पहले जाती है। पर ये आवरण कैसा है? ये आवरण अदृश्य है, ये आवरण अनिर्देश है। ये आवरण कैसा है? उसका कोई आकार है? नहीं भाई, उसका कोई आकार नहीं है, वो सर्वदेशीय है, सर्वकाल में है। तो ये जो आवरण जो है, ये आत्मा का अस्थिभाति प्रिय रूप का आवरण है, वो सब पदार्थ में है।
अब ज्ञान कैसे होता है? जड़ जड़ से जड़ का ज्ञान कर सकता है क्या? इंद्रिया जड़ है, वो ये जड़ टेबल का ज्ञान नहीं कर सकती है। तो ज्ञान कैसे होता है? भाई मेरे भीतर ये चक्षु इंद्रिय है, ये चक्षु इंद्रिय से मन मन पहले मन होता है कि मैं ये इसको जानूं। पहले जानने की इच्छा होती है, फिर ही पदार्थ मुझे, मैं पदार्थ को जान सकती हूँ। बिना मन में पदार्थ को नहीं जान सकती। कई बार ऐसा होता है जागृत अवस्था में हम बैठे हैं, पदार्थ सामने से निकल गया पर हमने नोटिस नहीं ली, उसका ज्ञान नहीं हुआ। ये तो हमारे अनुभव की बात है। तो जब मन होता है, मन क्या होता है? मन मीडिया होता है। मन को, मन भी जड़ है, मन को सत्ता और स्फूर्ति कौन देता है यहाँ से वहां तक जाने के लिए? वो चेतन है। तो मन के भीतर भी स्वयं प्रकाशित्व चेतन आ गया, इंद्रिय में भी सत्ता और स्फूर्ति रूप चेतन आ गया। आंख अब तैयार है कि दृष्टा दृश्य को देखने के लिए आंख अब तैयार है। ये दृक, ये रूप है, ये दृश्य है। और आंख के भीतर जो मन है, वो मन अब निकल के अंतकरण की वृत्ति, जो मन है वो अंतकरण की वृत्ति अब टेबल के आकार की होने लगी। तो यहाँ जब टेबल का आकार मन की वृत्ति लेती है तो मन तो ठोस नहीं है, मन भी अदृश्य है, और अदृश्य ही अदृश्य को मिल सकता है। इसके ऊपर अदृश्य आत्मा परमात्मा का वेस्टर्न जो है, वो मन अगर अदृश्य है उसे ही मिल सकता है। उसका जो जिसका स्वभाव है आत्मा का, वही स्वभाव मेरे मन का हुआ तो ही एकीकरण हो सकता है। यानी वो जो परमात्मा सूक्ष्म अदृश्य बाहर है, वही क्वालिटी मेरे भीतर है। जो यहाँ वृत्ति बन के बाहर आती है, टेबल के जो टेबल के ऊपर अंदर जो चेतन है, टेबल के अंदर अवच्छिन्न चैतन्य जो है, वो मेरे भीतर अंतकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसके साथ एक होता है। तब मिलता है ज्ञान का होता है कि ये टेबल है। स्थूल स्थूल का ज्ञान नहीं कर सकता। बाहर अगर चेतन है और भीतर चेतन है, दोनों जगह चेतन है तो ही ज्ञान हो सकता है। यानी मेरे बाहर और मेरे भीतर सबाह्य अभ्यंतर ही अजह, परमात्मा इज इन एंड थ्रू। बाहर भी है, इन एंड थ्रू, इसके कॉन्टेक्ट में भी है और अंदर भी है। सभी जगह वही परमात्मा का वेस्टर्न, वही परमात्मा की ज्ञप्ति जो है वो चल रहा है। इतना ये तीन अवस्था को जान के परमात्मा का जो ठोस ज्ञान स्वरूप है, सिर्फ चेतन स्वरूप है, वो चेतन तक हमें ये उपनिषद की तीसरी जो अवस्था है वो ले आती है। ये आनंद बुक अब कहा है कि ये चेतोमुख है। आनंद बुक तो है पर ये चेतोमुख है। चेतोमुख याने क्या? कि मुख याने किसी का द्वार ये बनता है। भाई किसका ये द्वार बनता है? तो देखिए, अंधेरे में हम बैठे हैं, ये हाथ पैर ये सब क्या है? ये सब एकीभूत घनीभूत हो गए हैं। अब ये जो अंधेरे की जो घन अवस्था है, जब प्रकाश आएगा तो क्या होगा? यही अवस्था में से ये सब नाना रूप जो है, जो विभाग है, वो फिर से उसका जन्म होगा। इसी प्रकार ये सुषुप्ति अवस्था को चेतोमुख क्यों कहा है? चेतो यानी चेतना का अनुभव जो अवस्था में होता है, जहाँ आप अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करने वाला जहाँ होता है वैसी अवस्था। तो जागृत अवस्था में मैं कहते हैं कि मैंने ये सब अनुभव किया, तो सुषुप्ति से उपनिषद में कहा है कि जागृत में भी आदमी जा सकता है और सुषुप्ति में से स्वप्न में भी जा सकता है। इसीलिए चेतो मुख कहा। चेतो यानी चेतना से जो जो भी कर्म हो सकते हैं, वो ये सुषुप्ति अवस्था उसका जाने की द्वार बनती है। इसलिए चेतो मुख कहा। चेतो मुख क्यों कहा? जन्म का द्वार क्यों कहा? क्योंकि यही ये सुषुप्ति अवस्था है, जहाँ जागृत के सब स्थूल पदार्थ एक हो गए हैं। जाने की जागृत अवस्था में वो जन्म फिर से लेते हैं, इसीलिए उसका वो मुख बनता है। सूक्ष्म जो स्वप्न अवस्था के जो सूक्ष्म भोग है, उसके भी संस्कार सुषुप्ति में घनीभूत हो जाते हैं, प्रज्ञान घन एकीभूत हो गए, जाने की स्वप्न अवस्था में फिर से दिख रहे हैं। यानी ये सुषुप्ति अवस्था ऐसी है कि स्वप्न देखना चाहता है वो अंदर का परमात्मा, तो स्वप्न अवस्था फिर से शुरू हो जाती है। कई बार
डीप स्लीप हो जाने के बाद भी आपका अनुभव है कि सुबह आप उठने से पहले स्वप्न देख लेते हैं फिर से, और फिर वही स्वप्न से आप जाग जाते हैं, या फिर एकदम गाढ़ निद्रा है और तुरंत आप एकदम ही जाग जाते हैं। तो ये चेतोमुख है, इसे प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ याने यही जानने वाला। यहाँ प्राज्ञ याने किसको जानता है ये? तो बोले सुषुप्ति के स्थूल पदार्थ के अभाव को जानने वाला, सूक्ष्म पदार्थ के अभाव को जानने वाला। स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ के सन्निकर्ष से जो भी कुछ आनंद होता है उसे वो अभाव को जानने वाला। अभाव को जानने वाला याने प्राज्ञ इसलिए कहा है। अभाव को क्यों जानता है? यहाँ वैश्वानर विश्व की बात नहीं की, यहाँ तेजस प्रकाशत्व की जरूर नहीं है, यहाँ अभाव को जानने वाला है। इसीलिए अग्नि याने वो जो अभावात्मक जो परमात्मा, ज्ञान यहाँ कैसा है सुषुप्ति में? सुषुप्ति में ज्ञान अभावात्मक है। सुबह उठ के हम बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो नहीं जानने जैसा जिसका ज्ञान है उसे प्राज्ञ कहते हैं, यानि ज्ञान के अभाव को भी जो जान रहा है। पहले भी आपको बता दिया कि ज्ञान का भाव और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ज्ञान का अभाव भी आप अगर जानते हैं, आप कहते हैं कि मैं अभाव को भी जानता हूँ, तो ज्ञान के भाव और अभाव को जानने वाले आप उससे कोई तीसरे हैं, आप उससे कोई पर है। तो ये ज्ञान के अभाव को, अभी सुषुप्ति के अभाव को आपने जाना कि नहीं? हाँ, सुषुप्ति के अभाव को आपने जान लिया कि कोई सुषुप्ति में था जो कुछ भी नहीं भोग कर रहा था, सुबह उठ के मैंने उसको जाना। तो आपके भीतर जो अभाव को जानने वाला है वो ये तुरीय है, जो खुद अभावात्मक नहीं है। फिर से मैं कहती हूँ, अभाव को अगर आप जानते हैं तो आपका स्वभाव कैसा हो गया? अभाव अभाव को नहीं जान सकता। अभाव को आपने कैसे जाना? वहां कोई होगा, किसी की तो प्रेजेंस होगी जो अभाव के स्वभाव से विपरीत होगी। सुषुप्ति में मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, फिर से कहती हूँ, सुषुप्ति में मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, ऐसा उधर जानने वाला, एब्सेंस ऑफ आनंद की नोट लेने वाला तो कोई होगा ना, उसका स्वभाव कैसा होगा? उसका स्वभाव भाव स्वरूप ही होगा, पर उसका भाव कैसा है? कोई नाम नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, निराकार है। तो ये सब किसके लक्षण हो गए भाई? कोई और परमात्मा की बात करते हैं क्या? हाँ, यही ये ब्रह्म के सब स्वरूप लक्षण हो गए। तो अब और क्या चाहिए? अगर आप जान सकते हैं कि मैं अभाव को जानने वाला हूँ, तो वही वो आपका स्वभाव है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही वो आप परमात्मा है। ये तीन अवस्थाओं में से ये जो परमात्मा तीनों अवस्था में जो झृंभण कर रहा है, वो परमात्मा को जानने की ये सब चेष्टा है। शांति से आप आंख बंद कर दीजिए। मैं शांति पाठ जब करूंगी और आंखें खोलने को बोलूंगी, तब आप आंख खोल सकते हैं और शांति से कोई भी प्रकार की बातचीत किए बिना आप अपने कार्य में लग सकते हैं। एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में, कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें शांति से बंद कर दीजिए। पहले दिन जब हमने ये प्रयोग किया था, तब सिर्फ ओमकार का जो नाद था उसके ऊपर ध्यान दिया था, बाद में ओमकार के भाव और ओमकार के नाद के बाद जो अशब्द अवस्था है उसके ऊपर हमने ध्यान दिया था, और अब मेरे जो ध्यान के विषय है वो जब उच्चारण होगा तब मेरा ध्यान होगा, वही ध्यान देने की जो भीतर ज्ञप्ति है, जो चेतना है, जो चेतना के जरिए, जो चित्त के जरिए मैंने शब्द के ऊपर ध्यान दिया, वही आपको ख्याल रखना है कि ध्यान देने की जो वृत्ति है
जो ज्ञप्ति है वो वही ज्ञप्ति और शब्द को भी जान सकती है और यही ज्ञप्ति शब्द और अशब्द को मैं जान रही हूँ ऐसा जान रही है। ये सिर्फ जो जानना हुआ, ये जो भाव हुआ, वही ये प्रज्ञान घन, यही है विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप, यही ये भाव और अभाव को जानने वाला परमात्मा। ओमकार के अवलंबन से मैं उच्चारण करूंगी, बाद आप उच्चारण करेंगे, ध्यान किसके ऊपर देना है उसकी बात आपको बताई दी गई है।

अकार उकार मकार ओंकार की जो तीन मात्राएं हैं, समष्टि वैश्वानर हिरण्यगर्भ और ईश्वर, वही व्यष्टि रूप से ये तीन अवस्थाओं के रूप है। वही रूप का और संक्षिप्तकरण करने के बाद पूरी जागृत अवस्था अ है, स्वप्नावस्था उ है, सुषुप्ति अवस्था म है, इससे जो उच्चारण बना ये ओंकार के उच्चारण के बाद जो शांत अशब्द अनुच्चारण जो अवस्था है वही चौथी तुरीय अवस्था है। ये उच्चारण के बाद आया हुआ जो शांत मन है वही तुरीय परमात्मा है, आपका जो स्वभाव है जो स्वरूप है वो यही है। यहाँ कोई विचार नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। ये शांति को जानने के लिए मुझे कोई भी करण की आवश्यकता या जरूर नहीं है, कोई इंद्रिय सन्निकर्ष यहाँ नहीं हो रहा, मन का कोई भी विचार यहाँ अपेक्षित नहीं है, मेरी बुद्धि है पर निर्णय नहीं ले रही है, अहंकार है पर अहंकार कोई भी विषय पे कर्ता भोक्ता भाव नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ कोई विषय नहीं है, फिर भी मैं हूँ, यही आपका शांत स्वरूप है जो आपके भीतर ही है।

जागृत में जो भी भोग आप कर रहे हैं, स्वप्न में जो भी भोग कर रहे हैं, मात्र ओमकार का उच्चारण किया वो सब भोग हो जाते हैं। जब भी कोई भी भोग का विचार आए, सिर्फ ओमकार का जप करके उसके बाद जो अशब्द अवस्था है उसी का सिर्फ चिंतन करेंगे, कोई भी भोग आपको आसक्त नहीं कर सकेगा। ये जो शांत अवस्था है, सिर्फ यही मेरा स्वभाव है, उसके ऊपर ज्यादा विचार भी नहीं करना है, यही स्थिति है, यही तुरीय अवस्था है, यही कुछ चौथी अवस्था है। अब तक आपने जागृत अवस्था का अनुभव खूब किया है, स्वप्न भी देखे हैं, सुषुप्ति भी है, ये जो उच्चारण के बाद की अवस्था है, यहाँ आप जाग तो रहे हैं फिर भी भोग नहीं है, आंखें बंद भी है तो भी स्वप्न नहीं है, कोई भी सन्निकर्ष सूक्ष्म और स्थूल नहीं है तो भी ये सुषुप्ति नहीं है। ये तीनों अवस्था से पर कुछ है, यही तुरीय है, यही चौथी अवस्था है। इसी में परमात्मा हमारी मति को स्थिर रखे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: यशेम देवहि तञ्यदायुः स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धीरे से अपनी आंखें खोलिए हाथ छोड़ दीजिए
1: ओम नमः शिवाय यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org ओम नमः शिवाय
2: भूतामि गर्वा प्रारम्भः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। इन दिस you are about to listen Shiva Stotram. The title is Shiva Sahasra Namavali from Saura Puranam, presented by Sri Subramanian Sharma, Chennai. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Namah Shivaya. Saura Purana Antargatam Vishnu Chakra Prapti Hetu Sri Shiva Sahasra Namavalihi.
4: भवाय नमः शिवाय नमः।

नमः सहस्रपदे नमः वरीयसे नमः वरदाय नमः वंद्याय नमः शंकराय नमः परमेश्वराय नमः गंगाधराय नमः शूलधराय नमः परार्थैकप्रयोजकाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वदेवादये नमः गिरिधन्वने नमः जटाधराय नमः चंद्रापीडाय नमः

महावीर्याय नमः, भूतचारिणे नमः, पुरंदराय नमः, निशाचराय नमः, प्रेतचारिणे नमः, महाशक्तये नमः, महाद्युतये नमः, अनुर्देश्यवपुषे नमः, श्रीमते नमः, सर्वाकर्षकराय नमः, मताय नमः, बहुश्रुताय नमः, बहुमायाय नमः, नियतात्मने नमः, अभयोद्भवाय नमः, ओजसे नमः, तेजसे नमः, द्युतिधराय नमः, नर्तकाय नमः, सर्वनायकाय नमः, नित्यघंटाप्रियाय नमः, नित्यप्रकाशात्मने नमः, प्रतापनाय नमः, रुद्धाय नमः।

कार्यकोविदाय नमः, वेद्याय नमः, वैद्याय नमः, वियद्गोप्त्रे नमः, सप्तावरमुनीश्वराय नमः, अनुत्तमाय नमः, दुराधर्षाय नमः, मधुराय नमः, प्रियदर्शनाय

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: താതാത്മ്യത്തെ നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയും അനിർവചനീയ താതാത്മ്യം എന്ന് പറയും. ബാലന് കണ്ണാടി കാണുന്ന തൻ്റെ ആ ഛായയുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം, അത് അനിർവചനീയ താതാത്മ്യം. കാരണം ഇവിടെ താൻ വേറെ, കണ്ണാടി വേറെ, പ്രതിബിംബം വേറെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നായി. കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ഒരു ഏകീഭവനം സംഭവിച്ചു താതാത്മ്യം. ഇതിനെ തന്നെ അധ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, അനുവചനീയ താതാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ബന്ധം അത് നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്ന് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും. അങ്ങനൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. കാരണം ബാലൻ തൻ്റെ വികൃതമായ മുഖത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം ശുദ്ധമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വെള്ളമെടുത്ത് മുഖം കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷെ വീണ്ടും മുഖത്ത് കഴുകു കാണുന്നു. അപ്പോൾ വിവേകിയായ ഒരാൾ വന്ന് അവന് സാവകാശം ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ബാലന് ആ പക്വത ഇല്ലെങ്കിലോ ബോധിക്കുന്നതിനുള്ള, ബോധിക്കത്തില്ല, വീണ്ടും വാശി പിടിക്കും, മുഖത്താണ് അഴുക്കുക. ആ പക്വത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ആ പക്വത സംഭവിക്കുന്നത്, ബുദ്ധിയിൽ ആ താതാത്മ്യം വിടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആർക്കാ ബന്ധനം? ബന്ധനം അവിവേകിയായ ബാലന്. പക്വമതിയായ മനുഷ്യനല്ല. ആ പക്വമതിയായ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ സൂര്യൻ, ആത്മാവ്. പക്ഷെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന ജീവൻ, ജീവനാണിതെല്ലാം. ആ ജീവന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ആ ബാലൻ. ആ ബാലന് ഏത് നിമിഷമാണോ ആ താതാത്മ്യം ഇല്ലാതാകുന്നത്. അതിങ്ങനെ ആ താതാത്മ്യം ഇല്ലാതാകും? എങ്ങനെ ബാലന്റെ ദുഃഖം മാറും? ഇവിടെ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്ന ഇതാണ്, മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണമാണോ, അത് സംഭവിക്കാമോ, അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ആ ബാലന് ആ താതാത്മ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടും. ഈ കണ്ണാടി കൊണ്ടുള്ള താതാത്മ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടൂ, വിവേകം, ജ്ഞാനം ആണ് നിഷേധിക്കുന്ന. കർമ്മണ പ്രജയ ധനേന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു അഭ്യാസത്തിലൂടെയും ആ താതാത്മ്യം നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? അനുവരുത്തരുള്ള അവിവേകം, അജ്ഞാനം, അതൊന്നും നിർവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാസ്തവമാണ്. അതിന് കാരണം അവിവേകം, ബാലന്റെ അവിവേകം. അത് തന്നെയാണ് ജീവനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിവേകം സംഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു, എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന അനിർവചനീയം. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നു. ബാലനിലതിരിക്കുന്നു അവിവേകം. ഏത് നിമിഷമാണോ വിവേകം ഉണ്ടാകുന്നത്, ചിലപ്പോൾ സ്വയം വിവേകം ഉണ്ടാകാം. സ്വയം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തും, തൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കും, പിന്നീട് കണ്ണാടി നോക്കും, പല പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം നടത്തും. ഏത് തരത്തിലായാലും ശരി വിവേകം ഉണ്ടാകും. പക്വത കൊണ്ട് വളരെ കാലം കരയും, ക്രമേണ പക്വത വരുന്നു, വിവേകം വരുന്നു, പിന്നീട് കരയുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിവേകം കൊണ്ടേ പറ്റും. അതാണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രമേ മോക്ഷം സാധ്യമാകുന്നു. വിവേകമല്ലാതെ നടപടി. വിവേകം വരുമ്പോൾ ആ നിമിഷം ആ താതാത്മ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ പ്രതിബിംബത്തോടുള്ള താതാത്മ്യം അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നിലാണ് സംഭവിച്ചത്, അതാണ് താതാത്മ്യം. ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ മാലിന്യം സംഭവിച്ചു, ഇവിടെ കണ്ണാടിയിലാണ്. വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ പ്രതിബിംബത്തിൽ പോകുന്നതല്ല, പ്രതിബിംബത്തിലാണ് സംഭവിച്ചില്ല. പ്രതിബിംബം കേവലം ഛായ ആണ്, അതിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സംഭവിച്ചത് കണ്ണാടിയിലാണ്, ഉപാധിയിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് ഇനി അതിന് ഉദാഹരണം പറയും. പക്ഷേ അതിനോട് താതാമ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായത്. അപ്പൊ ഏത് നിമിഷമാണോ ആ വിവേകം വരുന്നത്, അത് തന്നിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ ഛായയിൽ പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആ കണ്ണാടിയിലാണ്, സ്വച്ഛമായ ആദർശത്തിലാണ്. ആ നിമിഷം അയാൾ ആ താതാത്മ്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു, വിവേകമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം. അതിനാണ് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അജ്ഞാനം നശിക്കുന്നു.
1: ഓം നമഃ ശിവായ. ഡിയർ ലിസണേഴ്സ് ഓഫ് shaivam.org, ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഹിന്ദി സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സ്. ഇൻ ദിസ് യു ആർ അബൌട്ട് ടു ലിസൺ നായന്മാർ പുരാണം. ദ ടൈറ്റിൽ ഇസ് വായിലാർ നായനാർ പുരാണം, പ്രസന്റഡ് ബൈ ശ്രീ സിംഗപ്പൂർ ശങ്കര നാരായണൻ. താങ്ക് യു. ഓം നമഃ ശിവായ.
2: ഓം നമഃ ശിവായ. ഭക്തോ, അഭി ഹം ഓർ ഏക് സന്ത് യാ നായന്മാർ കി കഹാനി സുനേംഗേ, ജിൻകാ നാം വായിലാർ ഹൈ. തമിൽ പ്രദേശ് മേ ആധുനിക് മദ്രാസ് മഹാനഗർ കാ ഏക് ഭാഗ് മൈലാപൂർ ഹൈ. സമുദ്ര തട്ട് പർ സ്ഥിത് ഇസ് മൈലാപൂർ കാ ഐതിഹാസിക് മഹത്വ ഹൈ. യേ തമിഴ് കെ വിശ്വ വിഖ്യാത് ഗ്രന്ഥ തിരുക്കുറൽ കെ രചയിത തിരുവള്ളുവർ കി നഗരി ഹൈ. യഹാ ആജ് ഭി പ്രാചീൻ കപാലീശ്വർ മന്ദിർ സ്ഥിത് ഹൈ. ഇസ് നഗരി മേ ഏക് കൃഷക് പരിവാർ മേ വായിലാർ കാ ജന്മ ഹുവ. അനന്ത കൃപാലു ഭഗവാൻ ശിവ കെ യേ അനന്യ ഭക്ത ഥേ. അപ്നെ ഹൃദയ മേ ഇൻഹോനെ മന്ദിർ കി പരികൽപന കർക്കെ ഉസ്മേ ഈശ് കി പ്രതിഷ്ഠ കർ ലി. നിത്യ അപ്നെ സ്നേഹ ദ്വാരാ വഹാ ജ്യോതിർമയ ദീപ് ജലാതെ. ഹൃദയ മേ വ്യാപ്ത അപൂർവ പ്രേം കെ ആനന്ദ രൂപീ അമൃത് സെ പ്രഭു കെ സമക്ഷ ഭോഗ ലഗാതെ. പ്രഭു പ്രേം സെ സദാ മഗ്ന രഹകർ വായിലാർ അനേകാനേക് വർഷോ തക് പരം സത്യരൂപ ശിവ കെ പ്രതി നിഷ്ഠാപൂർവക് പൂർണ്ണ സമർപ്പൺ സെ ഭക്തി കർത്തെ രഹേ. ഉൻകി യഹ ഭക്തി മാനസിക പൂജാ കെ രൂപ മേ ജീവൻ ഭർ ചലതി രഹി. കവി സുന്ദരർ നെ ഇൻകെ വിഷയ മേ തിരുതോണ്ട തോ ഗൈ പദോ മേ ഇൻകാ സ്മരൺ കർത്തെ ഹുവേ കഹാ ഹൈ. മേ പ്രാചീൻ മൈലൈ കെ വായിലാർ കെ ദാസോ കാ ഭീ ദാസ് ഹൂം. മൈലൈ ജഹാ സാഗർ ദ്വാരാ ബഹാകർ ലായ ഗെ ശംഖോ കി ഉജ്ജ്വല കാന്തി സെ രാത്രി കാ അന്ധകാർ ഭീ ദൂർ ഹോ ജാതാ ഹൈ. കവി ചെക്കിലർ അപ്നെ പുരാണ മേ വർണ്ണൻ കർത്തെ ഹൈ കി ഇസ് പ്രകാർ കി നിരന്തർ സേവ അർച്ചന ഓർ പ്രേം കെ പ്രഭാവ സെ ഭക്ത വായിലാർ കോ പ്രഭു ചരണോ കി ഛായ കാ സൗഭാഗ്യ മില ഓർ ശിവലോക് മേ നിത്യാവാസ കാ അവസർ ഉനെ പ്രാപ്ത ഹുവ. വായിലാർ അപ്നെ മൻ മേ ഹി ശിവ കി പ്രതിഷ്ഠ കർക്കെ ഉൻകി പൂജാ കർത്തെ രഹേ. ഇസിലിയേ വോ ഏക് പരം ഉച്ച കോട്ടി കെ സന്ത് യാ നായന്മാർ ഹൈ. ഓം നമഃ ശിവായ.
3: ഓം നമഃ ശിവായ. യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു shaivam.org റേഡിയോസ്, 24/7 സ്പിരിച്വൽ ചാനൽസ് ഫ്രം shaivam.org. ഓം നമഃ ശിവായ.
1: ഓം നമഃ ശിവായ. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Munayaduvar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi hum aur ek Dakshin Bharatiya sant ya Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Munayaduvar hai. Chol Pradesh mein ek sthan hai Tirunidur. यहाँ की धरती शस्य शामल है और अमृत सदृश स्वाद अन्न उत्पन्न करती है. इसी स्थल के एक कृषक परिवार में मुनय अडवार का जन्म हुआ. यह इनका वास्तविक नाम नहीं, पर इनमें इसी नाम का नाम से स्मरण किया जाता है. इसका अर्थ है मोर्चे पर लड़ने वाला. उन दिनों सामंती राज्यों के बीच में प्रायः छोटे बड़े युद्ध चलते ही रहते थे. ऐसे में पराजित राजा स्वतंत्र सरदारों की सेना की मदद लेते थे. धन के लिए युद्ध करने वाले अपनी सहायता के लिए निश्चित मूल्य लेते थे. मुनय अडवार के पास वीर योद्धाओं की एक छोटी सेना थी, जिसे वे सहायता मांगने वाले सामंत राजाओं की सेवा में लगाते थे. वे स्वयं सेना का नेतृत्व करते थे और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते थे. ऐसी स्वतंत्र सेनाएं अधिक धन देने वाले सामंत की ओर से युद्ध करती थी. ये पेशेवर लड़ाकू धन के लिए अपनी वीरता का उपयोग करते थे. हमारे कथानायक भी इसी प्रकार के व्यवसाय द्वारा भारी मात्रा में धन अर्जित करते थे. इनकी सहायता का आधार देश अथवा प्रदेश के प्रति निष्ठा न होकर केवल धन होता था. इनकी विशेषता यह थी कि इस प्रकार से अर्जित संपूर्ण धन संपदा का प्रयोग मुनि अड़वार साधुजनों और शिव भक्तों की सेवा में लगाते थे। त्रिनेत्रधारी प्रभु नीलकंठ शिव के भक्त को दान दक्षिणा देना, उन्हें पवित्र भोजन खिलाना, फल फूल दूध दही मिष्ठान आदि द्वारा उनकी सेवा करने में अपनी सारी अर्जित राशि नियमित रूप से व्यय करते थे। इसीलिए इनको शिव भक्तों में एक उत्कृष्ट स्थान मिला है। इसीलिए वे एक उत्तम कोटि के नायनमार या संत माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी वीरता का प्रयोग करके धन राशि कमाया और उस धन का प्रयोग शिव भक्तों और शिव के मंदिरों में को ठीक करने में लगाया। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
4: उस छोटा सा सूर्य ने धरती और अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ तम अंधकार को एक सेकंड में हटा दिया और सूर्य स्वयं सबके आंखों के सामने प्रकट भी हो गया। अंधकार भी हटाया और स्वयं प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर भी हो गया। और इधर तुम उस अंतकरण में रह रहे हो और उसी अंतकरण में अविद्या भी रह रही है। और अंतकरण में रहने वाली अविद्या कितनी बड़ी है, अंतकरण खुद अंगुष्ठ परिमाण का है, तो उस अंतकरण में रहने वाला जो अविद्या कितना बड़ा है। वेद्य किम न भवस्य हो घनतरम कीदृक भवे तप मत्तमा। मेरे अंतकरण में रहने वाला अंधकार क्या तुम्हारे रोशनी से भी प्रकाश से भी हट न सकने वाली है। कीदृक भवे मत्तमा, मैं क्या मानू, मेरे अंतकरण के जो अंधकार है वह तुम्हारे रोशनी से भी नहीं हट सकता, ऐसा मानू, तब तो फिर किसी भी रोशनी से नहीं हट सकता। फिर वो रह कैसे गया, जहां तुम हो वहीं वो अंधकार रह कैसे गया। मैं ये मान रहा हूं कि हे शिवा, तुमने वो अंधकार हटे ये संकल्प नहीं किया है, इसलिए रह गया। मेरा भक्त मेरा दर्शन करे इस प्रकार के मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं हुई है, ये अज्ञान रही रहे मेरे साथ ही अंतकरण में रहे, तो अज्ञान के प्रति तुमने करुणा कर दी और मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों, बोलो। मैं प्रार्थना करता हूं महाराज साक्षात प्रसन्नो भव। अब ज्यादा हो गया, उस अंधकार को तो हटा नहीं है और आप ही हटा पाओगे, मैं नहीं हटा पाऊंगा। इस तरह वहां प्रार्थना की गई थी, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, वो अंधकार तुम्हारे लिए कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकती है। अंधकार भले ही रहे वहां, लेकिन तुम एक ऐसा अंजन तैयार करो जिसको आंख में लगाओ, लगाते ही अंधकार में ही वस्तु दिखाई पड़ेगी, अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह रसायन की विशेषता है। बोलो, अंधकार यदि हटा नहीं सकते हो, अज्ञान को तुम हटा नहीं सकते हो, तो क्या करो, ऐसा अंजन बनाओ आंख के, वो आंख में लगा लो, अंधकार भले ही रहे लेकिन उस अंधकार में भी वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यहां शिव दर्शन के लिए अंजन, कौन सी अंजन का प्रयोग करना है, ये शंकराचार्य जी बता रहे हैं, ध्यान अंजन। नित्य निरंतर ध्यान अंजन से अविद्या के रहते हुए ही शिव दर्शन हो जाएगा। ध्यानञ्जनेन समवेक्ष तम प्रदेशम। तम प्रदेश माने हृदय, जैसे जमीन के अंदर गाड़े हुए धन है उसी तरह तुम्हारे हृदय में शिवरत्न है। कौन सा रत्न? शिवरूपी परमात्मा रूपी आत्मा रूपी रत्न है, और न देखने के कारण तुमको, उसके ज्ञान न होने के भान न होने के कारण तुम्हें तमाम दुख दरिद्र से जूझना पड़ रहा है। ध्यानञ्जनेन समवेक्ष तम प्रदेशम भित्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्री। अंजन लगाने से जमीन के अंदर गड़े हुए धन तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन अपने आप वो धन बाहर नहीं आएगा। दिखाई तो पड़ेगा कि यहां पर धन है, जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग कहीं बोरिंग करना होता है खेत में, किसान लोग वह यंत्र लाते हैं ना, क्या जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल सिस्टम के माध्यम से वो यंत्र लाते हैं और वो जमीन में वो यंत्र को रखते हैं। उससे ये पता चलता है कि जमीन के अंदर कितनी गहराई में पानी है और कितनी मात्रा में पानी है, ये पता चल जाता है। और उसके आधार पर वहां कुआं खोदना होता है या डीप बोरिंग करना होता है। किसान बोरिंग करते हैं या फिर कुआं खोद लेते हैं, लेकिन वो यंत्र पानी है ये तो बताएगा, इनार तो कुआं तो नहीं खोदेगा ना, ट्यूबवेल तो लगाएगा नहीं। वो पता लगने के बाद ट्यूबवेल तो तुमको लगानी पड़ेगी, दूसरे यंत्र से प्रयोग करके तब उसको कुआं खोदा जाए या फिर ट्यूबवेल लगाया जाए। इसी तरह ध्यान रूपी अंजन का प्रयोग करने पर तम प्रदेश अंतकरण में अविद्या से ढके हुए शिव तत्व यहां है ये तो तुम्हें पता चलेगा, लेकिन उसका साक्षात्कार करने के लिए तुम्हें साधन का प्रयोग करके उत्खनन करना पड़ेगा। जैसे धरती में धन है पता चलने के बाद धरती का उत्खनन करना पड़ेगा कि नहीं, तो उत्खनन करने का यंत्र क्या है? नाम मंत्री, शिवस्मरण नाम मंत्री। सतत शिव का स्मरण, परमात्मा का स्मरण या फिर नाम जप। कौन सा नाम? महर्षि पतंजलि ने दो प्रकार से समाधि लाभ हो सकता है ये बताया। समाधि लाभ के लिए एक प्रक्रिया बता दी, योग चित्तवृत्ति निरोध। पांच प्रकार के चित्तवृत्ति हैं, उन पांचों प्रकार के चित्तवृत्ति को निरोध करना पड़ेगा, तब चित्तवृत्ति सर्वथा निरुद्ध हो जाएगा, तब तुम्हें समाधि उपलब्धि हो जाएगी। और कदाचित यदि अष्टांग योग साधना न करके चित्तवृत्ति निरोध नहीं कर सके तो उसके विकल्प के रूप में महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधानात वा ये कर दिया, ये दूसरा सूत्र का निर्माण कर दिया। वा माने विकल्प, चित्तवृत्ति निरोध करो तो समाधि का आनंद का अनुभव होगा, और चित्तवृत्ति निरोध नहीं कर सके तो इसका विकल्प है ईश्वर प्रणिधान, और तुम ईश्वर प्रणिधान करोगे तो ईश्वर कृपा से तुम्हें वो समाधि चित्तवृत्ति निरोध के बिना भी समाधि की अनुभूति होगी। ईश्वर प्रणिधान अथवा ईश्वर प्रणिधान क्या उपाय क्या है महाराज? तो महर्षि ने पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान के लिए प्रक्रिया बता दी, तज्जप तदर्थ भावना। उसके नाम का सतत जप करो और नामी का स्मरण करो। देखो, नाम का जप करो, नामी का स्मरण करो, तज्जप तदर्थ भावना। तो जप के लिए किस नाम का प्रयोग करें महाराज? तो वह महर्षि पतंजलि ने कह दिया, प्रणव का जप करो, ओमकार का जप करो, एकाक्षर ही प्रणव, क्योंकि प्रणव को मांडुक्य उपनिषद में परमात्मा का अति प्रिय नाम के रूप में प्रस्तुत किया। ओमकार को मांडुक्य उपनिषद में परमात्मा का अति प्रिय नाम है, निर्दिष्टतमम प्रियतमम, सबसे नजदीक का नाम। जो सबसे प्रिय होता है वही ना नजदीक का होता है, है ना? कभी कभी घर में व्यवहार में नाम रखा जाता है, मां बाप या घर के कुटुंबी और बंधुजन कुछ नाम रख देते हैं। नामकरण के दिन में तो जो राशि से नाम जुड़ा, राशि से जो मिल गया, उसी अक्षर के आधार पर नामकरण कर देते हैं। लेकिन बहुत प्यार से पुकारने वाला नाम घर में ज्यादा प्रयोग होता है। मां भी बहुत प्यार करती है तो कुछ और नाम से पुकारने लग जाती है। कोई व्यक्ति जरा मोटा हो तो घर में ए मोटे बोल देते हैं, घर का बाप भी बोलता है कि ए मोटे इधर आओ, मां भी बोलती है कि ए मोटे इधर आओ। मां जो प्यार से बोलती है मोटे, लेकिन वो उसको प्रिय नहीं है। बड़े होने के बाद यार दोस्तों के बीच में मां फिर कह दे मोटे, उसको अच्छा लगेगा? तो कोई पूछेगा कि अरे भाई तुझे मोटे क्यों कहा किसी ने? बोले मेरी मां बड़े प्यार से कहती थी, बचपन में वही आदत पड़ी है इसलिए वही बोल रही है। समझाना पड़ेगा कि नहीं? तो निर्दिष्टतम अति प्रिय नाम है। प्रणव का जप करो, तज्जप तदर्थ भावना। परमात्मा का यानी शिव का सबसे प्रिय नाम ओम है। यही वह कुद्दाली है, वही ये फावड़ा है जो तुम परमात्मा के आवरण उसको हटाकर निरावृत कर सकते हो। तो वेदांत में और भक्ति में ये अंतर है। वेदांत में उस आवरण को हटाने की क्षमता सिर्फ अखंडाकार वृत्ति में है। अखंडाकार वृत्ति के बिना उस आवरण को तुम नहीं हटा सकते हो। तो भक्ति में सतत प्रणव जप, शिव नाम मंत्र ही, उसी में इतनी क्षमता है कि वह उस आवरण को हटा सकता है। दिव्याश्रितम भुजगभूषण मुद्वहंती, कल इसकी थोड़ी व्याख्या तो की थी हमने। एक सामान्य शास्त्र में या सामान्य लोक भाषा में ये प्रचलन है, जहां दिव्य रत्न रहते हैं वहां सर्प का निवास होता है, यही कहा जाता है। इसलिए कोई धन के प्रति आसक्त हुआ हुआ कोई धनिक व्यक्ति सेठ बोले कि वो धन के प्रति आसक्ति दिखाता है तो लोग कह देते मरने के बाद सर्प बनेगा ये, ऐसा कह दिया जाता है व्यवहार में, है ना? पैसे के लिए जो मरी मेट करता है वो तो व्यवहार में कह देते ये इतना मरता है पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, ये जरूर मरने के बाद सर्प बनेगा ये, क्योंकि संपदा और सर्प की राशि एक ही है भाई, और ये मान्यता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण उद्वहंती, भुजग भूषण, ये भुजक का माने सर्प का, भूषण क्या है? मणि। तो हम जीवात्मा, तमाम जीवात्मा रूपी सर्प का भूषण क्या है? मणि। मणि क्या है? तो शिव। शिव ही जीव का भूषण है। जैसे मणि सर्प का भूषण है, वैसे ही शिव परमात्मा जीव का भूषण है। क्या है वो? ये पादार पद्मन मिहते शिवते कृतार्था। जब वो रत्न प्राप्त होता है, तब शिव रत्न प्राप्त होता है, तब जीव कृतार्थ हो जाता है। इस बात को अन्य अलंकार के माध्यम से, अनुप्रास अलंकार के माध्यम से, शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार के माध्यम से शंकराचार्य जी ये दूसरा वसंत तिलका छंद के में एक श्लोक की रचना करते हैं। यहां दूसरा भाव है। भूदारताम उदवहत यदपेक्षया श्रीर भूदार एव किमत सुमते लवस्व केदार मा कलित मुक्ति महौषधीनां पादार विंद भजनम परमेश्वरस्य। अनुप्रास शब्दालंकार अनुप्रास। भूदार भूदार केदार पादार, यही तो छंद के जो है अनुप्रास है। भूदार पादार केदार, ये देख लो ऐसा शब्द प्रयोग होता है तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, शब्दालंकार अनुप्रास बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? भूदारताम उदवहत यद अपेक्षया श्री भूदार। श्री भूदार किसके लिए कहा? श्री भूदार विष्णु के लिए। भगवान विष्णु के लिए कह रहे हैं। भगवान विष्णु कैसे हैं? श्री और भू दारा वाले हैं। दारा माने पत्नी। संस्कृत में पत्नी को क्या बोलते हैं? दारा। तो श्री दारा भू दारा दो पत्नी वाले हैं भगवान विष्णु। तो आप विष्णु क्यों नहीं हो पाए? एक पत्नी हो गए ना, इसीलिए आप एक पत्नी हो गए, खाली श्री धारा हो गए आप, है ना? संपत्ति तो है, भूधारा नहीं है। या फिर भूधारा हो गए, फ्लैट तो जैसे तैसे मां बाप ने बना के रख दिया था, पैसा नहीं कमा पाए। हां सूचक भाई भूदारा तो पिता से मिल गया होगा आपको, है ना? फ्लैट पिताजी का खरीदा हुआ है कि अपना खरीदा है? अपना है तो आप भूदारा है ना? भूदारा तो हो गए, श्रीदारा नहीं हुए। संपत्ति है, पैसों छे मने आप हो तो भूदारा श्रीदारा, तो वही कहा गया श्री भूदारा। क्या किया उन्होंने श्री भूदारा ने? है श्री लक्ष्मी और भू पृथ्वी दो धारा वाले भगवान विष्णु ने क्या किया? भूदारताम उदवहत, भू का उद्धार किया। भूदार माने पृथ्वी, भू दार माने बराहा, भूदार माने बराहा सुअर। सुअर का काम क्या है? भू उदार, पृथ्वी का उदार करते हुए चलता है, उधेड़ता है वो, उधेड़ना। हिंदी में उधेड़ना बोलते हैं ना, पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है ना वो, सूंड से पृथ्वी को चीरता हुआ चलता है। उसको भू उधेड़ना बोलते हैं हिंदी में, उधारा बोलते हैं संस्कृत में, भू उधार ताम यानी बराहा रूप धारण किया। किसने? श्री भूधार ने भूदारता का रूप धारण किया। किसके लिए महाराज ऐसे शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? यद अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से भगवान विष्णु ने बराहा का रूप धारण किया। क्यों धारण किया, करना पड़ा बराहा का रूप? तो दो प्रसंगों में भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण करना पड़ा, दो जगह ये प्रसंग आता है। एक तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पाताल में ले गया, तो सारे सृष्टि का विस्तार करने का जो आधार है धरती, वो धरती ही नहीं है, तो सृष्टि का विस्तार कहां करें? तो भू आधार के बिना सृष्टि कहां से करेंगे ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज तुम सृष्टि का विस्तार करो तो कहते हो, लेकिन सृष्टि का विस्तार करूं कहां, पृथ्वी तो है ही नहीं, इसलिए मैं कमल के पत्ते में रह रहा हूं। पृथ्वी होती तो पृथ्वी में रहता, पृथ्वी तो है ही नहीं है, इसलिए मैं कमल के पत्ते में रह रहा हूं। देख लो, बोले पृथ्वी कहां गई? बोले हिरण्य का हिरण्याक्ष ले गया, पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया पाताल में। तो जब तक तुम उस पृथ्वी को पाताल से लाकर यहां प्रतिष्ठापित नहीं करोगे, तब तक मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता महाराज। तो अच्छा भाई, पृथ्वी को मैं ला देता हूं। तो ब्रह्म का रूप धारण किया और गए पाताल में, और हिरण्याक्ष से लड़ाई करके उसको मार के पृथ्वी को लाकर स्थापित की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम आरंभ किया, मानस सृष्टि, तब सनत कुमारों को सबसे पहले उत्पन्न किया, नारद जी को उत्पन्न किया, सनत कुमारों को उत्पन्न किया। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज हमारा नाम और काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम हमेशा कभी भी बूढ़े न होने के कारण तुम्हारा नाम कुमार है, मेरी आशीर्वाद, मैं कृपा, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम कभी बूढ़े न होगे, इसलिए तुम कुमार रहोगे। काम क्या करना है हमने? बोले भगवान की आज्ञा है सृष्टि का विस्तार करो, तो तुम लोग सृष्टि विस्तार में लग जाओ। सनत कुमारों ने कहा कि नहीं बाबा, हम ये प्रपंच में पढ़ने वाले नहीं।
5: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
4: ये भागवत का प्रसंग है, हम ये प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे। तो वो चल पड़े लंगोटी लगाकर, तो ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा, मेरा बेटा, मेरे बच्चे और मेरी बात नहीं मानते हो। तो उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी को जो गुस्सा आया, उससे फिर यहां से एक पानी का बूंद निकला, पसीना निकला, और जमीन में पड़ते ही बच्चे का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगा। और कहने लगा ब्रह्मा जी से, मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ, मुझे क्यों पैदा किया है काम बताओ, मेरा नाम क्या है नाम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तू पैदा होते ही रोने लग गया, इसलिए तेरा नाम रुद्र, जा काम क्या करें। बोले सृष्टि का विस्तार करो, भगवान की आज्ञा है सृष्टि करना है, तुम मदद करो सृष्टि विस्तार करो। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बस रुद्र सृष्टि शुरू कर दिए तो सब है? रुदति रोदयति इति रुद्र है, खुद भी रोए दूसरों को भी रुलावे रुद्र। तो जहां गुस्से से पैदा हुआ है वो सृष्टि कैसे होगी, है ना? पूरे रुद्र सृष्टि मारो काटो लूटो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा, ऐसी सृष्टि करने के लिए तुझे नहीं कहा था, ये क्या सृष्टि कर दी, बंद करो ये। तब नारद जी ने रुद्र को, माने ब्रह्मा जी ने रुद्र को बुलाया, हे बेटा इधर आ। बोले हम पिताजी, ये कैसी सृष्टि कर दी तुमने। बोले हम जैसा जानते थे वैसे कर दी, बंद करो ऐसी सृष्टि, परमात्मा को मंजूर नहीं है, फिर हम क्या करें। तो बच्चा राख लपेट के हिमालय में। बोले जो आज्ञा। तो रुद्र चले गए हिमालय। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि दो दो बार सृष्टि की, सनत कुमार भाग गए, रुद्र भी गया तपस्या करने, अब मैं कैसी सृष्टि का विस्तार करूं, ये चिंता में लग गए ब्रह्मा जी, तो शरीर फट गया। भागवत सुनी है ना तुमने, शरीर फट गया। तो बाएं भाग से सतरूपा, दाहिने भाग से मनु, फिर वहां से मनु और सतरूपा के माध्यम से यह युग्म सृष्टि का आरंभ हुआ। तो तब से जो पैदा हुए सब मनुष्य हो गए, है ना? तो ये प्रसंग वहां भूधारता की, विष्णु ने वराह रूप धारण क्यों की, सृष्टि विस्तार करने के लिए आधार चाहिए था, उसको लाने के लिए वराह का रूप धारण करना पड़ा। दूसरे बार फिर विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, कब, जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों के आपस में विवाद हो गया, इसी उपराण का प्रसंग, पहले सुनाया विष्णु भागवत का प्रसंग, अब शिव पुराण का प्रसंग, किस बात को लेकर कि अहम ज्येष्ठ अहम श्रेष्ठ, मैं तेरे से बड़ा हूं तू मेरे से छोटा है, तो छोटा होने के कारण पहले मुझे अभिवादन करना पड़ेगा, तू कर। अब विष्णु कहते हैं कि तू छोटा है मुझे अभिवादन कर, ब्रह्मा कहते हैं कि तू छोटा है पहले मेरा अभिवादन कर, कौन छोटा और कौन बड़ा निर्णय कैसे करें, इस विवाद को समाधान कैसे करें, कौन करेगा। दो व्यक्ति यदि परस्पर विवाद करे किसी मुद्दे को लेकर, तो तीसरा निरपेक्ष व्यक्ति ही उसका समाधान कर सकता है। शिवपुराण में कथा आती है, पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिमनि स्तोत्र में इसका संकेत भी कर दिया। तो उसी दोनों के विवाद के बीच में एक अनालय स्कंद बपुषा, अग्निमय स्तंभ वहां खड़ा हो गया दोनों के बीच में, अनालय स्कंद बपुषा, और ब्रह्मा और विष्णु के देखते देखते ही ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र विष्णु का सुदर्शन चक्र, दोनों ही उस अग्नि स्तंभ में गायब हो गए, लुप्त हो गए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया, क्या है, हम दोनों के विवाद के बीच में ये कहां से आ गया, क्या चीज है, और हमारा अस्त्र गायब हो गया। पहले तो इसको पता लगाए कि है क्या चीज, और अपना हथियार वापस ले ले, तब फिर विवाद करेंगे, लड़ के जीतना होगा तो भी जीतेंगे। तो ठीक है, सहमति हुई। यदुपरि विरिंची हरि राधा, तो वह जो अग्नल स्कंद पप्पू ज्योतिर्मय लिंग, वह कहां से शुरू हुआ, कहां समाप्त हुआ, इसका पता कौन लगाए? बोले ऊपर की तरफ हम जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे हम जाएंगे ऊपर, कहां समाप्त हुआ है, अंतिम छोर का पता लगा के आएंगे हम। तुम नीचे जाओ, कहां से शुरू हुआ है? विष्णु कहा कि हां, ये तो नीचे जाने का काम हमने पहले भी किया है, है? हम चले जाएंगे। तो फिर वहां भी उस शिवलिंग का, ज्योतिर्मय लिंग का आदि को पता लगाने के लिए श्री भूदार ने, किसने, श्री भूदारा वाले ने, केवल लक्ष्मीपति नहीं भूपति, हाँ दो पत्नी है ना, इसीलिए भूपति लक्ष्मीपति, इसीलिए दोनों को जोड़ दिया शंकराचार्य ने, श्री भूदार, श्रीदारा और भूदारा वाले श्री भूदारा, विष्णु ने बराह का रूप धारण करके क्या क्या, भूदारताम बराह का रूप धारण करके उद्वहन थी, नीचे चले गए पता लगाने के लिए। लेकिन बहुत नीचे जाते जाते पाताल तक तो गए, लेकिन वहां भी उसका अंत या आदि कुछ भी पता नहीं चल रहा है, उसके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो वहीं से विष्णु तो वापस आ गए, यह अनिर्वचनीय है, आ गए। ब्रह्मा ऊपर के चले गए ब्रह्मलोक पर्यंत, लेकिन उसका तो कोई अंत ही नहीं, और आगे गया है, अत्यतिष्ठ दशांगुलम मा है, वो तो और आगे गया है। अब आगे कहां जाएं हम, लौट के जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा होने का जो ख्वाब था ब्रह्मा को, उसने झूठ का आश्रय लिया। सुप्राण सुनी है आप लोगों ने कई बार, जाके उसको कह देता हूं मैंने पता लगाया, और कह देने से मैं बड़ा होता हूं तो हर्जा क्या है, लगाया कि नहीं लगाया, यहां और तो कोई है ही नहीं साक्षी। लेकिन तुमने लगाया कि नहीं लगाया पूछ लिया, साक्षी कौन है, तो कोई साक्षी भी लेके जाना चाहिए। गलत आदमी गलती करने से पहले बचने की बड़ी फॉर्मूले तैयार करता है, पहले सोच लेता है वो, यदि पकड़ा गया तो मैं क्या कहूं, क्या करूं, कैसे करूं, है ना, करता है कि नहीं बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने किया कि नहीं बोलो, महाभारत युद्ध में, युद्ध भूमि में है, युद्ध भूमि में जब कर्ण के पास जाना था तो साड़ी पहन के गए कि नहीं बोलो, कुंती को साथ में लिया और कुंती के साथ ही सहेली बनकर साड़ी पहनकर गए हैं, कहीं पता ना चले। कृष्ण स्वयं कर्ण कहां गए ये बात और को और लोगों को पता ना चले, रात के समय में कुंती तो महिला है, स्त्री है, साड़ी पहनी है, और कृष्ण ने भी साड़ी पहन ली, क्योंकि गलत काम करना था ना, इसलिए वो छुपने की पहले सोच लिया, ऐसा करके जाऊं तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। बोले कि चप्पल की आवाज आ रही है भाई, कोई जग जाएगा तो क्या करें महाराज? बोले लाओ चप्पल, हम ले लेते हैं बगल में। अपने आप तो होशियार थे कृष्ण, इसलिए खाली पांव गए, कुंती चप्पल लाकर गई, पहन कर गई थी, और चप्पल के आवाज आने लगा, तो बोले लाओ वो चप्पल हम ले लेते। तो कुंती ने चप्पल खोली, कृष्ण ने चप्पल को बगल में दबा लिया, साड़ी पहने हुए।

कि तू इसका बेटा है कि नहीं। अर्जुन युधिष्ठिर जैसे इसके बेटे हैं, कुंती हैं, तू भी कुंती है। कुंती ने कहा कि हां बेटा, तू मेरा ही बेटा है, इसीलिए तू अपने भाइयों को मत मारो, युद्ध बंद करो। कर्ण ने कह दिया ठीक है मां, शास्त्रों में लोक में सर्वत्र यही प्रसिद्ध हुआ है, प्रसिद्धि हुई है कि तुम पांच बेटे की मां हो, कुंती के पांच पुत्र हैं। तो मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं, अर्जुन के बायक और किसी को मारूंगा नहीं। मेरे द्वारा अर्जुन मर गया तो भी पांच पुत्र के पांच ही रहेंगे, तुम पांच पुत्र की मां रहोगी, और अर्जुन द्वारा मैं मर गया तो भी तुम पांच पुत्रों की मां रहोगी। इतने ही वचन तुम्हें दे सकता हूं मैं कि मैं अर्जुन के अलावा और किसी को मारूंगा नहीं, और तुम ना आती तो मैं और को भी मार देता है, मैं युधिष्ठिर को भी मार देता, नहदेव, नकुल, सहदेव, भीष्म, भीम, सबको मार देता, मार भी सकता। लेकिन अब यह बात पक्की है कि चार पुत्र बचेंगे, तो या मैं मरूंगा इस महाभारत में या अर्जुन मरेगा। तो इतनी फायदा हुआ कि नहीं कृष्ण के कपट से, बोलो। तो बदमाशी करने वाला पहले ही प्लान बना लेता है। बोधारतम, ब्रह्मा जी ने बदमाशी करनी थी इसलिए प्लान बना ली। तो एक नंदी को, कामधेनु गाय को ले लिया, चल कहां जाना है महाराज। तो कामधेनु गाय तो स्वर्ग में थी, रस्ते में आते ब्रह्मलोक से आते समय स्वर्ग में घुस के कामधेनु गाय को लेके आए, चल नीचे पाताल में, नहीं भूतल में, क्यों महाराज। बोले ब्रह्म विष्णु वहां बैठा हुआ है, उसके सामने मेरे पक्ष में तूने बयान देनी है। क्या बयान महाराज। बोले ब्रह्मा ने ये ज्योतिर्लिंग का पता लगाया, ये मैंने देखा है, ये साक्षी करना है। नहीं महाराज, विष्णु के सामने, शिव के सामने मैं झूठ कैसे बोल सकता। झूठ नहीं बोलेगी, मेरे लिए तू इतना भी नहीं करेगी तो मैं अभी श्राप देकर मार डालूंगा। तो बिचारी कामधेनु गाय डरने लगी। तो मरना है इसके श्राप से, मरने की अपेक्षा तो जाती हूं विष्णु के आगे, शिव के आगे कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो नीचे आए, ब्रह्मा ने कहा, विष्णु से पूछा, पता लगाया। विष्णु ने तो कहा कि नहीं महाराज। बोले आपने पता लगाया। बोले हां और क्या। अच्छा भाई साक्षी कौन है। बोले ये। विष्णु ने गाय से पूछा, कामधेनु से, सचमुच ये बुढ़े ने पता लगाया है ऊपर। तो ब्रह्मा के तरफ मुंह करके हां कहा, कह दिया, और विष्णु के तरफ पूछ करके नहीं हाथ हिला दी। नहीं, बड़ी चालाक थी वो, पूछ करके कह दिया नहीं है। कई चिन्ह हैं, कई लक्षण देकर निषेध कर दिया, पूछ हिलाया नहीं, गोबर कर दिया नहीं, डर के मारे पेशाब कर दिया नहीं है, दूध दिया नहीं। तो सत्य का आश्रय जिन जिन ने लिया वही अमृत हो गए। तो पंचामृत के लिए क्या क्या चाहिए बोलो। दूध दही और पंचगव्य के लिए क्या चाहिए शुद्धिकरण में, और गोबर भी चाहिए। पंचगव्य, दूध दही घी, नहीं नहीं पंचगव्य में मद नहीं पड़ता है, तुम लोगों को पता ही नहीं है। पंचामृत में मद पड़ता है, पंचगव्य में मद नहीं पड़ता है, क्योंकि मद गव्य नहीं है ना।

गव्य का अर्थ क्या होता है? गाय का विकार को गव्य बोलते हैं। मद कहीं गाय से पैदा करती है? दूध, दही, घी, ये गव्य है। और गोमूत्र और गोबर, ये पांच चीज मिलाते हैं तब पंचगव्य होता है। अब तुम लोग बंबई वासियों को क्या पता पंचगव्य क्या है? हैं? सूतक और पातक की शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य के बिना सूतक दोष और पातक दोष की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल तो क्या करते हैं, तुलसी पानी छिड़क दो जहां भी शुद्धि हो गई, गंगा जल छिड़क दो, नहीं होता। शास्त्र प्रमाण है, पंचगव्य सेवन करना पड़ता है। हाँ, तब जाकर पातक दोष, पातक माने कोई मरा हुआ हो परिवार में, उसकी जो कर्म करने उसको पातक बोलते हैं। कर्म विधि पूरा करके फिर शुद्धिकरण करने का दिन आता है तो पंचगव्य सेवन करके शुद्धि होती है। कोई पैदा हुआ परिवार में, बहू का बेटा हुआ तो, या अपनी पत्नी का बेटा हुआ, अपने बेटा हुआ या बहू का बेटा हुआ, तो वो होगा सूतक। तो अमुक दिन वो दोष लगता है, अमुक दिन, दस दिन का विधान है हमारे सनातन धर्म में, दस दिन तक सूतक रहता है और तेरह दिन तक पातक दोष रहता है। तेरहवीं दिन में पंचगव्य सेवन करके पातक दोष से निवृत्ति, दसवें दिन में पंचगव्य सेवन करके सूतक दोष की निवृत्ति होती है। क्योंकि ये पांचों चीज गाय के पृष्ठभाग से सत्य के आश्रय के प्रतीक में गाय के शरीर से निकले थे, इसलिए सनातन धर्म ने उनको शुद्धिकरण पवित्रता के रूप में ग्रहण किया। लेकिन मुख से जो झूठ बोला था, इसलिए गाय का गोबर शुद्ध हो सकता है, गाय का जूठा शुद्ध नहीं होता। भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाया था, प्रसाद बनाया था, गाय ने खा ली, तो वो अब भगवान को भोग नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? वो जूठा हो गया अपवित्र, क्योंकि उसका मुख असत्य का भाषण किया था। तो पूंछ ने भी सत्य का आश्रय लिया, ये ब्रह्मा ने झूठ बोला, तो वैतरणी उसी के आश्रय से तुम लोग तैरते हो। वैतरणी में क्या समझ, क्या पकड़ते हैं? गाय के पूंछ, सिंह क्यों नहीं पूंछ पकड़ते हो? वो अशुद्ध है, मुख का भाग अशुद्ध है, कान नहीं पकड़ा जाएगा, सिंह नहीं पकड़ा जाएगा। भूधारतामुदहमपेक्ष श्रीर भूधार एव किमत सुलभे सुमते लभस्व केदारमा कलित मुक्ति महौषधीनाम पादारविंद भजनम परमेश्वरस्य सुमते। ये संबोधन है, मन को समझा रहे हैं, बुद्धि को समझा रहे हैं। हे सुमति, हे बुद्धि, सद्बुद्धि, तुम मुक्ति महौषधीनाम, मुक्ति रूपी महान औषधि की खेती करनी है, औषधि तैयार करना है तुमने। कौन सी औषधि बोलो? शुगर हटाने के लिए कि जन्म मृत्यु हटाने के लिए? मधुमेह हटाने के लिए कि जन्म मृत्यु हटाने के लिए? जांबू फल खाओगे जन्म मृत्यु हटेगा कि मधुमेह हटेगा? अरे भाई, एक जन्म का मधुमेह हटे तो दूसरा जन्म होगा तो फिर मधुमेह आ जाएगा, तो जन्म मृत्यु ही हटाओ ना भाई। ऐसा कोई औषधि है तुम्हारे पास? नहीं है महाराज। तो फिर खेती करो। महाराज मेरे पास खेत तो है ही नहीं, खेती कहां करें? केदारम, केदार माने खेत, केदारम आकलित, केदार का आश्रय लो, जिस खेत में मुक्त
प्रति महौषधि का निर्माण उत्पादन किया जा सके। कौन सी औषधि है वो? पादारविंद भजनम केदारम, भगवान शिव का जो चरण है उसका ग्रहण करो, वही खेत हो जाएगा। भगवान शिव के चरण रूपी खेत में मुक्ति रूपी महौषधि की खेती करो। परमेश्वरस्य पादारविंद भजनम केदारम, है? उसी में ही मोक्ष रूपी परम औषधि की खेती हो सकती है, अन्यत्र नहीं। जैसे कहा जाता है ना, असली केसर की खेती कश्मीर में ही हो सकती है ना? सेफ्रॉन, केसर, वो कश्मीर में जो केसर हो सकता है और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है, वो क्वालिटी, उस जमीन की खासियत है। तुम्हें खुद केसर खरीदना हो तो खरीद लो, खुद केसर की खेती करनी हो तो कश्मीर की भूमि चाहिए कि नहीं? इसी तरह भोग विलास यलोक परलोक जो कुछ भी प्राप्त करनी हो तो अन्य पुरुषार्थ से तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मोक्ष रूपी महा औषधि तैयार करनी हो तो परमेश्वरस्य पादारविंद भजनम केदारम, परमात्मा के चरण का आश्रय लिए बिना मोक्ष रूपी महा औषधि तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। हे सुमते संबोधन, इसलिए उसी का आश्रय लो और मोक्ष औषधि प्राप्त करो तो जन्म मृत्यु से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा भाई। और क्या कहेंगे, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।

0: शिवा तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ भगवान आशुतोष चंद्र मौली चंद्रचूड़ चंद्रनाथ सदाशिव के शेष शब्द पर विचार कर रहे थे। पंचाक्षर में ये मध्य का अक्षर है, नमः दो अक्षर आगे, वायः दो अक्षर पीछे, बीच का अक्षर है मध्य का शिव। ये अक्षर कैसे हैं, कितने सुंदर हैं। कथा आती है याज्ञवल्क्य ऋषि के गुरु थे वैश्वापायन जी। वैश्वापायन जी को एक बार ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या का मतलब ये नहीं समझना कि किसी ब्राह्मण को मार दिया। ब्रह्म हत्या का दोष उन्हें लगा उनके एक बार ब्रह्म सभा थी ब्रह्मवर्त पर। इस ब्रह्म सभा का निमंत्रण अर्थात ये ब्रह्म सभा क्या है, बोले सत्संग है। सत्संग का निमंत्रण जहाँ ब्रह्म वेताओं की ज्ञानियों की एक सभा थी सत्संग था, उस सभा का निमंत्रण आने का वैश्वापायन जी को भी मिला, परंतु वो उस सभा में नहीं जा सके। उसका कारण ये था कि उस दिन उनके घर में उनके पिता का श्राद्ध था, जिस कारण वो इस निमंत्रण में नहीं जा सके। न जाने के कारण उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, पाप लग गया। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कहीं सत्संग से आपको निमंत्रण मिले तो आपको उसमें जरूर जाना चाहिए। यद्यपि मैं तो ये कहती हूँ कि सत्संग के लिए निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। यदि जहां कहीं भी सत्संग हो वहां अवश्य जाना चाहिए। न जाने क्योंकि जीवन को बदलने की ताकत केवल सत्संग में है। सर्व अशांत आसक्ति को छुड़ाने के लिए आसक्ति को छुड़ाने वाला केवल सत्संग है। और जब तक संसार की आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक हमारा जीवन भयमुक्त नहीं हो सकता। और जो भयभीत जीवन है वही अशांत है, दुख रूप है। और भयमुक्त जीवन, जिस जीवन में कोई भय न रह जाए, निर्भयता जीवन में आती है तो केवल सत्संग से आती है। सत्संग जीवन में बहुत परम आवश्यक है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए। वैश्वापायन जी सत्संग में नहीं जा सके, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो गुरुदेव के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगते हुए देखकर उनके बहुत सारे शिष्य थे, उन शिष्यों ने मन में विचार किया कि गुरुदेव की इस हत्या का हम लोग मिलकर प्रायश्चित्य करेंगे। सारे शिष्य मिलकर प्रायश्चित करने लगे तो बात तो ऐसी हो गई कि छोटी छोटी उन सारे शिष्यों को प्रायश्चित्य करते हुए देखकर याज्ञवल्क्य के मन में ऐसा विचार आया, वो सोचने लगे कि देखो ये सब जो प्रायश्चित कर रहे हैं ये तो ऐसा ही लगता है जैसे सब चीटियां मिलकर के बकरे को घसीट रही हूँ, खींच रही हूँ। तो क्या इन चीटियों से बकरा कभी खींचने वाला है, वो खींच सकता है? अर्थात गुरुदेव के छोटे मोटे शिष्य प्रायश्चित्य कर रहे हैं, क्या इन सबों के करने से गुरुदेव का प्रायश्चित्य हो जाएगा इस कर्म का? मन में ये शंका हुई। गुरुदेव को लगा कि देखो इसको दिया हुआ दी हुई जो इसे जो ये घमंड है कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ और ये याज्ञवल्क्य को जो घमंड हो गया है ये मेरी विद्या के कारण। विद्या साददाति विनम्रता, विद्या में विनम्रता आनी चाहिए। विद्या प्राप्त हो करके विद्या का घमंड अभिमान नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने सोचा कि ये विद्या का इसे अभिमान हो गया है। गुरुदेव ने उसे उनसे याज्ञवल्क्य से कहा कि तुम्हें ये अभिमान हो गया मेरी दी विद्या का, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे द्वारा दी हुई सारी विद्या को उगल दो। आदेश दिया, बमन करो। जब बमन कर किया उन्होंने तो एक एक अक्षर अर्थात मोती की तरह चमकने लगा। ये अक्षर कितने सुंदर है, इस पर मुझे बात स्मरण हुई कि एक एक अक्षर मोती के समान प्रकाश से युक्त चमकने लगे। इन मोती के समान चमकते हुए इन अक्षरों को देखकर उसी समय समस्त उन अक्षरों को चुन लिया, मतलब तीतर बन करके वो एक एक अक्षर को देवता लोग अन्य उनके जो शिष्य थे तीतर के रूप में उन अक्षरों को चुनकर मोती के समान ग्रहण कर लिया। तो उससे एक शाखा निकली, तैतरी शाखा, वेद की तैतरी शाखा। और फिर याज्ञवल्क्य ने दोबारा से सूर्य की उपासना की और सूर्य की उपासना के द्वारा उनको जो वेद प्राप्त हुए उन वेदों का नाम है नारा शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें से वाजपेयी शाखा आदि है, वाजपेयी शाखा उससे प्रकट हुई। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि एक एक अक्षर इतना सुंदर है, इतना चमकदार है, मोती की तरह चमक रहा कहने का अर्थ है प्रकाश से युक्त है। ये जो पांचों अक्षर हैं नमः और शिवाय, ये पांचों के पांचों शब्द इतने सुंदर हैं कि मोती के समान चमकने वाले हैं, प्रकाश पुंज हैं। इन अक्षरों का बड़ा भारी महत्व है। शिवाय ये शी जो शब्द है मध्य का शब्द है, अर्थात शी शब्द से शिव है। शिव का एक अर्थ होता है योग, शिव का एक अर्थ होता है योग, इसको कहते हैं शिव योग। शिव पुराण में तप योग, क्रिया योग और जप शिव योग ये कहकर के बताया गया है, अर्थात जप योग। शिव का अर्थ जप योग भी है, जप करना यह भी योग है, शिव योग इसको कहते हैं। भगवान के नाम का निरंतर जप करना इसका नाम शिव योग है। भगवान की सेवा करना ये क्रिया योग है। और शिव का अर्थ भद्र होता है, कल्याण होता है। शिव का अर्थ शिव जो संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण जगत में प्रविष्ट होकर के जो जगत में ऐसे व्याप्त है जैसे स्वर्ण में सोने का सोने के टुकड़े से लेकर के हमने कुंडल बनाए, सोने को लेकर के कंगन बनाया, कंगन का आकार दिया और कंगनाकार में स्वर्ण विद्यमान है, कुंडलाकार में स्वर्ण विद्यमान है। अर्थात सोने में जब ये आकार घटित हुआ तो तब सोना उसके आकार में आके कब बस गया ये किसी को नहीं मालूम। अर्थात मालूम नहीं कहने का अभिप्राय ये है कि सोना तो है ही है, वो पूर्ववत है। उसी प्रकार जो सकल सृष्टि के आकार को ग्रहण करने के से पूर्व भी जो था, आकार ग्रहण करने पर भी जो है और आकार ग्रहण नष्ट होने पर भी जो का त्यों रहेगा, ऐसा जो सनातन व्यापक तत्व है वही शिव है। इसलिए शिव का अर्थ भद्र है, शिव का अर्थ योग है, शिव का अर्थ मंगल है, शिव का अर्थ कल्याण है, शिव का अर्थ शुभ है। एक सी के बहुत सारे अर्थ है नारायण, इसलिए कहा शिवाय गौरी वंदना। और शिव के संग में रहने वाली कौन है, बोले गौरी है। शिव कैसे हैं, शिव गौर हैं, इसीलिए तो आप कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान शिव गौर है, अत्यंत प्रकाश युक्त है, प्रकाशमय है। शिव का अर्थ स्वप्रकाश भी होता है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उनके साथ रहने वाली जो आद्या शक्ति है गौरी, जिनका नाम है, ये गौरी भगवती काली जिनको गौरी भी कहते हैं, ये महाकाल के संग में जब रहती हैं तब ये महाकाली कहलाती है। महाकाल जो सकल सृष्टि के संहार कारक देव हैं, जिनका नाम है महाकाल। काल जो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, जिसकी प्रतीक्षा संपूर्ण जगत को है। काल चक्र जिसे हम कहते हैं, काल गति हमें जिसे कहते हैं, काल जिसे हम मृत्यु कहते हैं, अर्थात काल जो सकल सृष्टि को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, उसे हम काल कहते हैं। और उस काल की गति के ऊपर जो नियंत्रण करे, उस शक्ति का नाम है काली। अर्थात महाकाल के संग में रहने वाली देवी जिनका नाम महाकाली है, वही महाकाली जब भगवान शिव के संग में रहती हैं, तो उनका रूप कैसा हो जाता है, बोले अत्यंत गौर। काली बनकर के वो सृष्टि का संहार करती है। इस पर ये काली शक्ति कैसी शक्ति है, संहार कारिणी शक्ति कैसी है, कहा कि इसका प्रत्यक्ष दर्शन किसने किया। महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध को में पांडवों की जीत हुई, पांडव विजयी हुए। धनुर्धर अर्जुन के मन में ये विचार आया कि देखो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध मैंने जीता है, वो अपने आप को इस युद्ध का विजेता मानने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि ये जो युद्ध जीता, ये धर्म के प्रभाव से ये युद्ध को हमने जीता। और नकुल और सहदेव समझे कि ये युद्ध हमने जीता। वायुपुत्र भीम सोचे कि ये यज्ञ, ये महाभारत का युद्ध हमने जीता। पांडव ये सोचने लगे कि ये युद्ध के हम विजेता हैं, हमने इस युद्ध को जीता। वास्तव में ये युद्ध लड़ा कौन और जीता कौन, पर पांडव समझ रहे हैं कि ये युद्ध हम लड़े हैं और हमने इसकी जीत प्राप्त की है। भगवान से, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये वास्तव में युद्ध जीतने का इन पांडवों को अभिमान हो गया है। और भगवान भला इस बात को कहाँ सहन कर सके कि उनके भक्तों को अभिमान हो। अभिमानोपहारी, अभिमान का हनन करना, अभिमान का मर्दन करना, और अभिमान को ऐसे अपने भक्त के अहम को छुड़ाना, ये भगवान उसे स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान देख चाहते हैं कि मेरा भक्त निराभिमानी हो, उसमें किसी प्रकार का कोई अहम न रह जाए। ये अहम का दोष दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। अर्जुन ने जब ये कहा कि प्रभु मैंने ये सारा युद्ध लड़ा, कहने लगे अर्जुन ये युद्ध किसने लड़ा, ये सही सही तो कौन जान सकता है। बोले जिसने ये युद्ध देखा हो, ये युद्ध जिसने देखा हो, किसने देखा, बोले वरवरिक ने देखा कि ऊपर रखकर सिर से उन्होंने इस युद्ध को, आकाश से दूर पर्वत पर स्थित होकर उन्होंने ये युद्ध देखा, वही तुम्हें बता सकते। उनसे पूछा, उनके समीप जाकर के ये युद्ध तुमने देखा? बोले हाँ मैंने देखा। तो अर्जुन ने सोचा कि ये युद्ध मेरी प्रशंसा करेंगे कि अर्जुन तुम बड़े ही गांडीव धनुर्धारी थे और तुमने ये युद्ध बड़े पराक्रम के साथ लड़ा, वीरता की मेरी प्रशंसा होगी। परंतु जब उनके पास जाकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल युद्ध में एक ही देखा, एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा? कि कोई देवी एक ऐसी है जिसके केस खुले हुए हैं, हाथ में खड्ग है और दूसरे हाथ में खप्पर है, और वह रणचंडी रण के बीच में नृत्य करती सी, नाचती हुई सी मुझे दिखाई दी, और नृत्य करते करते उसी माँ देवी ने सबको युद्ध में समाप्त किया। मैंने देखा तो सिर्फ एक काली को देखा और किसी दूसरे को नहीं देखा। तो ये जो नृत्य करने वाली कौन है? बोले महाकाल की शक्ति। वो काली बन करके जब काल के संग में रहती हैं तो वो काली बन जाती हैं महाकाल के संग में, और वही शक्ति जब पांडवों के संग में रहती हैं तो तब वो द्रौपदी बन करके, क्योंकि द्रौपदी की उत्पत्ति किससे हुई है? बोली यज्ञ से। यज्ञ से प्रकट होने वाली ये देवी यज्ञ से पवित्र है, अर्थात जो स्वयं अग्नि रूपा है, अग्निपुत्री है, अग्नि की शक्ति है, जिनके अंदर दाहकता है, ऐसी दिव्य शक्ति माँ द्रौपदी है। तो इसलिए कहा द्रौपदी ही काली बन करके नृत्य करती हुई ये युद्ध लड़ती हुई मुझे साक्षात रूप से दिखाई पड़ी। तो काल के संग में रहने वाली देवी का नाम है काली, और भगवान शिव के संग में रहने वाली देवी का नाम है गौरी। गौरी अत्यंत गौर वर्ण की। बोले ये गौरी कैसे हो गई? ये गौर हो गई शिव योग करते करते। शिव पुराण में कथा आती है कि भगवती उमा जब तपश्चर्या करने के लिए गई तो एक दिन तप करते करते उनका शरीर इतना गौर वर्ण का हो गया, तब का तेज उनके शरीर में ऐसा व्याप्त हो गया कि उनका नाम ही गौरी पड़ गया। तब के कारण जो अत्यंत तेजोमयी है अर्थात गौर वर्ण की हो गई, इसलिए उनका नाम गौरी हो गया, तब के कारण पड़ा। और ये तप किसके लिए किया? भगवान शिव के लिए किया। तो इसलिए कहते हैं तप योग जप योग, और जप योग भगवान शिव का नाम है। भगवान शिव तप से जप योग की प्राप्ति की जाती है। तप योग का नाम गौरी है और जप योग का नाम शिव है। शिव निरंतर जप करते हैं, भगवान शिव निरंतर जप करते हैं। बोले किसका जप करते हैं? भगवान उस महाशिव शक्ति का स्मरण करते हैं जो शक्ति उनकी दक्ष के यज्ञ में सती हो गई, अर्थात परम वियोगी शिव निरंतर उस शक्ति का ध्यान कर रहे हैं, और इधर निरंतर भगवान शिव के साथ शिव के संयोग को प्राप्त करने वाली, शिव की प्राप्ति करने के लिए निरंतर उमा तप कर रही है, वो तप योग है। इस प्रकार वो शिव को प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये दोनों कथा शिव पुराण में आती है नारायण, इसलिए ये गौरी है। और सूर्य लोक पर्यंत तक, सूर्य लोक तक जिसका दिव्य प्रकाश है, दक्ष के यज्ञ को जो विध्वंस करने वाले हैं, दक्ष अर्थात कर्म के अभिमान का विध्वंस करने वाले, ऐसे भगवान नीलकंठ जिनके जो वृषभ पर आरूढ़ है, भगवान शंकर का वाहन है वृषभ माने बैल। ये बैल कोई साधारण बैल नहीं है, ये वृषभ तो धर्मा अवतार है, धर्म का प्रतीक है। वृषभ को धर्म कहा गया है, ये धर्म सूचक धर्म का चिन्ह है। भगवान शिव किस पर बैठते हैं? बोले वृषभ पर बैठते हैं। ये वृषभ साक्षात धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ धर्म है। धर्म के साथ जो प्राप्त होते हैं, धर्म के चार पाद हैं, नारायण चतुष्ट पाद कहे गए हैं। धर्म के सत्य, दया, शौच और दान, ये धर्म के चार पाद कहे गए हैं, ये वृषभ के चार पांव हैं। बोले इस कलिकाल में, इस कलयुग में जो धर्म चतुष्पाद था, अर्थात पहला पाद सत्य, दया, शौच, ये तीन चीजें, ये तीन पाद धर्म के कम हो गए, केवल एक पाद, एक पांव रह गया है, उसका नाम है दान। जब तक ये तीन पाद और जो इसके साथ में है, धर्म क्या है? पहला कहा गया है सत्य, सत्य एक पाद है। सत्य कहाँ होना चाहिए? सत्य हमारी जिह्वा पर होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, सच बोलने के लिए कभी बुद्धि लगानी पड़ती है क्या? कुछ सोचना पड़ता है क्या? सत्य तो स्वाभाविक होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। किसके लिए? झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलने के लिए तोलना पड़ता है, झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है, झूठ बोलने के लिए विचार करना पड़ता है, पर सत्य बोलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इतना सहज है, सच बोलना बहुत सहज है, परंतु हम लोग सोचते हैं कि सच बोलने से, इतना सहज होने पर भी सच नहीं बोलते हैं, उसका कारण क्या है? हम सोचते हैं यदि हम यहाँ सच बोलेंगे तो शायद बात बिगड़ जाएगी, झूठ बोलेंगे तो बात बन जाएगी। झूठ पर हमारा विश्वास है, झूठ बोलेंगे तो हमारा सम्मान, शायद झूठ बोलने से मेरा सम्मान बच जाए, झूठ बोलने से मेरा आदर बना रहेगा। ऐसा जो हमारा झूठ के प्रति विश्वास हो गया है, झूठ बोलने से मेरा सम्मान बनेगा, झूठ बोलने से मेरी बात बन जाएगी, झूठ बोलने से मुझे प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार का हमारा विश्वास किस पर हो गया है? झूठ पर हो गया। और कभी कभी आपने देखा कि झूठ बोल करके आप बच निकल आते हैं, तो कहते हैं देखा मैंने झूठ बोला तो मेरी बात बन गई, मैं बच निकला, मेरी ये बात बिगड़ती भी बन गई। तो आपने कभी ये विचार किया कि वास्तव में ये झूठ बोलने से बात बनी या झूठ पर विश्वास करने से बात बनी? झूठ पर विश्वास कर लिया हमने तो बात तो बनी है विश्वास से। जैसा विश्वास, जैसा निश्चय आपका झूठ के प्रति हो गया है, यदि ऐसा विश्वास, ऐसा निश्चय आपका सत्य के प्रति हो जाए, सत्य के प्रति ऐसा विश्वास हो जाए, तो निश्चित सत्य से आपकी रक्षा होगी। और बहुत से लोग कहते हैं अरे सत्य तो बड़ा ही कड़वा होता है, भला उसे कौन सुनना चाहता है? प्राय आजकल लोग बोल देते हैं सत्य बड़ा कड़वा है, पर याद रखना सत्य कड़वा नहीं है। सत्य के साथ दो चीजें जुड़ी हुई, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो शिव भी है और सुंदर भी है। सत्य कभी कड़वा नहीं हो सकता।
1: ओम नमः शिवाय। Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Pratyek Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashyakruto Vande Bhagavanto Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murtibheda Vibhagine Vyomavadvyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namah Sadashivasamarambam Shankaracharyamadhyamam Asmadacharya Padhyantam Vande Guru Paramparam. Mere piche Saraswati Namastubhyam Varade.

सिद्धिर्भवतु मे सदा। विश्व में दर्पण में दृश्यमान नगरी दर्पण से अभिन्न है, न तो दर्पण का विकार है न तो दर्पण में प्रविष्ट है। देयर इज ओनली प्लेन सरफेस, फिर भी ये सब दिख रहा है। इसी प्रकार से निजांतर्गतम हमारे आत्मा में, चैतन्य आत्मा में ये विश्व प्रपंच प्रतीत होता है, भासित होता है, दिखता है, न तो ये आत्म चैतन्य का विकार है न ये आत्म चैतन्य में प्रविष्ट है, वो जब प्रतीत मात्र हो रहा है। दर्पण और दृश्य का संबंध क्या है? जो नगरी दिख रही है वो दर्पण में नहीं होने पर भी दिख रही है, इसलिए क्या है? मिथ्या है। इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व प्रपंच आत्मा में स्फुरित होने पर भी आत्मा में प्रविष्ट नहीं है, सिर्फ आत्मा द्वारा प्रकाशित हो रही है, इसलिए ये क्या है? मिथ्या है। दूसरा लक्षण बताया कारण अनन्यत्वम। ये प्रपंच चैतन्य आत्मा से अपृथक है, अभिन्न है, इसलिए भी मिथ्या है। घड़ा इसलिए मिथ्या है कि अपने कारण मृत्तिका से सदा अभिन्न है। घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा नहीं है। कुंडल सुवर्ण है, सुवर्ण कुंडल नहीं है। तरंग पानी है, जहां जहां पानी का तरंग होगा वहां पानी होगा, पर जहां जहां पानी होगा वहां तरंग नहीं होती है। तो कार्य जो होता है वो अपने कारण से अभिन्न होता है और कारण के बिना स्वतंत्र सत्ता उसकी होती नहीं है। घट अस्थि मृत्तिका अस्थि, घटो भाति मृत्तिका भाति, घटो नास्ति मृत्तिका अस्थि, घटो न भाति मृत्तिका भाति। इसलिए एक स्वतंत्र है, दूसरा परतंत्र है, एक अधिष्ठान है, दूसरा उस पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित अधिष्ठान के बिना कभी भी प्रतीत नहीं होता है। मैंने आपको एक वाक्य कहा था याद रखने के लिए, विकल्पनाए निरधिष्ठान नहीं होती। कुंडल कंकण कुंडल मुगुट इत्यादि जितनी भी विकल्पनाएं है वो सुवर्ण के बिना कभी भी अस्तित्व लाभ नहीं कर सकती। अगर रज्जु नहीं है तो सर्प की प्रतीति कभी नहीं हो सकती है, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती है। और ये जो जागृत में दिखने वाला जगत है वो आत्मा की अविद्या के कारण, आप आत्मा में प्रतीत होने पर भी, आत्मा से अभिन्न होने पर भी, मिथ्या होने पर भी, आत्मा में ही दिखने पर भी ऐसा लगता है आत्मा से पृथक बाहर है। ये भी अविद्या का ही दोष है। यथा निद्रया, स्वप्न में जो स्वप्न जगत प्रतीत होता है वो स्वप्न दृष्टा को बाह्य जगत में जैसे कोई जगत दिख रहा हो ऐसा लगता है, अपने से बाहर दिखता है, होता है मन में ही, फिर भी मन से बाहर दिखता है,
ऐसे ये जागृत जगत भी आत्मा में ही है और आत्मा से जैसे भिन्न है और पृथक है इस प्रकार से दिखता है, होता नहीं है। यहां तक हम पहुंच गए। ऐसा जो अद्वय आत्मा है मिथ्या वत्ता सत्य करेंगे तो दो नहीं होता है, मिथ्या प्लस सत्य इज ऑलवेज वन। घट एंड मृतिका दो नहीं है, घट ही मृतिका है। अभी यहां तक तो हम पहुंच गए कि आत्मा अद्वय है और अद्वय आत्मा ईश्वर से अभिन्न है। लॉजिक देखिए, अगर हमारे आत्मा से ईश्वर की सत्ता पृथक होगी तो वो असत हो जाएगा। हमारे आत्मा से ईश्वर की चैतन्यता अलग होगी तो वो जड़ हो जाएगा। चैतन्य एक ही है, रिमेंबर दिस सेंटेंस, द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन दिस थ्री वर्ल्ड इज ओनली यू अवेयरनेस। ये तीनों जगत में चैतन्य का मूल स्रोत एक ही है, वो कौन है? आप है। आपके पीछे कोई चैतन्य नहीं है, सामने कोई चैतन्य नहीं है, स्वर्ग में कोई दूसरा चैतन्य नहीं है। ईश्वर चैतन्य भी आत्म चैतन्य से अभिन्न नहीं है। अगर वो पृथक हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा, दूर हो जाएगा तो कल्पित हो जाएगा, सामने हो जाएगा तो परिच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिबोद्भूतं नयता निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये। जागने के समय जब अपने स्वरूप में हम जागते हैं तब बोध होता है कि प्रतिबिंबित जगत हमसे अभिन्न है, मैं ही अद्वितीय ब्रह्म। प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदम्। वो जो अपना आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है वही गुरु मूर्ति है। एक ही जगह है शास्त्र में जहां ईश्वर को गुरु मूर्ति के रूप में प्रकट किया है। ईश्वर संहार करता भी है, सृष्टि करता भी है, पालन करता भी है, यहां तो उपदेश करता मात्र है। जिज्ञासु को महावाक्य के द्वारा कृतार्थ करते हैं और महावाक्य उपदेश करता एव सद्गुरु। गुरु का लक्षण यह है जो महावाक्य का उपदेश करे जब तक आपकी समझ में ना जाए तब तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवगति पर्यंतम तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदम्। मेरा ये नमस्कार है। वो कौन है गुरु मूर्ति? दक्षिणा मूर्तये। ये सचमुच में अमूर्ति है फिर भी हमारे सामने कृपा करके मूर्त रूप में प्रकट हुए। हाथ में वेद है, माला है, ये चिन्ह मुद्रा है और मस्तिष्क पर गंगा है, सूर्य चंद्रमा है। ऐसे जो दक्षिणा मूर्ति है, दक्षिण दिशा अभिमुख जो मूर्ति है उनको हम प्रणाम करते हैं। हो गया। अब संगति है दूसरे श्लोक के साथ। आपने कहा कि विश्व प्रपंच मिथ्या है, आत्मा से अभिन्न है, आत्मा अद्वितीय है। हमको इस पे आपत्ति है। क्यों? आत्मा अद्वितीय और जगत उसके सामने, ये जगत किसने बनाया? जगत है तब उसका प्रतिबिंबन होता है। जगत है तब तो आपको मिथ्या कहने के लिए कहना पड़ेगा। मिथ्या भी है कि नहीं है? मिथ्या भी है। और ये मिथ्या जगत कहां से आया? इसलिए ये मिथ्या जगत
और सत्य आत्मा इस प्रकार के दो चित पुरवार हो जाती है। और दूसरा प्रश्न होता है, ये मिथ्या जगत का कर्ता कौन है? अगर आत्मा के सिवाय और कोई कर्ता है तो कितने दुनिया में हो जाएगा? द्वैत की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए हमारा प्रश्न है, ये मिथ्या जगत, ये दृश्यमान नगरी कहां से आई? तो शंकराचार्य हमारा संगति देते हैं, ये दृश्यमान नगरी जिसमें दो तो दीपक लगे हैं नगरी में, सूर्य चंद्रमा रूप दो दीपक लगे हैं, दो बड़े रास्ते हैं उत्तरायण दक्षिणायन गति रूपी, और उसमें सब प्रकार की प्रजा है। सात तो उसमें चौदह मंडल बने हैं, भूहु भुवः सुवः मह जनः तपः सत्यम अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, सबको मालूम है, सब वहां से रिटर्न लगते हैं। तो ये सब है, फोर्ट सेवन अप सेवन डाउन, ये सब उसकी नगरियां है, दादर माटुंगा ऐसे करके सब नगरियां है। और कौन रहते हैं उसमें? नाग गंधर्व पिशाच मनुष्य नरक योनि सब प्रकार के इतने जंतु है जिसकी गणना नहीं करते, ये सब बड़े आनंद से नगरी में रहते हैं। और ऊपर नीचे जाते आते रहे, फ्लाइट जाती रहती है सबकी, और पैदा होते मरते जायस्व म्रियस्व, वेरी बिजी जगत, ये जगत दिख रहा है और आप कहते हैं इसको मिथ्या। भले मिथ्या को, मिथ्या का एक अर्थ होता है जो अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर आधार रखे। पति सत्य है कि मिथ्या है? देवियां बोली, देवता कोई नहीं बोला। अच्छा, पत्नी मिथ्या है कि सत्य है? क्यों? पति नहीं होगा तो पत्नी का। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछा जाए, पहले बाप पैदा होता है कि पहले बेटा पैदा होता है? आप लोग बड़े होशियार हो गए वेदांत सुन सुन के। दोनों का जन्म एक साथ होता है। जब बेटा होता है तब आपको क्या विरुद्ध मिलता है? हाँ, ओ मेरे बाप, ये बाप हो गया। जब बेटी पैदा हुई तो आप मां बनी, जब तक बेटी नहीं तो आप मां। मां किसकी? तो मानी जनरेशन गैप नहीं है, कोई एज डिफरेंस नहीं है। बाप और बेटा एक ही समय युगपत होते हैं, और बाप निर्भर बेटे पे करता है, बेट निर्भर किसके पता है? बाप करता है। मानी दोनों क्या है? मिथ्या है। पत्नी किसके डिपेंड करती है, किस पे आश्रित है? पति पे। पति, आप लोग को अगर थोड़ा भी संस्कृत मालूम होता तो पति के जो रूप चलते संस्कृत में बहुत आश्चर्य। पति ही पति पतयः, पत्युहु पत्योहो ऐसे हो जाता है, वो शादी के बाद पागल हो जाता है, ऐसे उसका रूप भी बदल जाता है। मैंने किसी को पूछा, आप सुखी हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादीशुदा हूं। मैं पूछा, आर यू हैप्पी दे आई मैरिड? आइए, तो जो दूसरे पे निर्भर है अपने आप नहीं है, इसलिए बाप बेटा पति पत्नी ननंद बोजाई सब क्या है? मिथ्या मानी अपने आप में नहीं, सचमुच में आप ही सच्चे हैं। जो ये सब रोल लेते हैं वही सत्य है। अब प्रश्न ये आया कि भले आश्रित है पर है तो सही, और उसका निर्माता कौन है? जो भी निर्माता है वो भी दूसरा हो गया, और निर्माण की हुई चीज है भले मिथ्या है पर है, ऐसा कहने के लिए कोई आगे आएगा? तो यहां शंकराचार्य महाराज ने दो दृष्टांत लिए हैं। मायावी वृजुंभयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया। अब देखिए,
भगवान शंकराचार्य महाराज के जमाने में ऐसे ऐसे जादूगर मैजिशियन होते थे, आज कोई ऐसा नहीं है। आज तो सब हैंड ट्रिक करने वाले हैं, हाथ की चालाकी करने वाले हैं। उनको गाउन निकाल देने दो, बाद में कुछ नहीं होगा, मैजिक हेर फेर करते हैं चीज के। ऐसा मैजिक था उस जमाने में जिसका जिक्र गौड़पादाचार्य ने भी कहा है, उनके पहले भी यह था। इसको कहते रोप ट्रिक। रोप ट्रिक माने एक रस्सी लाके राजा के सामने जादूगर बैठ जाता था। आप लोग जादूगर कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? जादूगर, ठीक है, बैठ जाता था। और जादू क्या था? वो कहता था राजा, जादूगर कहता था, मैं मेरी पत्नी को आपके पास छोड़ के जाता हूं, आप उसकी रक्षा करना, अगर इसको कुछ हो गया तो आपको मुझे आपका आधा राज्य देना पड़ेगा। राजा के हम लोग सब तैयार है, एक स्त्री की रक्षा करने में क्या है, आप करिए जादू, मैं इसकी रक्षा करूंगा। जादूगर रस्सी को फेंकता था, रस्सी सीधी खड़ी हो जाती थी और जादूगर उसके ऊपर तलवार लेके चढ़ता था। और थोड़ी देर में जोर जोर से आवाज आने लगे, जादूगर का पांव कटके गिरा, हाथ कटके गिरा, सर किरके गया, बाकी का शरीर कटके नीचे गिरा, लोह से खूनपद, ऊपर बड़ी लड़ाई हुई, वो आके मर गया। अब जो जादूगर की पत्नी थी हाय हाय करके रोने लगी कि मेरे पति तो मर गए, मैं तो सती हो जाऊंगी। उसने उसी समय लकड़ी मंगवाई और सती अपने पते का शव रख के वो जल के भस्मीभूत हो गई। उसी समय जादूगर ऊपर से नीचे आया, लाओ मेरी पत्नी कहां है, वो तो जल के भस्मीभूत हो गई, चाहिए तो विभूति दे सकते हैं आपको, पत्नी की विभूति दे सकते हैं, भस्म दे सकते हैं, वो तो जल गई। मैंने क्या कहा था, अगर आप रक्षा नहीं कर पाए तो आधा राज्य मुझे। अब राजा

0: आना चाहता था दिल्ली, ट्रेन बड़ौदा स्टेशन पर खड़ी थी, पर रेडियो में आया ये दिल्ली स्टेशन है, वो तत्काल उतर गया बेचारा। तो आई डोंट नो व्हाई जोक्स अबाउट सरदार जी अर्ली मॉर्निंग एंड ये।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Paramashathaya Pratasmaranayo Ananta Shri Vihushita Prempuri Adhyatma Mandal ke Adishthata महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज तथा परमश्रद्धेय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए भगवान की अनवरत साधना करने वाले भगवान के परम कृपा पात्र आत्मस्वरूप सभी साधक जन श्रोताजन बालक नचिकेता आचार्य यम को अपने दूसरे वर को मांग रहे हैं। आप लोगों ने सविस्तर इसका श्रवण किया है। तीन रात्रियां बिना खाए पिए इंद्रिय संयम में नचिकेता ने यमलोक में गुजारी और उसके बदले में आचार्य यम ने तीन वरों को मांगने के लिए कहा। पहला वर उन्होंने मांगा पिता के लिए, मेरे पिता का मन शांत हो जाए, सुमनस हो जाए। तथास्तु कहकर आचार्य यम ने वह वर दे दिया। अब दूसरे वर के रूप में वे समाज के लिए कुछ मांग रहे हैं। समाज के प्रति व्यक्ति का उत्तरदायित्व कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो भी चीजें हैं ना, ये समाज से आई हुई हैं। हम बहुत कुछ अपने परिवार से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, प्राप्त करते हैं और परिवार के आसपास जो हमारा समाज है, जहां हम रहते हैं, वहां से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। बहुत सारी चीजें और हम समाज के अंदर हैं, इसलिए हम सुखी हैं। यदि हम समाज के अंदर न हो, आपको एकांत में, अरण्य में, वन में छोड़ दिया जाए जहां कोई आदमी न हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप जिएंगे? क्या आपका वहां मन लगेगा? जीव जंतु जानवरों के बीच में छोड़ दे आपको, भले ही वे आपको काटने वाले न हो, बड़े शांति के जानवर हो, फिर भी आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका समाज वो नहीं है। तो आपका जो मनुष्य समाज है उसके बीच में आप रहते हैं, विकास करते हैं, बहुत सारी चीजें लेने देने की होती हैं। समाज का कर्तव्य हमारे ऊपर है, इसलिए समाज की रक्षा, उसका संवर्धन, उसी में हमारा संवर्धन है। यदि समाज गरीब होगा तो हम भी गरीब होंगे। ये समृद्धि न बढ़ती है, समृद्धि गांव की समृद्धि शहर में आती है, मालूम है आपको? नहीं मालूम। गांव में जब समृद्धि होती है तो शहर में कैसे आती है? भाई गांव में समृद्ध लोग होंगे तो शहर में खरीद करने के लिए आएंगे। आपकी दुकानदारी कैसे चलेगी? जब ग्राहक अच्छे हो तब ना। आप कस्टमर पैदा करो पहले, इसका मतलब गांव का विकास करो। आप गांव का विकास करेंगे तो खरीदार लोग मिलेंगे और खरीदार होंगे तो आपका शहर का विकास होगा, आपकी संपत्ति बढ़ेगी। जब मैं आदिवासी एरिया में यात्रा करने के लिए गया 40 दिन पद यात्रा, तो मैंने देखा कि लोग बोलते थे महाराज ये बहुत बड़ा शहर है यहां का। लेकिन जब मैं उस शहर में जाता था, जिला है या तहसील है, तो लगता था कि ये भी गांव ही है। उसका कारण क्या था कि वहां गरीब लोग निवास करते हैं आदिवासी। अब वो बेचारे खरीदने के लिए भी आएंगे तो क्या खरीदेंगे, वहां ज्यादा से ज्यादा एक धोती खरीद ले, माताएं आएंगी तो कोई साड़ी खरीद ले, और ज्यादातर वहां स्वर्ण के अलंकार नहीं चांदी के अलंकार चलते हैं क्योंकि वो गरीब लोग हैं चांदी पहन लेते हैं। तो समाज यदि आपका समृद्ध है, गांव समृद्ध है तो आपका शहर समृद्ध है, आपका शहर समृद्ध है तो आपका महानगर समृद्ध है। तो आपकी जो समृद्धि है वो बढ़ती है, आपके पास समृद्धि है तो वो गरीबों तक भी पहुंचती है, आप गरीब आदमी को नौकरी देते हैं। यदि आप समृद्ध नहीं है तो नौकर कहां से रखोगे। गांव में मान लो एक आदमी धनी है, उसके पास बहुत कुछ है, तो उसके आसपास बहुत सारे लोग जीते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसलिए समृद्धि कभी एक आदमी के पास नहीं रहती, जहां भी समृद्धि आती है वो बढ़ती है। जब गांव में समृद्धि आती है तो वो फैलती है शहर तक, और शहर में समृद्धि आती है तो फैलती है गांव तक। हम सामाजिक प्राणी हैं, अकेले नहीं रह सकते हैं, हमको जीने के लिए समाज चाहिए। केवल भौतिक पदार्थों का वितरण नहीं होता है, केवल समृद्धि का ही वितरण नहीं होता है, अपितु हम अपने जीवन को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो समाज से प्राप्त करते हैं, और वो चीजें प्रेम। आपको अकेले में क्या मिलेगा, आपको सहानुभूति अकेले से थोड़ी मिलती है, आपके आसपास लोग हैं, आप समाज के बीच में हैं, तो आपको प्रेम मिलेगा, आपको अपनत्व मिलेगा। इसलिए समाज की जो अवधारणा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। और आप बिल्कुल इसको दिमाग में रखेंगे, राष्ट्र की रक्षा में समाज की रक्षा है, समाज की रक्षा में परिवार की रक्षा है, परिवार की रक्षा में हमारी रक्षा है। व्यक्ति का संरक्षण परिवार से है, इसलिए व्यक्ति को अपने परिवार को मजबूत बना लेना चाहिए। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो आप अपने सुखों का बलिदान भी करना हो तो कर लीजिए, लेकिन आप अपने परिवार को मजबूत बना लीजिए। अर्जुन ने बड़ी गहरी बात बोली पहले अध्याय में, उन्होंने कहा कि सारी संपत्ति दुनिया की मिल जाए और सारा परिवार नष्ट हो तो मुझे सुख मिलेगा क्या। अरे सुख तो तब है जब उस परिवार में माता पिता भाई बंधु मामा काका ताऊ सारे रिश्तेदार लोग हैं, बच्चे पत्नी, और अकेले अकेले हैं, आपके पास बहुत बड़ा महल है, आपको वो महल सुख देने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं मजबूत बनकर अपने परिवार को मजबूत बना लेना चाहिए। और परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि हम दो और हमारे दो, आजकल तो हम दो खत्म हो गया, हम दो और हमारा एक ही हो गया है, अब कालांतर में तो वो भी जीरो बनने वाला है। आपके पास परिवार का मतलब क्या है, परिवार ये शब्द जो है ना बड़ा व्यापक शब्द है। परिवार का मतलब केवल आप फैमिली पति पत्नी और एकादा बच्चा, इसको परिवार नहीं बोलते हैं। परिवार का अर्थ सामाजिक रूप में मानवीय रूप में अलग है। परिवार माने आपकी पत्नी भी है उसमें, आपके बच्चे भी हैं, आपके माता पिता भी हैं, आपके चाचा चाची भी हैं, मामा मामी नाना नानी, अरे जितने बहुत सारे जितने आपके सगे संबंधी वो सब उसी में आते हैं, परिवार में आते हैं। और जब आप परिवार की रक्षा करते हैं, परिवार आपका मजबूत है, और परिवार से समाज बनता है, सारे परिवार मिलते तभी तो समाज बनेगा। आपके परिवार मजबूत हैं, व्यक्ति मजबूत बनकर अपने परिवार को मजबूत बना ले, और जब परिवार मजबूत होगा तो आपका समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो आपका राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र का अर्थ केवल धरती से थोड़ी हैं, केवल पृथ्वी से थोड़ी हैं, सीमाओं से थोड़ी हैं। राष्ट्र समष्टि चेतना जो सब कुछ मिलके एक व्यक्ति से लेकर समाज जीव जंतु कीट पतंग सब कुछ मिलकर राष्ट्र बनता है और इसकी समृद्धि इसकी सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। इसलिए आपने शास्त्र ने एक बड़ी विवेकपूर्ण बात कही। मान लो कि व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है तो बोले कि अपने को बलिदान कर लेना चाहिए। एक परिवार के बलिदान से समाज की रक्षा होती हो तो आपको बलिदान हो जाना चाहिए। हाँ, एक परिवार के बलिदान से अपने समाज की रक्षा होने वाली हो तो बोले एक परिवार को बलिदान हो जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समाज की समाज के बलिदान से राष्ट्र की रक्षा होने वाली हो तो बोले बलिदान हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो इकाई है आपका राष्ट्र है और उसके रक्षा करने के लिए अपने को सब कुछ करना है। अब यहां बालक नचिकेता ये रहस्य जानते हैं। बालक नचिकेता ने अपने पिता के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर दिया। पिता वृद्ध है और बेटा जवान है, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने पिता के लिए मैं अपने सुखों का त्याग कर देता हूं। मैं अभी परसों लोनावाड़ा गया था ना रविवार, मैंने देखा कि वहां दो माताएं हाथ में कटोरियां लेकर अपने बच्चों को खिला रही थी और बच्चे तो बच्चे, वो बच्चे भाग रहे थे इधर उधर उधर खूब शैतानी कर रहे थे और वो दोनों माताएं कटोरी लेकर उसके पीछे पकड़ती बेटा बेटा धीरे से उसके मुख में भोजन डालती, वो थोड़ा खा लेता फिर फेंक देता भागी। कम से कम आधा घंटा उन बच्चों के पीछे लगी रही। मैं सोच रहा था बैठे बैठे देखो ये माँ है हा? और वो माँ अपने बच्चे के लिए कितना कष्ट कर रही है, कितना कष्ट उठा के उसको खिला रही, स्वयं खा नहीं रहे हैं और वो भाग रहे हैं लेकिन माँ कितना प्रेम से खिला रही है, कैसे कैसे नहलाती धुलाती, रात रात भर माँ जगती हैं अपने बेटे के लिए। रात रात भर जब बच्चा पैदा होता है तो रात भर रोता रहता है, आपको मालूम है उसकी घड़ी पता नहीं क्या हो जाती है, दिन रात का उसका पता नहीं चलता, रात रात रोता है और रात रात माँ जगती है रात रात और प्रसन्नता से जगती है। वो पेशाब कर देता है कपड़े के ऊपर धो लेती है। आप कल्पना करो एक माँ बनकर एक पिता बनकर के आप देख कल्पना करो कि कितना कष्ट वो सहन कर लेते हैं और बच्चे जब बड़े हो जाते तब क्या करते हैं फिर जब हमारे माता पिता हमारे इतना बड़ा कष्ट उठाते हैं लेकिन माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उसकी क्या दुर्दशा होती है, हम लोग एक दिन भी उनको सहन नहीं कर पाते हैं। उनके विचारों को हम लोगों ने कितनी शरारतें की, उन्होंने कितना सहन किया और जब माता पिता थोड़े शरारत कर दे तो एक दो दिन चलो ठीक है, हमारे विचार हमारे माता पिता के साथ मिल नहीं रहे हैं, थोड़े शरारती लग रहे हैं तो आप कितना सहन कर लेते। ये समझदारी प्राचीन समय के बालकों में ये समझदारी थी, वो कर्तव्य बुद्धि वो नैतिकता थी। आज बालक नचिकेता सोचते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना कुछ कष्ट सहा, चलो उनके लिए भी हम कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। और आज इतना बड़ा कष्ट उठाकर हम लोग पहुंचे हैं और आज समाज के प्रति भी कर्तव्य वो पूरा करने जा रहे हैं और समाज के लिए नारायण यहां उन्होंने मांगा यज्ञ विज्ञान, कर्म का विज्ञान। यज्ञ विज्ञान माने ये कर्म का विज्ञान है। यहां बालक नचिकेता ने समृद्धि, मैंने आपको परसों या कल के प्रवचन में कहा था आपके हिंदू धर्म में केवल त्याग की ही बात नहीं है, आपके हिंदू धर्म में त्याग के साथ साथ भोग की भी बातें हैं। स्वर्गे लोके न भयम किंच नास्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति उभे तीर्थ्वा शनाया पिपासे स्वगातिगो मोदते स्वर्गलोके। आप क्या स्वर्ग की बात आप श्रवण करते हैं, स्वर्ग और नरक सुनते कि नहीं? आप वेदांत की दृष्टि से इसका विश्लेषण करोगे ना तो ये समृद्धि है। स्वर्ग का मतलब होता है जहां बहुत समृद्धि है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं आपको सुना देता हूं, सांख्य कारिका में। और शास्त्र कहता है कि आप अपने समाज को समृद्ध बनाओ, कैसे? तो बोले स्वर्ग की तरह। और ये जो स्वर्ग है ना, ये ऊपर नीचे के अर्थ में नहीं है, आप ध्यान देके सुनेंगे, मैं आपको फिर सुनाऊंगा। यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तम मनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम। आपका समाज समृद्ध है स्वर्ग की तरह, कब माना जाएगा? तो उन्होंने गिनाया है, यन्न दुखे न संभिन्नम, आपका जो सुख है वो दुख से मिला हुआ ना हो। आप ध्यान देकर सुनना, स्वर्ग का अर्थ क्या है? आप अपने परिवार को, समाज को, जीवन को स्वर्ग आप समझ सकते हैं यदि आप इस परिभाषा में आ जाते हैं। आपको प्रयत्न करना है, आपको पुरुषार्थ करना है, आपको पुरुषार्थ के द्वारा अपने समाज को स्वर्ग में बदलना है, अपने परिवार को स्वर्ग में बदलना है। यन्न दुखे न संभिन्नम, आपको सुख मिलता है, आपको शांति मिलती है, तो वो सुख और शांति दुख से मिली हुई ना हो। आप विवेक से और अच्छी तरह से कार्य करते हैं तो आपका सुख दुख से मिला होगा नहीं होगा। जैसे उदाहरण में समझा देता हूं, अक्सर हम जो भी सुख प्राप्त करते हैं ना वो दुख से मिला हुआ। जैसे मान लो कि आप भोजन कर रहे हैं और भोजन इतना ज्यादा कर चुके कि आपका पेट खराब हो गया। अब आपका वो भोजन सुख का जनक हुआ कि दुख का जनक हुआ? आपने भोजन में संयम नहीं अपनाया। आपको जब सुबह का नाश्ता करना था तो उस समय याद रखना चाहिए था कि दोपहर का भोजन भी करना है। आप दोपहर का भोजन याद रखोगे तो सुबह नाश्ते पर नियंत्रण करोगे, और दोपहर के भोजन के समय यदि शाम के भोजन की याद रहे तो आपका दोपहर के भोजन पर नियंत्रण होगा। लेकिन आदमी सुबह के नाश्ते के समय दोपहर का भोजन भूल जाता है, ऐसा लगता है कि मानो आप दोपहर को भोजन मिले कि नहीं, और दोपहर का भोजन करते हैं तो शाम का भोजन भूल जाते हैं, और शाम को जब आप भोजन करते हैं तो कल मिलने वाला है याद रखते हैं कि नहीं? नहीं रखते हैं। खाने पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं हम, और वो खाना ही हमारे जीवन को अस्वस्थ कर देता है। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये संयम है। और संयम पूर्वक यदि आपका जीवन है तो आपका सुख दुख से मिला हुआ नहीं है। आप बोल रहे हैं और बोलते बोलते आप कुछ भी बोल देते हैं तो आपका बोलना भी दुख को पैदा करता है। आप वाणी से जितने दुख पैदा करते हैं उतना और किसी चीज से पैदा नहीं करते हैं। आप बोलने से जितने ज्यादा दुखी हैं उतना और किसी चीज से नहीं है। आप देख लेते हैं किसी को, ज्यादा दुख पैदा नहीं करते हैं। आप बहुत कुछ सुन लेते हैं, आप सुनने से दुख पैदा नहीं करते हैं। आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुख पैदा करने वाली कोई चीज है तो वो क्या है? आपकी वाणी है। आप परिवार में रहते हैं और आप बोलते हैं तो बोलते समय आप कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप सही बोलते हैं कि गलत, ये बात नहीं है। आदमी जो भी कहता है वो यही तो बोलता है कि मैं सही कह रहा हूं। आपको कभी अपनी बात गलत लगती है क्या? हम सही के चक्कर में तो गलत हो जाते हैं। आदमी को अपनी गलती मालूम नहीं पड़ती। आदमी कहता है कि मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, और इतना आग्रह दुराग्रह करता है, और उसी सही और गलत के चक्कर में वो दूसरे को कष्ट देता है। इसलिए समझदार व्यक्ति का मतलब होता है सही बोलने से भी हाँ, सामने वाले को यदि कष्ट हो तो वो नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। आपका शास्त्र कहता है आप सत्य बोलो जरूर, आप परिवार में है समाज में सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलने का ढंग क्या होना चाहिए, उसमें प्रियता होनी चाहिए। हाँ, आप सत्य भी यदि कहते ढंग से है ना तो वो सामने वाले के लिए अप्रिय नहीं होता है, कहने का ढंग होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, जब उस समय देश जब स्वतंत्र हो रहा था तो दो दल थे, एक गरम और दूसरा नरम, एक हिंसावादी थे और दूसरे अहिंसावादी महात्मा गांधी। लोकमान्य तिलक वो कहते थे कि डंडे के बल पर ताकत के बल पर स्वतंत्रता मिलेगी, हम छीनेंगे अंग्रेजों से स्वतंत्रता, और महात्मा गांधी जी कह रहे थे कि नहीं हम भी लेंगे स्वतंत्रता लेकिन हिंसा के बल पर नहीं अहिंसा के बल पर। तो उस समय जो उग्र स्वभाव वाले थे उन्होंने कहा कि विदेशी जलाओ, है ना, देखो अंतर देखो ध्यान देना, सब ने नारा दिया कि भैया जितनी विदेशी कपड़े हैं विदेशी माल है उसको जलाओ, महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं स्वदेशी अपनाओ। देखो आप देखना है दोनों में अंतर क्या है, बाकी ने होली जलाना शुरू कर दी विदेशी कपड़ों की विदेशी सामानों की, और गांधी जी ने कहा भैया स्वदेशी अपनाओ। अच्छा कानून में कौन फंस गए, आप वहां कानून में वो फंस गए जलाने वाले, आप फायदे में कौन रहे, गांधी गांधी जी फायदे में रहे, स्वदेशी अपनाओ, चरखा लिया गांधी जी ने और वो कातना शुरू कर दिया, भैया हम कातेंगे सूत कातेंगे कपड़े बनाएंगे और हम स्वदेशी अपनाएंगे। जब आप स्वदेशी पहनेंगे तो अपने आप विदेशी हट गया ना, लेकिन आपके बोलने का ढंग क्या है, स्वदेशी अपनाना अपनाने की बात करना और विदेशी जलाने की बात करना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब आप उस पर मत जाना कि दोनों की कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, लेकिन ढंग कितना सुंदर है। आप सत्य भी बोलते हैं ना तो सत्य बोलने के तरीके आपको मालूम होना चाहिए, कैसे बोलने से सामने वाले को चोट न पहुंचे। हाँ, इसलिए बोला सत्यम ब्रुयात लेकिन प्रियम ब्रुयात, प्रिय होना चाहिए लेकिन न ब्रुयात सत्यम अप्रियम, आप ध्यान देंगे लेकिन वो चीज नहीं बोलना चाहिए यदि सत्य और अप्रिय हो। हाँ, यदि वो चीज अप्रिय है सामने वाले को कष्ट देने वाली है तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा मान लो कि कोई आदमी गिर गया है तो आप ठहाके मार के हंसते हुए तो बोलोगे कि अरे तुम तो गिर गए। हाँ, मान लो किसी की गलती हो गई और गलती को दिखाना चाहते हो तो आप खुले डंके की चोट पर बोलोगे क्या तुम गलत हो। हाँ, नहीं, सुधार की प्रक्रिया में स्नेह ममता करुणा दया होनी चाहिए, माने सामने वाले को लगे इसकी सुधार की प्रक्रिया में ईमानदारी है, अहंकार न झलके, आप ध्यान देना। आप सामने वाले की गलतियां दिखाना चाहते हैं तो आपको उस दिखाने में ममता स्नेह अपनत्व सारी चीजें झलकनी चाहिए तो सामने वाला स्वीकार कर लेगा वो। इसलिए नारायण हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो ये वाणी है, इसका सही उपयोग करना चाहिए, और इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो यही बोलना आपके दुख को निर्मित कर देगा। महाभारत के युद्ध का वो प्रसंग बड़ा मधुर है, द्रौपदी बड़ी सभ्य थी लेकिन गलती से एक वाक्य बोल गई वो, जब दुर्योधन गिरा ना, मैं कोई गिर जाए तो क्या आप हंसोगे, ठहाका मार के हंसोगे, मजाक उड़ाओगे क्या, लेकिन एक गलती हो गई उससे, सहानुभूति व्यक्त करना था उस समय, और उन्होंने क्या बोला, अंधे का पुत्र अंधा बोला। हा? अरे रे रे, बहुत कठोर बात थी वो, एक सभ्य आदमी के द्वारा बोली जाने वाली बात नहीं थी। आपके बोलने से ही आपका पता चलता आप क्या है। आपको मालूम है आप जब तक चुप है ना तब तक रहस्य है। आप कितना जानकार हैं, कितना समझदार, कितने बुद्धिमान हैं, ये कब तक मालूम नहीं पड़ता है आपको, जब तक बोलते हैं। और जैसे आप बोलना शुरू कर देते हैं ना, आप जो हैं वो बोलने के द्वारा बाहर आ जाते हैं। आप अच्छे हैं तो आप बोलने के द्वारा बाहर आ जाते हैं, और आप बुरे हैं तो बोलने के द्वारा बाहर आ जाते हैं। आप क्रिया में उतर आते हैं, आपका होना क्रिया में उतर आता है। आप क्या है ये क्रिया में उतरने के बाद मालूम पड़ता है, आपका आचरण बता देता है कि आप क्या है। एक संस्कृत का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, कवों के बीच में कोई एक राजहंस पक्षी बैठा है और वो भी शोभा देता है। राजहंस पक्षियों के बीच में एक कौवा बैठा है, वो भी शोभा देता है, लेकिन कब तक जब तक वो बोलता नहीं है तब तक। जैसे कौवा बोलने लगता है तो आपको मालूम है, और राजहंस पक्षी भी वो भी मालूम है आपको, कोयल के बीच में कौवा बैठा है, मालूम है ना आपको। यहां एक उदाहरण है, आप बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन बोलना शुरू कर देते हैं तो मालूम पड़ता है कि आप क्या है। इसलिए द्रौपदी ने एक शब्द बोला, बड़ा कठोर शब्द बोला, जिंदगी भर पछताती रही वो, लेकिन क्या करें। लेकिन उसके बाद भी उसका अपमार्जन नहीं किया। आपसे गलती हो जाए तो कम से कम क्या बोलना चाहिए था बोलना तो चाहिए, ये अंग्रेजों का शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सॉरी आपसे गलती हो जाए तो झट से, लेकिन आदत मत डालना सॉरी बोलने की, नहीं तो आदमी बोलता भी जाए, एक तरफ गलतियां भी करता जाता है, दूसरे तरफ सॉरी भी बोलता जाता है। सॉरी का मतलब होता है आप, मैं दोबारा नहीं करूंगा। आपको मालूम है सॉरी का मतलब क्या है?
2: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.